107 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 13 जून 2026। सुबह के 5:55 और ठीक 38 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा प्रारंभ होती है।

सुप्रभात। आइए करते हैं शुरुआत इस सुहाने दिन की प्रभु की वंदना के साथ। आज आपके साथ ईश्वर के चरणों में भक्ति की पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मैं हूं ज्योति।

0: 38 सेकेंड्स।
1: प्रभु की भक्ति की वर्षा में भीग रहे हैं हम आज एक साथ 100.7 FM रेनबो पर।

प्रवसी नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। प्रभु की वंदना, उनका स्मरण, उनका ध्यान करके काम करने वालों के कार्य वो स्वयं संपन्न करते हैं। ऐसे में जब कभी भ्रम, भय या संशय मन में आए तो स्वयं को याद दिलाए कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया है मात, तो फिर किस बात की चिंता।

मनुष्य की सारी चिंताएं, सारी परेशानियां उस दिन खत्म हो जाती हैं, जिस दिन उसे ये विश्वास हो जाता है कि हर काम परमपिता परमात्मा की मर्जी से होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता है। वही करता है, वही करवाता है। तू तो बस ऐसे ही इतराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस की, वही सुलाता है, वही जगाता है।

मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। जिनकी कृपा से मूक व्यक्ति भी बहुत सुंदर और स्पष्ट बोलने लगता है, जो चल नहीं सकता वो भी बड़े बड़े पर्वतों को पार करने में सक्षम हो जाता है। उन्हीं माधव की हम बारंबार वंदना करते हैं। और उनसे मांगते हैं प्रसाद में उनकी कृपा, उनका प्रेम, उनकी दया

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: समय हुआ है 6:33 और 13 सेकेंड्स। आप कर रहे हैं प्रभु के चरणों में श्रद्धा की पुष्पांजलि अर्पित आज ज्योति मिश्रा के साथ।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: मन को निराश ना कर, बस ईश्वर पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो प्रभु, इस बात का एहसास कर। याद रखना, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए कृपा चाहिए तो उनकी मांगो, दया चाहिए तो उनकी मांगो।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: छह बजकर 44 मिनट और ठीक 54 सेकंड्स। आप कर रहे हैं प्रभु के श्री चरणों में भक्ति की पुष्पांजलि अर्पित आज ज्योति के साथ।

प्रभु का कहना है, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने ही नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं, मैं तेरा विश्वास हूँ।

हर सांस में सुमिरन हो तेरा, यूं ही बस बीत जाए जीवन मेरा। इसी प्रार्थना के साथ चाहूंगी अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि से।

0: बिजली की चमक है, आसमान को रोशन कर रही है, तो कहीं बादलों की गड़गड़ाहट, मौसम एक अलग ही रोमांच घोल रही है। बारिश की बौछारें कभी खिड़कियों को थपथपा रही हैं, तो कभी हवाओं के संग इधर उधर नाचती हुई गलियों और पेड़ों को सहला रही है। मानो भीगी भीगी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वातावरण में घुल रही है। पेड़ों की पत्तियों को देखिए, जी हाँ, पेड़ों की ये पत्तियां धुलकर और भी हरी भरी लग रही है ना। छतों से बह रहे पानी के पनाले किसी मधुर धुन का एहसास करा रहे हैं और ठंडी हवाएं मन को एक नई ताजगी से भर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने आज सुबह सुबह अपने हाथों से शहर को सजा दिया हो। हर ओर धुला धुला सा नजारा है, ताजगी से भरी फिजाएं हो चुकी हैं और बारिश के बाद की जो मनमोहक ठंडक है, जी हाँ, गर्मी से हमें राहत दे रही है, दिन की शुरुआत को बहुत ही खूबसूरत बना रही है। तो भाई ऐसे में हम भी करते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत और मैं आरजे मीनाक्षी आप सभी से कहती हूँ वेरी गुड मॉर्निंग कानपुर। आ रहा है आप तक प्रोग्राम का ये पहला गाना।
1: जुड़े रहिए एफएम।

जी हाँ, 102.2 पर कनेक्ट हो चुके हैं आप सिटी के म्यूजिकल हार्ट बीट रेनबो कानपुर के संग। सुबह के 7 बज चुके हैं। इस खूबसूरत सुबह की पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं हूँ आरजे मीनाक्षी आज आपके संग। नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और बड़ी खूबसूरत हुई है आज सुबह की शुरुआत। प्रकृति का एक अनोखा संगीत हम सभी सुन रहे हैं। प्रकृति अपने साथ एक अनोखा संगीत लेकर आई है। रात भर तो झमाझम बारिश नहीं हुई है, फिर भी सुबह सुबह हुई इस झमाझम बारिश ने धरती को मानो प्यार से भिगो दिया है।

जी हाँ, कोयल भी कूकेगी और मल्हार भी गाएगी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सुबह से हो चुकी है दिन की शुरुआत। आज दिनांक 13 जून 2026 है, दिन शनिवार है, शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083 है, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। अभी दोपहर 12 बजे के बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। सूर्योदय सुबह लगभग 5:15 पर हो चुका है और सूर्यास्त सायंकाल लगभग 7:02 पर होगा। चलिए बढ़ते हैं गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में आगे और सुनवाते हैं आपको प्रोग्राम का अगला गाना। 102.2 पर यूं ही कनेक्ट रहिए हमारे संग, क्योंकि यहां से आप सुन रहे हैं अपना चहेता प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।

साथियों, आज हमारे शहर का जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बताई गई है भारतीय मौसम विभाग और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से। और अधिकतम तापमान भी आपको बता दें तो अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बताई गई है। सुबह के 7:16 और 17 सेकेंड हो रहे हैं। 102.2 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर। और अब आगे बढ़ने से पहले क्यों ना बता दिए जाएं उन कार्यक्रमों के नाम जो आज आप हमारे रेडियो चैनल से सुनने वाले हैं। सुबह 8:30 का समय रहेगा प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल का। रसभर प्रोग्राम आप सुनेंगे सुबह 9:00। हर दिल अजीज प्रोग्राम हम नवा हम लेकर आएंगे दिन में 11:00। आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ होंगी आरजे वृंदा।

सुबह 9:45 पर विविधा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रोग्राम महफिले गजल। म्यूजिक का प्रोग्राम दिन में 3 बजे सुनिएगा और शाम 4 बजे का समय रहेगा आपकी यानी लिसनर्स के फिल्मी गीतों के फरमाइशों के पूरा होने का प्रोग्राम होगा आपकी पसंद। और अभी तो जैसा आप सभी को पता है कि चल रहा है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर, तो भाई ये थी जानकारी हमारे उन सभी कार्यक्रमों की जिन्हें आज आप हमारे रेडियो चैनल से यानी 102.2 पर सुनने वाले हैं। आ रहा है आप सभी तक प्रोग्राम का ये अगला गाना।

भाई इतना भागम भाग की जिंदगी हमारे पास इतनी रहती है कि कभी कभी लगता भी है कि हाँ जिंदगी हमसे रूठ गई है, वो भी बेवजह। तो भाई जो वजह बनती हो जिंदगी के रूठने की, उन्हें जल्दी से जिंदगी से दूर कर ही देना चाहिए। 102.2 FM पर चल रहा है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर। आरजे मीनाक्षी है आज इस प्रोग्राम को लेकर आपके संग। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आज का सुविचार। वो व्यक्ति जो किसी हारे हुए को सहारा देता है या किसी जरूरतमंद की मदद करता है, मेरी नजर में वही सच्चा संत है। महान सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे।

0: योजना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: चलिए डालते हैं एक नजर इतिहास के आईने पर और जानते हैं कि क्या है आज की तारीख की खासियत। साल 1955 में 13 जून को विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खदान मिर्नी माइन को खोजा गया था। ये खोज सोवियत भूवैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित गड्ढा भी माना जाता है। 13 जून 1943 को भारत के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आज़ादी दिलाने के अपने उद्देश्य से आज की तारीख में पहुंचे थे टोक्यो और फिर जापान के सहयोग से किया था आज़ाद हिंद फौज का गठन। 13 जून 1956 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन ICPO का गठन किया गया था। 1940 में आज की तारीख में तत्कालीन पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्या के जुर्म में स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह को लंदन में फांसी की सजा दी गई थी। और सुप्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन का निधन आज की तारीख पर साल 2012 में पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ था। सुबह के 7:30 102.2 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर। मेरे यानी आरजे मीनाक्षी के संग।

और अब एक नजर देश दुनिया की खबरों पर। इसमें सबसे पहले कल यानी 14 जून से वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी

की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की बात। साल 2014 के बाद से फ्रांस का ये प्रधानमंत्री का 7वां आधिकारिक दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स सम्मेलन का संयुक्त रूप से करेंगे उद्घाटन। इसका उद्देश्य भारत की कुछ बेहतरीन डीप टेक प्रतिभाओं को भारत के बाहर प्रदर्शित करना है।

और अब एक नजर देश दुनिया की खबरों पर। इसमें सबसे पहले कल यानी 14 जून से वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की बात। साल 2014 के बाद से फ्रांस का ये प्रधानमंत्री का 7वां आधिकारिक दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स सम्मेलन का संयुक्त रूप से करेंगे उद्घाटन। इसका उद्देश्य भारत की कुछ बेहतरीन डीप टेक प्रतिभाओं को भारत के बाहर प्रदर्शित करना है।

और अब कुछ खबरें खेल के गलियारों से। साथियों, सबसे पहले ये दुखद खबर आपके साथ साझा कर रही हूं कि भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का बीते कल 12 जून 2026 को नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वो 49 वर्ष के थे। देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। 11 जून 2026 से शुरू हो चुकी है फुटबॉल महाकुंभ की शुरुआत। जी हाँ, शुरुआत हो चुकी है फुटबॉल महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप की, और इस बार इसका आयोजन 3 देशों यानी कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इतिहास में पहली बार किसी फुटबॉल विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके बीच कुल 104 मैच खेले जाने वाले हैं। फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को होगा। और बीते कल यानी 12 जून से इंग्लैंड की धरती पर आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आगाज हो चुका है, जिसका हम सबको बेसब्री से था इंतजार। और इस बार का यह टूर्नामेंट इतिहास का सबसे बड़ा महिला T20 विश्व कप होगा, क्योंकि पहली बार 12 टीमें खिताब के लिए संघर्ष करती दिखाई देंगी। और हम सबको तो आने वाले कल का इंतजार।

आ रहे यानी 14 जून का, क्योंकि कल हमारी भारतीय महिला टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होगा। ये महामुकाबला बर्किंगम के एजबेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा और इसकी लाइव कमेंट्री सुन सकेंगे आप हमारे रेनबो चैनल से शाम 6:30 बजे से। और महिला क्रिकेट की बात की है तो पुरुषों को हम भला कैसे छोड़ दें, तो पुरुष क्रिकेट टीम की ये रही जानकारी। जी हां, भारत और अफगानिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज आज यानी 13 जून से शुरू हो रही है जो कि चलेगी आगामी 20 जून तक। ये सीरीज अफगानिस्तान के भारत दौरे का हिस्सा है। इसका पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे से शुरू होगा। 102.2 पर कनेक्ट है आप, सिटी की म्यूजिकल हार्टबीट है, धड़क रही है आप सभी के दिलों में और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर। इस प्रोग्राम को लेकर आपके संग मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त एंड प्रोग्राम की होस्ट आरजे मीनाक्षी भेज रही हूँ आप सभी तक प्रोग्राम का ये अगला गाना।

और भाई घड़ी हमें इशारा कर रही है कि जल्दी से आपको हम सुनवा दें प्रोग्राम का आखिरी म्यूजिकल ट्रैक, क्योंकि हो रही है देश दुनिया की खबरों को जानने की बारी, यानी कि ठीक 8 बजे हम आपको लेकर चलने वाले हैं अपने दिल्ली केंद्र समाचारों के लिए। तो आखिरी म्यूजिकल ट्रैक पहुंचाने से पहले ले रहे हैं एक सोशल मीडिया पोस्ट। जी हाँ, ये पोस्ट हमारे पास आई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से। ये जो पोस्ट हमें मिली है दोस्तों, इसमें एक पिक्चर बनी हुई है हमारी आशा कार्यकर्त्री बहनों की, और मैसेज लिखा है, धन्यवाद आशा दीदी, आपका साथ, आपका मार्गदर्शन और आपकी मेहनत टीवी मुक्त भारत की मजबूत नींव है। जी हाँ दोस्तों, आशा कार्यकर्ता अपने अथक प्रयासों और समर्पण से लोगों में टीबी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ उन्हें भरोसा और हौसला भी दे रही हैं। हर घर तक पहुंचकर वे समुदायों को स्वस्थ भविष्य की ओर प्रेरित कर रही हैं और टीबी उन्मूलन में अहम योगदान दे रही हैं। और अब आप तक आ रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम का ये आखिरी म्यूजिकल ट्रैक। इसके साथ ही आज मीनाक्षी को फिलहाल इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। मिलूंगी आप सभी से सुबह 8:30 बजे प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल को लेकर। एंजॉय करिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दो।
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस

0: प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चर मिनिस्टर तालित मिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा

0: का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से किस सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया? इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमेरिका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
2: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar lodges strong protest with US Secretary of State Marco Rubio over US strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a 2-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's 7th official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
6: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than 120 Indian startups and companies will come together with leading investors and business leaders from France and across the world, spotlighting India as a global destination for deep tech, artificial intelligence, and

सुबह के 8:30 हो रहे हैं और अपने वादे के मुताबिक 102.2 एफएम पर हाजिर हो चुके हैं हम लेकर प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। प्रोग्राम को लेकर आपके साथ आरजे मीनाक्षी। साथी, प्रोग्राम का पहला गाना आप तक आ रहा है फिल्म हरियाली और रास्ता से। आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की, शब्दकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। इस गीत को फिल्माया गया है मनोज कुमार और माला सिन्हा पर और ये फिल्म 1962 में रिलीज हुई थी। सुनवाती हूँ आपको प्रोग्राम का ये पहला गाना फिल्म हरियाली और रास्ता से।

पर दोस्तों, हमें अच्छी तरह से पता है कि आगे हमें बढ़ना है अगले गाने की ओर। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में सुनवा रही हूं आपको एक गाना जिसे लिखा है शेवन रिजवी ने, धुन बनाई है इकबाल कुरैशी ने। 1964 में रिलीज हुई थी फिल्म, नाम है कव्वाली की रात। इस गीत को फिल्माया गया है कुमकुम और कमलजीत पर।

साथियों, उम्मीद है कि सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम के जो गाने आप सुन रहे हैं ये आपको पसंद आ रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ ही गानों को हम शेड्यूल करते हैं आरजे मीनाक्षी आज इस प्रोग्राम को लेकर आपके संग। और अब आ रहा है प्रोग्राम का अगला गाना पारस मणि फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, इंदिवर की इस रचना को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये फिल्म पर्दे पर आई थी 1963 में। इस गीत को फिल्माया गया है अभिनेत्री गीतांजलि और अभिनेता महिपाल पर।

0: 102.2 एफएम की फ्रिक्वेंसी पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरों की पुरानी महफिल। प्रोग्राम में यहाँ पर एक छोटा सा अंतराल ले रहे हैं, अंतराल के बाद वापस आते हैं और सुनवाएंगे आपको सुरों की पुरानी महफिल के कुछ और भी पुराने खूबसूरत से फिल्मी नगमे।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
3: जी हाँ, एफएम रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
2: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर हो

0: हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर। कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर। पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर। मेल मिलाप।

सुबह के 8:48 और 16 सेकेंड्स हो रहे हैं। प्रोग्राम चल रहा है सुरों की पुरानी महफिल 102.2 एफएम की फ्रिक्वेंसी पर। आरजे मीनाक्षी है आज इस प्रोग्राम को लेकर आपके संग आ रहा है आप तक साथियों। प्रोग्राम का अगला गाना रजिया सुल्तान फिल्म से, आवाजें हैं जगजीत कौर, आशा भोसले और साथियों की, रचनाकार हैं निदा फाजली और संगीत है खयाम का।

अनोखी अदा फिल्म के इस गाने के साथ ही दोस्तों सुरों की पुरानी महफिल को वाइंड अप करने की यहाँ पर ले रही हूँ मैं इजाजत, क्योंकि अगला प्रोग्राम है आपके लिए रस बहार और उसको लाने की भी जिम्मेदारी आज मेरे ही कंधों पर है दोस्तों। तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए कि इस प्रोग्राम को मैं आप तक ला सकूँ। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ और हाजिर होते हैं अभी बस छोटे से ब्रेक के उस पार।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: 102.2 पर कनेक्ट हैं आप लगातार हमारे संग और एंजॉय कर रहे हैं यहाँ से प्रसारित हमारे प्रोग्राम्स को। सिटी के म्यूजिकल हार्ट बीट है ये, रेनबो कानपुर के संग है आप। सुबह के 9 बज चुके हैं। प्रोग्राम रस बहार को लेकर मैं हूँ आपके साथ आरजे मीनाक्षी। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बहुत सारे देश एक महाउत्सव की तैयारी में जुटे हुए हैं। एक ऐसा अवसर आने वाला है दोस्तों जब पूरी दुनिया की सोच एक जैसी होने वाली है, बल्कि हो चुकी है। जी हाँ, मेरा इशारा योग दिवस की ओर है। ना ना ना, मैं योग की बात नहीं करने वाली हूँ। मैं उन छोटी छोटी बातों को शेयर करने वाली हूँ आपके संग, जिन्हें अगर हम अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हैं तो हम खुद को इस दिन के लिए भी तैयार कर पाएंगे और एक मुस्कुराती जिंदगी से मुलाकात भी कर पाएंगे हर रोज। तो खुल के जीने के कुछ छोटे छोटे जो टोटके तरीके हैं उन्हें आप तक लाने की जो कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद है आपको सही लगने वाली है। फिलहाल आ रहा है प्रोग्राम का पहला गाना आपके लिए।

जी हाँ, जीने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लतीफे, चुटकुले, कुछ भी आप उन्हें कह सकते हैं, जैसे कि इस गाने में हमने सुना। आज बातें उन छोटी छोटी बातों की होंगी जो बड़ी खुशियों को लाती हैं हमारी आपकी लाइफ में। रोज की अपनी लाइफ में इन बातों को शामिल कर शारीरिक व मानसिक रूप से बेहतर महसूस कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो भाई, सूरज के निकलने से पहले उठना एक बड़ी अच्छी आदत है। बहुत सारे लोग हैं कि उनके लिए बहुत कठिन है ये, और उन्हें खुद भी याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने सूर्य को उदय होते हुए कब देखा था। अगर सूरज के निकलने से पहले आप नहीं उठ पाते हैं तो भाई सूरज के उदय होने के साथ ही उठ जाएं, और अगर ये भी ना हो पाए आपसे तो सूर्योदय होने के बाद तो उठ ही जाएं।

बहुत देर बाद की बात मैं नहीं कर रही हूँ, सूर्योदय होने के कुछ देर के बाद की भी जो सुबह सुबह उठते हैं ना, वो भीतर उतासगी से हमें भर देती है। क्योंकि भाई जितना लेट मॉर्निंग हम जागते हैं ना, तो हमारे काम भी उतना ही पेंडिंग पड़े रहते हैं, और फिर जब कामों की लिस्ट लंबी हो जाती है, वक्त हमारे पास कम होता है क्योंकि बहुत सारे काम हमें करने होते हैं, तो इन पेंडिंग पड़े हुए कामों को लेकर एक उलझन सी मन में उठती है, और हमें पता नहीं चलता कि हम किस बात पर कब किससे उलझने लगते हैं। तो उलझन को सुलझाना है, और जो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम अगर फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूदी स्मूदी से हो जाती है। तो आ रहा है आप तक प्रोग्राम रस बहार का ये अगला गाना, लीजिए एंजॉय करिए। फुर्सत के पल कम मिलते हैं, लेकिन कोशिश करें कि फुर्सत के पल हम समेटें अपनी झोली में, फुर्सत के दिनों को बिल्कुल फुर्सत के साथ ही बिताएं।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िए,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए, awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
7: पहला नशा, पहला खुमार।
8: Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

102.2 एफएम पर कनेक्ट है आप, सिटी के म्यूजिकल हार्ट बीट है ये, धड़कती है आप सभी के दिलों में। जी हाँ, रेनबो कानपुर से आरजे मीनाक्षी है आज प्रोग्राम को लेकर आपके संग, और इस वक्त जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं वो है रसबहार। रसबहार प्रोग्राम में छोटी छोटी उन बातों की बातें हो रही हैं दोस्तों, जिन्हें हम जानते तो हैं, मानते भी हैं, पर काम की भागम भाग में उन्हें फॉलो करना हमसे रह जाता है। और सुबह अगर हम अच्छी तरह से नहीं स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो पूरा दिन है वो बहुत भारी हमें महसूस होता है, हर काम बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है, क्योंकि मन जो है वो सुबह से ही भारी उठता है तो काम भी बड़े बड़े से नजर आने लगते हैं। तो भाई सुबह सुबह उठकर कुछ देर यूं ही एकांत में बैठकर समय बिताएं अपने संग।

और ध्यान से सुने उन आवाजों को जो आपके आसपास कहीं दूर से या कुछ पास से आप तक आ रही है। जब स्वयं मौन रहकर हम आंख बंद करके अपने आसपास की आवाजों को सुनते हैं, पहचानते हैं, तो जो हमारा कंसंट्रेशन है ना, वो बढ़ता है, जिसकी हम सबको आज बहुत जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं रसबार प्रयोग।

खुशियाँ किसी बाजार में नहीं मिलती दोस्तों, ना ही इन्हें खरीदा जा सकता है, बल्कि ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातों में ही छुपी रहती हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने की और उन्हें अपनाने की, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता हैं पर हम उन्हें अमल में ही नहीं लाते। और फिर जैसा कि गाना भी हमने सुना, मैं परेशान यही कहते रहते हैं दिन भर। धीरे धीरे तनाव, चिंता और भागदौड़ हमारी जिंदगी पर हावी होने लगता है, इसलिए जरूरत है रुक कर उन छोटी छोटी खुशियों को पहचानने की, उन्हें अपनाने की और हर दिन, जी हाँ हर दिन के साधारण से पलों को असाधारण बनाने की, क्योंकि खुशहाल जीवन किसी बड़ी उपलब्धि का इंतजार नहीं करता, वो तो छोटी छोटी अच्छी आदतों और सकारात्मक सोच, एक बार फिर से सुन लीजिए, सकारात्मक सोच से हर दिन खिलता है फूलों जैसा। 102.2 पर इस समय चल रहा है प्रोग्राम रसबहार, आरजे है मीनाक्षी इस प्रोग्राम को लेकर आज आपके संग।

सुबह के 9:29 हो चुके हैं दोस्तों। रजबार प्रोग्राम में लगभग 3 या 4 गाने ही आपको सुनवाए जा सकते हैं। प्रोग्राम में आज बातें उन छोटी छोटी बातों की हो रही हैं जिनको अगर हम जीवन में शामिल कर लें, बहुत ही नॉर्मल है ये बातें कि थोड़ा जल्दी उठ जाएं, अपने कामों की एक लिस्ट बना लें, इस तरह की जो बातें हैं इन्हें हम जानते हैं, समझते भी हैं, पर फॉलो करने में पता नहीं क्यों कुछ लोग लापरवाही कर देते हैं और बाकी चीज़ों में पड़े रहते हैं, लेकिन इन बातों को नज़रअंदाज सा कर देते हैं, सरका देते हैं इधर उधर, तो जो हमारे काम है उनकी लिस्ट और ज़्यादा लंबी हो जाती है। काम जो है वो आसानी से मुस्कुराकर हो सकते हैं लेकिन उन्हें करने की जो टेंशन है वो बढ़ जाती है। पूरा दिन तो सभी को किसी न किसी चुनौती का सामना करना ही है दोस्तों। घर हो या ऑफिस, ऐसी कई बातें होंगी जो हमें पसंद आए, ये जरूरी नहीं, यानी कि हमें नापसंद बातों और लोगों का सामना करना ही है, तो ऐसे में पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना बेहद जरूरी है। यदि खुद मुस्कुराने से पहले अपने दिल और दिमाग को समझा लें कि मुस्कुरा लो भाई, तो काम आसान हो जाता है हर जगह, क्योंकि ली जो हमने टेंशन तो हमारा काम तो बिगड़ता ही है और सेहत भी हमारी ही बिगड़ती रहती है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है, तो अगर अभी आप थोड़ा सा अपना गुस्सा जो है उसे काबू कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आपका ही काम बनने वाला है, आ रहा है यही गाना आप तक।

जिंदगी की इस रीत में हार के बाद जीत और जीत के बाद हार का सिलसिला चलता ही रहता है। सदियों हम सिर्फ खाते जा रहे हैं। मैं किसी खाद्य वस्तु की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन अनावश्यक सूचनाओं की बात कर रही हूँ जिनसे हम अपना ब्रेन फुल करते जा रहे हैं। क्योंकि जब हम कुछ खाते पीते हैं तो हमारी टमी फुल होती है, लेकिन जब हम दुनिया भर की जानकारियाँ, ज़रूरी गैर ज़रूरी सब अपने दिमाग में भरते जाते हैं, तो हम अपने दिमाग को बना लेते हैं एक कंज्यूमर ब्रेन। और जब दिमाग इतना कुछ कंज्यूम कर लेता है ना, तो उसमें क्रिएट करने की एनर्जी बचती ही नहीं और अपने दिमाग को हम थका थका सा पाते हैं और किसी भी काम में फिर हमारा मन नहीं लगता। तो भाई अपने दिमाग को

ना बनाएं कचरे का डब्बा, बल्कि वही चीज़ें इसमें डालें जो ज़रूरी हों। बाकी आती भी हैं तो उन्हें आने दीजिए, लेकिन उन्हें जाने भी दीजिए। मैं गैर ज़रूरी बातों की बात कर रही हूँ। आ रहा है आप तक प्रोग्राम का ये अगला गाना।

जिस तरह से कोई तीज त्योहार आता है दोस्तों, तो हम अपने घरों को साफ करते हैं ताकि वो सुंदर दिख सके, और वो चीजें लाते हैं जो घर की सुंदरता को बढ़ाएं। तो इसी तरह महाउत्सव योग दिवस जो कि 21 जून को आने वाला है, उसके लिए क्यों ना साफ सुथरा कर लें अपने मन और मस्तिष्क को भी, जिससे हम सिर्फ इस दिन को ही नहीं बल्कि हर दिन सेलिब्रेट करें और बना लें अपनी जिंदगी खुशगवार। चुनौतियां कितने भी हों हमारे सामने, और हर चुनौती से कर ले जाएं हम पार, क्योंकि हमारा जो मन है वो भी हल्का रहेगा।

और हमारा दिमाग भी ठंडा ठंडा रहेगा। आ रहा है रजवार प्रोग्राम का ये आखिरी गाना, और इस गाने के साथ ही आरजे मीनाक्षी को आज के रजवार प्रोग्राम से यहीं पर दीजिएगा इजाजत। मिलती हूँ अगले प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल एंजॉय करिए रजवार प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

इस गाने के साथ ही आरजे मीनाक्षी आज के रस बहार प्रोग्राम से यहीं पर लेती है इजाजत। मिलती हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद अगले प्रोग्राम को लेकर 102.2 FM की फ्रिक्वेंसी पर। इस समय आप हैं हमारे संग यानी रेनबो कानपुर के संग।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप, तो नोट कीजिए हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
0: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmiliaap@gmail.com पर, यानी कि fmmailmilap@gmail.com।

gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 बजे सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर। मेल मिलाप।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: FM पर कनेक्ट हैं आप सिटी के म्यूजिकल हार्टबीट रेनबो कानपुर के संग। प्रस्तुत है विविधा। विविधा में आज प्रोग्राम महफिले गजल। प्रोग्राम की ये पहली गजल हम आपको सुना रहे हैं जिला एच खान की आवाज में।

0: उसने जब प्यार से मेरी तरफ देखा होगा। मेहंदी हसन की आवाज़ में सुनी गई इस गज़ल के साथ ही प्रोग्राम महफिल गज़ल अब यहीं पर समाप्त होता है। 102.2 FM की फ्रिक्वेंसी पर इस समय आप हैं सिटी की म्यूजिकल हार्टबीट रेनबो कानपुर के संग।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति

0: उसने जब प्यार से मेरी तरफ देखा होगा। मेहंदी हसन की आवाज़ में सुनी गई इस गज़ल के साथ ही प्रोग्राम महफिल गज़ल अब यहीं पर समाप्त होता है। 102.2 FM की फ्रिक्वेंसी पर इस समय आप हैं सिटी की म्यूजिकल हार्टबीट रेनबो कानपुर के संग।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के एक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु।
2: इस दौरान वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेंगी। वाराणसी में आज से विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और वैदिक विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में देश विदेश से लगभग 1200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कुटेचा उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि इस अधिवेशन का उद्देश्य समसामयिक वैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियों पर विमर्श करते हुए वैज्ञानिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक कार्ययोजना तैयार करना है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज लखनऊ नगर निगम जोन 6 के विभिन्न वार्डों में जन चौपाल का आयोजन करेगा। आपकी समस्या हमारे समाधान का संकल्प के नारे के साथ आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल स्थानीय नागरिकों की शिकायतों और सुझावों को सुनेंगी। इस चौपाल का मुख्य उद्देश्य जनता को उनकी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम के चक्कर काटने से बचाना और उनके ही वार्ड में राहत पहुंचाना है। हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र में कल देर रात एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई केमिकल से भरे ड्रम तेज धमाके के साथ फट गए। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सुरक्षा की दृष्टि से केमिकल फैक्ट्री के आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है। ADM हापुड़ संदीप सिंह ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जनपदों में आज सुबह से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 घंटों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और आसपास के जनपदों में तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश का अनुमान जताया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 11 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार,
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद, शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
1: है, रते जगा।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
2: ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
4: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक,

0: ये भी लखनऊ ही है जनाब।
1: समझे जनाब यारी।
0: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की। सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
2: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: हैरान हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.

0: सौद शमलो सात एफएम रेनबो कार्यक्रम सुगंध माटी की सुने वाले सब श्रोतन बड़कन का प्रणाम, राम राम और छुटकन का प्यार दुलार। कही थे हम कि आपके रेडियो सखी रत्ना शुक्ला आपके सभा के बीच आई गई हैं लय के कार्यक्रम सुगंध माटी की, और बहुत बहुत स्वागत पा आप सभी श्रोतन पंचन का। अब बेरिया है कोनो विशेष के बुलावे के मनावा जाए बुलावा जाए और उनके आवाज दे दे तनिक, अरे भाई चले चले चले यार चले आओ तनिक, ऐसी ऐसी देखो का हम कितना अच्छा बिछौना कितना अच्छा कुर्सी उसे सजाए के रखे, तनिक ऐसे निकल आओ अब हम बताई थे। अब हम कहे चाहे थे हैं कि अतिथि आवे त हीरा जुड़ाए, है ना, अतिथि आवे त हीरा जुड़ाए जे का देखी के माटी महक जाए। और स्टूडियो में जौन माटी जौन हवा है वो महक गई है काहे से कि कार्यक्रम में ओम बाबू ओम भैया के हम बुलाए लाए हैं नियुक्त आए हैं, और यू बड़ी खुशी खुशी मन से मौसम के मिजाज लेके कोनो खुशबू लेके माटी की महक लेके स्टूडियो में चले आए रहे दूर से। अरे ओम भैया ऐसी निकल आओ तो नहीं कैसे दूर से
1: सब श्रोता पंचन का राम जोहार प्रणाम नमस्ते जी आपको कहिए नमस्ते।
0: अरे बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हो भैया?
1: अरे एकदम चौकस हन, अब कहा बताए बहनी
0: कहाँ से चले आ रहे हो?
1: जैसे हम घर से निकले बैठ के आवाए खातिर ना, हाँ। तो आई इस करिया करिया बादर उठा,
0: अच्छा
1: और फिर झमाझम बरसेला कुछ कहे नहीं, फिर हम कहें देखो अपने श्रोता पंचन से मिले तो चले है कहे कहे तेरे जब तक मिलो ना तो आई छटपटाओ कुछ कहे नहीं
0: तो रतिया की नींद नहीं पड़ी तुमको?
1: अरे एकदम पूरा, हम तो यह सोचित रहन कितनी जल्दी चला जाए बैठकी मैया और चली बस मिली चल के।
0: अच्छा तो श्रोता पंचन के दिल की आवाज तुम सुन लिए रहो?
1: हाँ। तो अब देखो इतना ज्यादा मौसम बदल गया है, और जब मौसम बदल जाते हैं फिर आए के भैया अपने श्रोता पंचन ते मिलो तो वह क्या मजा आनंद दुगना हो जाते है।
0: हाँ अभी खाए पिए कर बात हम तुमसे तो से करब, ऐसे कि स्टूडियो में बैठ के बाहर की जो खुशबू है ना ये मौसम में बहुत कुछ याद आ रहा है, तो तनिक तनिक धीम धीम बात करब। उसके पहले

0: अब कौन जिग्या से चले आ रहे हो? पहले जिग्या का नाम
1: जिग्या नाम जरूर बता दे। देखो भुलभुला खिरे वाले आपके अपन ओम भैया हम सब तो जनते हैं, चीना थे अपन श्रोता पंच। और देखो ये देखो काकी पिसना बना रही, ए काकी तिनी पिसना रोक या बाजा की आवाज बढ़ा दो, का है तेरे देखो कार्यक्रम सुगंध माटी के शुरू हो गवा है।
0: जी हाँ, आज हम अपन आवाज दे के न्योत के आए हैं, तो हमारे न्योता पे चले आए हैं ओम भैया स्टूडियो में और सुगंध माटी के कार्यक्रम में। और जाना तो पहल पहल जमाने में बूढ़ बुजुर्ग बतावत रहे, सब नाता रिश्ते में हीरा है अतिथि, अतिथि हीरा होते हैं।
1: अब जिज्जी यू हाँ, बताओ हाँ, आके साथ हम सब बताए दे का गौनी सुनाए दे।
0: अच्छा गौनी सुनने का बहुत मन है।
1: अरे बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो चलो पहले हम एक पूर्वी गौनी आप सभी को सुनवाई जा रही है।

0: ये दिल की आवाज तुम सुन लिए रहो। हाँ
1: तो अब देखो इतना ज्यादा मौसम बदल गया है, और जब मौसम बदल जाते हैं फिर आए के भैया अपने श्रोता पंचन ते मिलो तो वह क्या मजा आनंद दुगना हो जाते हैं।
0: हाँ अभी खाए पिए कर बात हम तुमसे तो से करब ऐसे कि स्टूडियो में बैठ के बाहर की जो खुशबू है ना ये मौसम में बहुत कुछ याद आ रहा है तो तनिक तनिक धीम धीम बात करब। उसके पहले अब कौन जिग्या से चले आ रहे हो? पहले जिग्या
1: का नाम जरूर बता दे। देखो भुलभुला खिरे वाले आपके अपन ओम भैया हम सब तो जनते हैं चीन थे अपन श्रोता पंच। और देखो ये देखो काकी पिसना बनाए रही, एक काकी तिनी पिसना रोक या बाजा के आवाज बढ़ा दो का है तेरे देखो कार्यक्रम। अच्छा। सुगंध माटी के शुरू हुई गवा है।
0: जेहिमा आज हम अपन आवाज दे के न्योत के आए हैं तो हमरे न्योता पे चले आए हैं ओम भैया स्टूडियो में और सुगंध माटी के कार्यक्रम में। और जाना तो पहल पहल जमाने में बूढ़ बुजुर्ग बतावत रहे सब नाता रिश्ते में हीरा है अतिथि, अतिथि हीरा होते हैं।
1: अब जिजी यू बताओ आके साथ हम सब बताए दे का गौनी सुनाए दे।
0: अच्छा गौनी सुनने को बहुत मन है।
1: अरे बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो चलो पहले हम एक पूर्वी गौनी आप सभी को सुनवाई जा रही है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
2: भाई अब मैच का क्या होगा?
1: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
3: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
4: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
3: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
7: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
8: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें। चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
9: जनाब अली,
8: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। लखनऊ की सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
10: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई।

0: जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए, पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
1: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: अगर बगत की बात करें ओम भैया, तो बता दें सभी सोता पंजर के 10:18 हुई गवाह है।
4: अरे हाँ, और पता ही नहीं चल रहा है बहनी।
3: हाँ, और कार्यक्रम सुगंध माटी की ये आपके बीच आए गवाह है 100.7 FM रेनबो पर।
4: और भैया देखो, अगर अपन पाती संदेश भेजे चाहते हो तो FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर या वहाँ भेज सकते हो।
3: हाँ, मेल भेजे की बात कर रहे थे। अच्छा, सब लोगों के जियो में कौन कौन करीजन कौन कौन बात उठा थे, कार्यक्रम कैसा लगा थी, यू सब आप लिख सकते हो। हमका कार्यक्रम के विषय में लिख सकते हो, जौन पाती के ID बताई है ना ओम भैया, वही पे आप भेज सकते हो हमका। और यू बताओ, जो तब बड़ा सा हरा हरा झोरा लेके आए हो खेड़ा से, तो ये झोरा में मौसम के हिसाब से कछु हमारे खातिर लाए हो?
4: जिज्जी लायन चिज्जी तुम्हारे खातिर। आप देखो,
3: अरे हमारे हृदय में बात उतर गई। जिज्जी खातिर लाए चिज्जी, अयो चिज्जी हमार खातिर, तुम तो ना कहियो में से।
4: अरे हम नहीं खेबे, देखो हम खाए का है। अब जब सुबेरे उठे ना इतनी तेज करिया करिया बादल उठा आंधी आ गए, तो अम्मा कहे देखो ज्यादा परेशान ना हो भैया, अब देखो हम टूर एक नहीं परी आए। हाँ। और जा रहे हो जिज्जी तेरे मिले और अपने श्रोता पंच भाई तेरे मिले जा रहे हो, तो जाओ झोरा ले लो और जाए के अमिया मैंने बीन लो।
3: हाय हाय हाय, तो अमिया के संगे कुछ और ला, सत्तू तू लाए कि नहीं?
4: अमिया लाए हैं ना,
3: सत्तू लाए हैं कि नहीं, अम्मा भेजी नहीं कि नहीं?
4: अम्मा भेजी है ना, वो देखो सत्तू पियो घोर के यहाँ है। हाँ। उनके साथ जब चटनी खाओ तो वही क्या, अरे दादा एकदम आनंद है चौकस है।
3: हाँ, देखो सत्तू है, आमैया की चटनी है और नीमक लाए हो कि नहीं, काला नीमक
4: चटनी में डरवा।
3: हम कहे टिकोरा के संग थोड़ा नीमक के डुबो डुबो के थनी के अपन जुबान के थोड़ा सा चटक मटक कर।
4: देखो अपनी अम्मा जो है ये सब चीजन का ध्यान रखती हैं। अब हम पंचे यू थोड़ो ना कि खाली हाथ पूरा बस झुआरा उठाए। अब तुमका बताए जिज्जी,
3: बताओ बताओ।
4: अब आए तरह ना है अपनी बैठ के मियाँ एक दिन, तो अम्मा के यहाँ बैठा रहे रहन गाड़ी पर यहाँ पीछे, तो हम पंचे जाए रहन आते रहन सन सन सन सन गाड़ी तेरे, तो आगे एक जना गाड़ी ले चलत रहा है मार ऐसी चकर मकर करे, तो हम सोचे कि लाओ तेनी गाड़ी हम हूँ। हाँ। तेनी उड़ाए दई।
3: हाँ। तो मतलब टेढ़ मेढ़ गाड़ी चला। हाँ। रख मन रहा तो हार,
4: तो हम दूसरे देखें तो हमरो मन भवाए।
3: अच्छा,
4: और हम भैया तेनी तेज करें, तो अम्मा पीछे बैठी रहे कहें। हाँ। ओम भैया। हाँ। तेनी सुधर जाओ, और ये जो चक्कर मकर तुम कर रहे हो ऐसे। हाँ। ना चलाओ गाड़ी।
3: अच्छा।
4: तो हम माने नहीं। हाँ। तो बताया रहे अम्मा, फिर सीधे घूसा एक ऐसे मारे कि अबे वो बता रहे पीठी पिराए रही।
3: हाँ।
4: तो कहा मतलब यू है कि भैया
3: घूसा। हाँ। तो हर पीठिया पे जम गवा।
4: हाँ, जम गा। और

0: भी लखनऊ ही है जनाब।
1: समझे जनाब अली।
0: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: अब हमारे बीच पधारत हैं, तो जौन जौन वो देख के आए हैं, है ना, और कौन अनुभव लेके आए, झोरा तो हम खोल लिया, झोरा में हमका हमारे मतलब की चीज मिल गई, हूँ भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, मार चटकारा भर के तनिक उजुलाई रहो ना, वो हम तनिक चखा है खावा नहीं।
1: अच्छा झोरा पहले खोले नहीं रहा, तो हम देखें कि आपके महिमा पहले लार आ गए।
0: एक आती तो पूछत रही कि नीमक लाए हो कि नहीं,
1: नमक
0: से नून से तनिक स्वाद बढ़ाते कि नहीं,
1: बिल्कुल आनंद आए जाते। आप देखो झोरक बात कर रही हो रत्ना जी, आपका बताई अब अपने यहाँ बचनू भैया नहीं है?
0: हाँ।
1: अरे बचनू भैया बप्पा जो है कहन की राशन ले आवा करो भैया, राशन ले आवा करो कोटा तेरे।
0: हाँ, करस्तानी कोनो करें होगी।
1: अभी बचनू भैया हर दाएं जाओ है, और जैसे बप्पा कहे राशन ले आओ,
0: हाँ?
1: वैसे दन दे अपन गाड़ी उठाओ है, बुरिया बांध है और सन्न दे निकल जाए।
0: अच्छा।
1: तो बप्पा सोचे कि बड़ा तेज हमारा लड़कवा है, तुरंत राशन ले आवत है।
0: हाँ, हाँ।
1: और फिर भी जाओ है तो अब पता तो ना चले, आवे भैया धर दे आके यहाँ घर में, कहे बप्पा इतने मिला इतने मिला।
0: अच्छा।
1: या एक दिन बप्पा जो है चकिया पर गए पिसना पिसावे, तो पिसना पिसावत रहे चकिया वाला, कहे ला का हो भैया बचनू, अब किन जो है चौर कम लाए रहे।
0: हाँ।
1: तो कहें चौर, कहें चौर कहे, कहें अरे हर दा तो बेच जाते हैं यहाँ चकिया बने। तो अब उनके जो है बचनो भैया जो उन बप्पा रहे, उनके जो है काटो तो खून नहीं, वो वाला हाल हुईगा कि यहाँ खाए लाले और यहाँ बेच जाते हैं।
0: हाँ, काहे ब्याचत रहे,
1: अब यू तो वह तो
0: वही जाने
1: कि, है? हाँ, कि अब काहे ब्याचत रहे। अब घर गए जो है भैया, तो हम पूछे कि बताओ रहा है चकिया वाला कि भैया बचनो यहाँ राशन बेच जाते हैं।
0: हाँ।
1: तो बताया कहा अरे बप्पा कहूँ ना ये झूठी बतावत है, ऐसे ही बतावा करते हैं।
0: हाँ।
1: बस मार खवा हुआ खाते।
0: हाँ।
1: तो फिर बप्पा उनका पकड़ के ले गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, चकिया पर
0: सामना कराए।
1: हाँ, सामना कराए। अब भैया झूठ कहाँ बोल सकते हैं।
0: अच्छा।
1: जाए के।
0: हाँ।
1: तब भैया पता चला कि वे जो है उमा राशन बेच, पता चला वे रिचार्ज करावत रहे।
0: अच्छा, ये जो टुक टुक टुक टुक बोला थे ट्रिन ट्रिन, मोबाइलिया का साख है उनका।
1: हाँ, हाँ। मोबाइलिया सौ कहो कहूँ ऐसी जा रहे हैं, कहूँ ख्याते निकल जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं उमा बतिया काने फोन लगाए, पता नहीं कहा किन करत है। तो भैया वो बचनु बप्पा फिर कसन उनका।
0: अच्छा। अच्छा, मतलब कसिन तो उनके खान पियान जो है वो सब बंद कर दी ने, और तनिक घूसा उसे लगाएं कि नहीं?
1: हाँ, वो घूसा किल्ली मारे।
0: आजकल तो सबसे नीक है आम की डंडी तोड़ ले, और आम की डंडी से तनिक जो कुटाई पिटाई करे के वो एक समझा दे।
1: तो भी देखो बचनो भैया सुधर गए जाए के। तो ये सब चीजें है भैया, देखो कहे मतलब यह है कि राशन पानी जो मिलत है जही के खातिन मिलत है।
0: हाँ।
1: वही के खातिन वही का इस्तेमाल करो, अब बेची हो, अब बहुत जनन के यहाँ भैया मिल नहीं पावत है।
0: हाँ।
1: तो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करे है।
0: अच्छा, तो यू बताओ कि बप्पा जौन जौन समझाए तो बचनो भैया के दिमाग तरे पहुंचा या ना ही पहुंचा, यू का समझो?
1: एकदम नीक पहुंचा, पहुंचा हो, देखो गौ नहीं जौन है ना।

0: वाह जो है एकदम ऐसा कुछ बता रही है और हम देख रहे हैं ना आप एकदम गवनई ढूंढ ही रहे हो कि
1: हाँ
0: दन्नदे मिल जाए और सन्नदे लगा
1: और यो दन और सन जो है यू चला करब, लेकिन वही के पहले जो का कहते हैं
0: जरूरी
1: तनिक,
0: एक सूचना हो वह सुन लीम जाए फिर देखो बैठ की तो अपन जारी है ही
1: हाँ,
0: है।
1: जरूरी संदेश तनिक सुनवाई दे।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
6: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
5: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
6: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

0: अब वक्त के साथ साथ चले बहुत जरूरी होता है। तो देखो श्रोता पंचन, 10:35 हुई गवाह है और कार्यक्रम चल रहा है 100.7 FM रेनबो पर। कार्यक्रम का नाम सब जाना था लेकिन तब बताई दे। देखो हम बताए थे कि कार्यक्रम चला थे सुगंध माटी की, यही आज हम नियोत के लाए हैं ओम भैया के। कौन खेड़ा सा है ओम भैया? जरा
1: देखो हमारा जो गाँव है वो बिल्कुल ना भूलो भुलभुला खेड़ा है?
0: अच्छा, हम बार बार बिसराए जाते हैं, क्या करते हैं, तो हर मुंह से यूं ना बहुत अच्छा लगा थे। ऐसे अपन गांव से जो प्रेम होते
1: हैं। जी देखा, हाँ। आज हम बताए दे हमारे गांव का नाम कैसे पड़ा जो है भुलभुला खेड़ा। अब हाँ। देखा गर्मी इतनी होते हैं है?
0: होते हैं
1: तो पुराने सब होत रहा है गर्मी ना, अब पुरानिया अपन कम थोड़ो ना रहे। तो जब भुलभुला खेड़ा नाम की बारी आई तो कोनो देखो पहले चप्पलो नहीं होत रहे हैं
0: हाँ।
1: तो ऐसे पैदल नंगे पाए जात रहे हैं गांव में मैया। खूब जब गर्मी होत रहे तो मार पाए भुलभुलाए जात रहे हैं।
0: अच्छा, गदगदाए भुलभुलाए जात रहे हैं पांव। अच्छा,
1: जब पांव भुलभुलाए जात रहे हैं तो फिर जो पुरानिया रहे कहा लाए क्या नाम रख दो भुलभुला खेड़ा।
0: अच्छा तो यहीं से ये नाम लेके आया हो।
1: हाँ
0: अच्छा,
1: तो ये देखो भुलभुला खेड़ा है और देखो अपने गांव जवार मैया मने जब देखो परदेश जाते हैं वही क्या मन चाहे जितना परदेश में लाग हो लेकिन वो आग तना तेरे लाग जो है अपने गाँव है घर में रहा थे।
0: हाँ, अपन घर की, अपन गांव की माटी, अपन घर की खटिया, अपन लोग, यू सब कहूं दिल से नहीं जावत
1: है। हाँ, अब देखो गर्मी चल रही है।
0: हाँ, चल
1: तो गर्मी मैया जब देखो यहाँ शहर में अपने दप देरे लाइट काट देते हैं।
0: हाँ। जाना थे।
1: हाँ।
0: जो बिजली कटे के जो बात करे हो आप ओम।
1: हाँ।
0: तो उमा का होते कि कहूं कहूं नियम बनावा गवा है।
1: हाँ।
0: हाँ, वो नियम के तहत का होते कि संध्या के 2 घंटा काटिब और एक बाद भोरे में 2 घंटा काटिब, दोपहरिया में 2 घंटा काटिब, ऐसा कुछ हम सुना है। ऐसा हमारे गांव में भी बहुत होता
1: है। अब है का देखो इतना ज्यादा सब पंखा मने बतावत नहीं भैया। जब अपन बाजा सुना जाते तो वहाँ पता चला थे कि भैया इतना वही पर लोड पर जाते
0: हैं। जो ठंडी बड़ी मशीन लागत है,
1: ठंडी वाली जो मशीन बड़ी बड़ी के लागत है तो वही माँ जब लोड तो भैया बत्ती तो कटता है। हाँ। लेकिन देखो अब जैसे सहार मैया है मने परदेश मैया वहां कट गए तो मने आग दूसरे बतिया तो बहुत कम है। लेकिन अपने देखो गांव जवार मैया आए जाओ भैया चाहे जैसे बत्ती गए तो अपने ख्यातन तन चले जाओ है।
0: हाँ।
1: अपने 4 सहेली हैं साथी हैं उनके साथ घूम के यहाँ खूब बैठो बतियाओ है,
0: ठंडी ठंडी बयार के बैठ के तनिक भुट्टा अट्टा भून के आनंद उठाओ
1: खूब। हाँ। चबाओ चबरी बढ़िया तेरे खूब घूमो, ताल तलैया देखो चिड़ैया। हाँ। और बाग बगीचा खूब घूमो टहरो। हाँ। और ये ब्यारा देखो मौसम इतना नीक चला मने कहा। हाँ, करते हाँ, हाँ, ये गर्मी मैया।
0: हाँ।
1: गर्मी माए जाते सहा तेरे।
0: हाँ।
1: साथ है साथ है छुट्टी हो जाती है बरत है कर लेती है जो सहालक होती है सब निपटा लेती है आके साथ में।
0: हाँ, देखो सहालक शुरू होने वाली है।
1: हाँ। हाँ,
0: शुरू होने वाली सहालक तो वही का बात करब लेकिन वही बाद में करब।
1: हाँ, ठीक है, बाद में पहले आ गौनाई देखो वो झांक रही हुई इसी तरह।
0: हाँ, गौनाई के साथ साथ हमको तनिक हमारे करिजवा में एक बात उठत है तो हमको बताइयो।
1: बताओ, पूछो। हाँ, पूछो जीरा तो हमारे। हाँ, धकर धकर होते
0: हैं। हाँ, ना। तो ये बता दे हमको तनी कि जामुन कौन बेरिया में खावे के मिली।
1: अरे जी जामुन देखो फरेंदा लग ही रहा है। हाँ, ये बेरा बाजारों मैया सब जैसे देखो जामुनी मिल ही रही है। हाँ, और एक साथ साथ देखो फरेंदा तो खे ही हो है।
0: फरेंदा में तो टाइम लगा था कैसे कि बड़ा बड़ा फरेंदा पाके में टाइम लगा।
1: अरे बड़ी जल्दी
0: जामुनिया खवाई दे
1: बस यार, मैं कसके भुसैला गिर जाए। अब देखो पानी गिर ही गया है, अब सब मिठास और बढ़िया नीक नीक अब की जब मिली हो देखो तुम कले
0: बहुत खाए के चाह रहे हैं कि।
1: और सबसे बढ़िया देखो जमनी में आग चीज हमका लागत है भैया। हाँ, खाओ और जब नीली नीली जुबान हो जाए।
0: हाँ,
1: और फिर देखा देखा दूसरे के ललचाओ।
0: जैसे यहाँ लखनऊ शहर में कहा है कि बहुत तरह बेतरह के अलग अलग तरह के पान मिलते हैं। तो पान खाए के जमान में जौन रंग चढ़त है, बढ़िया पान के बीड़ा खाए के वही के दिखाए के और खवाए के एक दूसरे के सब मोहब्बत जताते हैं। वही के साथ साथ ऐसी जमुनिया की बात कर दिया आप।
1: अब देखो गांव आवे खातिन कितना बेताब है। आओ सुना।
0: हाँ चलो यू बचाइए।
1: हाँ, हाँ।

0: और ओम भैया।
1: हाँ रत्नाजी जी,
0: कहा है इतना सुस्ता सुस्ता, क्या तिनिक नहीं गवने ही हम सब सुनवा रहे हैं।
1: सुस्ता है नहीं, देखो इतना जो नए जमाने का अमृत नहीं बतावत है।
0: हाँ
1: चाय पिया दिन हो तो सुस्ती कहाँ लगी है।
0: देखो आज हम तो का अदरक वाली चाय पिलाई है ना, तब फिर अब अदरक वाली चाय का एक मजा ही अलग होते है नहीं?
1: क्या आनंद
0: मौसम, हाँ मौसम में भी फायदा करता है, वही के साथ साथ अदरक वाली चाय
1: जी। देखो जब अपने कार्यक्रम मैया जो है अपने श्रोता पंचन मेल आ जाते हैं तो वही क्या मजा अलग हो जाता
0: है, दिल बाग बाग हो जाता है।
1: अब देखो ये गुलपसा सिद्दीकी बनी भेजे हैं इन कहाँ तेरे संडीला तेरे।
0: अच्छा
1: हाँ, और इनके साथ रोशनी रावत, समा परवीन, साहिबा अंसारी, साजे अंसारी, निशा अंसारी, ममता और गौतम। हाँ लिखे हैं ना, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत नीक लाग रहा कार्यक्रम तो।
0: अच्छा?
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद करे के चाहिए, कैसे वक्त निकाल के और ये सब टाइप करके भेजते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ, हाँ और देखो अब वकील अहमद भैया भेजे हैं गुड मॉर्निंग, आप दोनों लोगन का माटी की सुगंध, जो उन सुगंध माटी का कार्यक्रम अच्छा लागत है। और भैया आगे लिखा है बड़ा नीक लागत है, और लिखा है कहां से लिखा है, कटका हथूरी जिला सीतापुर तेरे।
0: अच्छा सीतापुर में लोग आनंद उठावत है यू कार्यक्रम का।
1: और आगे लिखा है कि भैया ये बेहरा देखो हम अपने अरबी पर माटी चढ़ा रहे हैं ख्यात मैया, और हाँ। मौसम हमारे यहाँ बहुत अच्छा हुआ है, और काले काले बादल छाए हुए हैं, हवा हाँ। मस्त चल रही है, एकदम आनंद आ जाता है भैया, वो जो है घुइया पर माटी चढ़ा रहे, और ऐसे मौसम मैया भैया घुइया पत्ता के जो सब्जी
0: पकौड़ी। अब बहुत बहुत चीज के अब हम का करी, फिर मुँह में पानी आए लगी। तनिक रुक रुक के नाम ले भैया, तो अब यू बताओ कि आगे हम अगर मेल शामिल करें तो के का नाम लिए जा रहे हो आप?
1: अब ये देखो विजयपाल यादव भैया ललहुआ सिरे भेजा है, और ये लिखे हैं आदरणीय अंजू दीदी हम ओम भैया जी पांच हुई। अरे भैया
0: तो अंजू दीदी भी सुनत हुई है ना, तो अंजू के तो हर बात पहुंच गई है अंजू जीजी के तीर। हाँ। और अंजू जीदी भी तुमरे लगे आइये,
1: और देखो इतने बताए हैं कि रत्ना जीजी हमें, तो रत्ना जीजी का भैया प्रणाम तुम्हारा वाला वैसी थी ऐसी भेज।
0: हमके हमारे लगे पहुँच गया, तुम्हार प्रणाम, बहुत बहुत खुश रहो।
1: और भैया लिखे हैं आगे कि कार्यक्रम बहुत मस्त लाग रहा है, और हमरे यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है, और मौसम सुहाना हुआ है, फली तोड़ी जा रही है ख्यात मैया, काहे कि भैया उड़द केरी तो भैया। अच्छा। हाँ खेती कामों कर रहे हैं, देखो यह है तो अपने बाजा के आनंद हुए भैया, ख्यात हम रख लो मैड बढ़िया है। हाँ। और कार्यक्रमों चल रहा, बाजा बाज रहा, अपन कामों चल रहे हैं, और ये देखो लिखा है नो भैया जब आप घर से चले रहो।
0: हाँ?
1: तो छाता लिए रहो कि नहीं? अरे भैया छाता था पूरा लड़के सब चली था, देखो पूरी व्यवस्था तेरे।
0: अरे हाँ। सबसे हमारे लिए बहुत अच्छी बात यू रही कि हमारा झोरा बचा के लाई छाता के लगी। भेजे मोहम्मद आसिफ का लिखी नहीं है, लिखे ने मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहा हूँ। ओम भैया और रत्ना मैम मेरा सादर नमस्कार, आप लोगों की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर लगती है और लोगों की बातें बड़ी अच्छी लग रही है, हैदराबाद से प्रोग्राम सुन रहा हूँ और रहने वाला राजा कटरा अहमदपुर बाराबंकी का हूँ। साहेब अंसारी, सादिया अंसारी, समा अंसारी, गुलफसा अपी, अहमद नवाब अपी, सभी लोग अपन बाजा लगाए के आप लोगों के कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: अरे भैया इतनी दूर तेरे देखो मेल भेजे हो। हाँ। और सुनने हो अपन कार्यक्रम हमारा पंचन क्या हो आपो के बड़ा पसंदीदा हुए। हाँ। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद है,
0: बिल्कुल बहुत।
1: और देखो ये सिमरन स्वरांजलि भेजे है, लिखा है नमस्ते ओम भैया और रत्ना दीदी, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हाँ कार्यक्रम बहुत हाई है, देखो
1: और आगे
0: नाम सुना था सुगंध माटी।
1: हाँ, आगे लिखा है नूम भैया जल्दी आवा करो, बहुत दिन बाद आए हुए।
0: हाँ अरे हम न्योत के आए रही, बहुत मुश्किल से वक्त निकाल के हम कह रहे चले आओ, श्रोता पंचे से सब बात कही करे खाते
1: श्रोता के धड़ा के आएगी ना,
0: श्रोता का नाम सुन के धड़ाए के चले आए हूँ भैया। हाँ और कोमल तिवारी लिखे ने गुड मॉर्निंग रत्ना दीदी और ओम भैया, शुरुआत का सांग बहुत प्यारा सुना, बहुत अच्छा लगा और बातें आप सभी के लच्छेदार हो रही हैं। हमारे मम्मी यू कार्यक्रम सुन रही हैं, उनका बहुत अच्छा लगा थे, और हमारे परिवार के सभी लोग कार्यक्रम का बहुत इंतजार करते यू कार्यक्रम का। और कोमल तिवारी कैसरगंज बहराई से यू लिखिन है, आपो के बहुत बहुत पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद दे दो, हमारा धन्यवाद
1: माता जी का देखो चरण स्पर्श, और आपो के बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखो रोशनी रावत बहनी भेजे हैं, लिखा है राम राम प्यारी रत्ना दीदी और ओम प्रकाश भैया, और आप दोनों कैसे हैं? अरे हम लोग तो एकदम देखो नीक हैं, चाहे हो चल रहा चटनी शरीर के साथ सब टिकोरा एकोरा खा चुकी है रत्ना जी।
0: और लिख देने लच्छेदार बात तो बहुत करेजा में हिलोर उठ रहा है।
1: हाँ,
0: उठत है।
1: और वही के साथ साथ देखो लिखा है हमारा नाम जो है रोशनी रावत हुए, गांव हमारा बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव हुए और चंडीगढ़ तेरे कार्यक्रम सुन रही है। और इनके साथ इनकी बड़की दीदी नीलू शर्मा दीदी, गुलपसा दीदी और छोटकी बहन बबीता राव सुन रही है, झूम रही है। अरे वाह,
0: बहुत सजाए बजाए के लिखित है, लेकिन है कत्ती स्याही इस्तेमाल कर
1: रहे
0: हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप कह रहे हैं। मोइनुद्दीन अंसारी लिखिन है, गुड मॉर्निंग मैम एंड सर। देखो हम अंग्रेजी बोला था, कहूँ गलत हुई तो हमको ठीक करो है। लिखिन है, हाउ आर यू, आई एम उमरा अंसारी, हजबा अंसारी, श्रृंगार नगर लखीमपुर खीरी से लिखिन है, मेल करिन है कि आज आप लोगों की जोड़ी धमाल मचा रही है और थैंक यू सो मच। महू सीख ली अंग्रेजी पटपट करे
1: मोइनुद्दीन।
0: हाँ थैंक यू अंसारी जी, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपके हम पठे थे।
1: और ये देखो नीलू शर्मा बहनी लिखे हैं, रूप चंदेला सिरे लिखा है, रत्ना जी जी ओम भैया का मेरा नमस्कार, राम राम प्रणाम। अरे अच्छा। आपो कहिया राम राम प्रणाम। और लिखा है ओम भैया, आज हमारी बड़की जिज्जी नीलम शर्मा जी के एनिवर्सरी है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनकी एनिवर्सरी पर। यहाँ
0: यू पूछ रहे हो कि सालगिरह में क्या करते हैं, कौन कौन जश्न मनावे में कौन कौन पकवान बनाए रही है और कौन कौन कितने लोगों के बुलाई है आमंत्रित किए हैं।
1: और हम पंचन बुलाए ले।
0: अरे यही खातिर तो हमारी सारा है।
1: और मेरी दोस्त हमें सारा पीहू स्नेहा सोनी रोशनी बबीता मनु वंदना कौशल पूर्णिमा आरती और बहुत जने हैं। और अब देखो रत्ना जी जी आ गौना ही हो जाए फिर।

0: वही के बाद संदेश पढ़े दी है।
1: अच्छा चलो हाँ। गौनो हो जाए तो गौनो तनिक बजा दे, वही के बाद दूसर गौनो भी इंतजार करते हैं। अरे 10:55 हुई गवा तो जल्दी सुनवाई दो।

0: देखो चरे के बेरी आ गई, काहे से कि 10:58 हुई गवा है। और ओम भैया आवे खातिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करें कि ना ही करें, काहे से कि आप झोरिया में बहुत बहुत सामान लेकर आए हो एफएम रेनबो की टीम के लिए, तो क्या करी बताओ।
1: अरे जिजी देखो, समय क्या पता ही नहीं चला कितनी जल्दी चला जाते हैं, लागत है
0: मुट्ठी में पकड़ के रखो, देखो बचाते कि नहीं,
1: रस्सी बांध के वही में बांध के रखे। लेकिन देखो समय अब नहीं अनुमति दे रहा है कि हम पंचे और ज्यादा आगे बढ़ाए जाए। देखो आप तो रहबे करी हो, तो सब श्रोता पंचम का यह है कि भैया देखो अपने लड़का लदन का सबका ध्यान रखो, अपने बूढ़ बुजुर्गन का सबका ध्यान रखो और अपनो ध्यान रखो। इस मौसम बदल रहा है और अब देखो चले कोई रहे बिरिया अपन भुलभुला खेरे वाले ओम भैया एक दो अनुमति
0: फिर आइयो।
1: अरे
0: श्रोता पंचम सब इंतजार कर रहे थे, देखो लिखिन है पार्टी में भेजे नहीं कि नहीं।

कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट के साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं आप, लेकर हाजिर हो चुके हैं हम प्रोग्राम हम नवा।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ मीनाक्षी। हम नवा प्रोग्राम में आप सभी लिसनर्स का तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। भाई, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी जो हम नवा है, मेरी दोस्त हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नाम भी मैं आपको बता दूँ कि ये है मेरी प्यारी सहेली सखी वृंदा।
1: नमस्कार अभिनंदन, वृंदा का भी आप स्वीकार कीजिए दिल से वंदन। और मीनाक्षी, आपने इतने अच्छे से मेरा भी स्वागत किया है ना कि दिल बाग बाग हो गया।
0: भाई, दिल को बाग बाग बल्कि बगीचा बगीचा बना लेना चाहिए वृंदा
1: जी। जब आप जैसे दोस्त साथ होते हैं ना, तो कहते हैं ना कि टाइम का पता नहीं चलता, और दिल ऑटोमेटिकली जो है ना वो खुश हो जाता है।
0: बिल्कुल खुश हो जाता है अगर हमारी संगत अच्छी होती है। मतलब ऐसा कोई बंदा हमारे सामने हो जिससे हम मुस्कुरा पाते हैं, दिल की बातें कर पाते हैं, और ये टेंशन नहीं होती है कि हमारी किस बात का इसे बुरा भी लग सकता है क्या। तो हंसी मजाक के लिए जो आप पूरी आजादी मुझे देती हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया
1: जी। बट अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं, मुझे आप काफी चेंज लग रही हैं, तो इसका राज क्या है?
0: वैसे तुम्हारा ये कहना सही है कि हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, हालांकि मैं तो भूल ही गई थी कि वाकई में हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। फोन पर हमारी अक्सर बातें होती रहती हैं, तो मुझे बिल्कुल तुम सामने दिखाई सी देती हो। और जैसा कि तुमने पूछा कि मेरे हाल चाल क्या है, तो भाई मेरे हाल भी ठीक है और चाल भी एकदम ठीक है
1: जी। तो भाई, ये जो आपके अंदर चेंज मैं देख रही हूँ, उसका मैं राज जानना चाहती हूँ कि क्या है।
0: ओहो, उसका ना राज मैं बता दूँ तुमको कि उसका राज है योगा।
1: ओके, यानी कि योगा से सब होगा।
0: बिल्कुल, और मुझे तुम भी बदली बदली से नजर आ रही। अच्छा? हो वृंदा। हाँ जी, तो तुम भी कर रही हो क्या कुछ ऐसा ही?
1: बिल्कुल कर रही हूँ, वैसे मजाक की बात नहीं है, सीरियसली देखा जाए मीनाक्षी, तो एक्सरसाइज और योग ने मेरी भी लाइफ चेंज कर दी है। और ये जो चेंज हुआ है ना मेरी लाइफ में, वो एक पॉजिटिव वे में हुआ है।
0: पॉजिटिव वे में तो हुआ है वृंदा, लेकिन पॉजिटिव आप हमेशा से रही हैं। और जैसा कि मैंने अभी श्रोताओं को बताया कि कुछ भी बोलने के लिए, मजाक करने के लिए पूरी आजादी हमारी सहेली वृंदा मुझे देती है। जैसे कि आपने
1: शुक्रिया
0: कहा, आपने योगा, योगा से सब होगा, तो मुझे दिख रहा है कि पहले से कुछ थोड़ा सा स्लिम मुझे दिख रही हो वृंदा।
1: थैंक यू सो मच।
0: भाई सही बात कही तुमने कि योग प्राणायाम हमारे मन मस्तिष्क को शांत करते हैं, है ना, और शरीर को पनपने का मौका देते हैं, मन को पनपने का मौका देते हैं। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर ही खुश रहने का आधार है, बाकी सब तो भाई व्यर्थ है, बेकार है।
1: क्या बात है, बहुत ही गहरी बात कह दी है मीनाक्षी ने यहाँ पर। और वैसे देखा जाए तो योग दिवस भी बस कुछ ही दिन दूर है मीनाक्षी, तो महीनों पहले से इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पर योग की जागरूकता एक दिन की नहीं, हर दिन ही बढ़नी चाहिए ऐसा हमें लगता है।
0: हर दिन बढ़नी चाहिए, और यह जिम्मेदारी हम बखूबी निभाते हैं। हम अपने प्रोग्राम्स में अक्सर लोगों से योग की बातें करते ही रहते हैं, और इस बार योग की थीम भी कुछ यही कहती है। इस बार की जो थीम है वो है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, यानी वृद्धावस्था को स्वस्थ बनाने के लिए अभी से योग को चुने। तो लिसनर्स हमारी बात को ध्यान से सुने कि आप ये ना समझे कि सिर्फ वृद्ध लोगों के लिए योग इस बार करना है। भाई, बच्चों से लेकर किसी भी उम्र तक का व्यक्ति योग कर सकता है, तो बिल्कुल सबको अपनी जिंदगी में योग को अपनाना होगा।
1: नहीं, एक्चुअली इस थीम का मेन मोटिव यही है कि स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, यानी अभी से अगर आप किसी काम को करेंगे तो कहते हैं ना कि आने वाले फ्यूचर में वो आपका कैरी ऑन रहता है।
0: और बिल्कुल,
1: तो इसी तरीके से अगर अभी से हम योग प्राणायाम ये सब अपनाएंगे अपने जीवन में, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ और खुशहाल रहेंगी।
0: बिल्कुल, और तो, रिदम

0: में बना रहता है काम फिर?
1: बिल्कुल बना रहता है।
0: स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के साथ सानिध्य में जाना चाहिए हमें।
1: बिल्कुल सही कह रही हूँ, और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है मीनाक्षी।
0: बिल्कुल।
1: वैसे ये जो अभी आपने बात कही है इस पर तो आज हम चर्चा करने ही वाले हैं।
0: हम अपने लिसनर्स के लिए ऐसे ही कुछ टॉपिक लेकर आते हैं जो उनके भी हित में होते हैं, और साथ ही साथ उन पर जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे लिए भी बहुत मतलब पॉजिटिव रिएक्शन हम अपने ऊपर भी देखते हैं कि हम कहते हैं तो उन्हें हम फॉलो भी करते हैं। साथ ही जीवन में स्वच्छता के महत्व को भी हम अपने साथियों के साथ साझा करेंगे
1: और इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मिलकर मनाएंगे।
0: मौसम के अनुकूल पहनावा क्यों है जरूरी, इस पर भी करेंगे बात।
1: वैसे एक मेरे मन में ख्याल आ रहा था।
0: वही ख्याल मेरे मन में भी आ रहा था।
1: तो पूछ लिया जाए।
0: बिल्कुल पूछ लिया जाए कि हमारे लिसनर्स हमें मेल करें इस बात के लिए कि आप इस मौसम में कौन सा पहनावा आरामदायक महसूस करते हैं।
1: तो अपने जवाब आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। और हाँ, आप चाहें तो किसी और टॉपिक पर भी अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं।
0: बिल्कुल, आप हमसे जुड़े रहें 102.2 FM की फ्रिक्वेंसी पर। फिलहाल वृंदा, अभी हमारे लिसनर्स कर रहे हैं एक बढ़िया से गाने का इंतजार।
1: बिल्कुल प्ले कर रही हूँ, आप भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ।

0: मस्त मगन मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए मीनाक्षी। आज वैसे आज बहुत ही खास दिन भी है और कई ऐसे टॉपिक्स हमारे साथ हैं और मौसम ने भी करवट ले ली है, तो ऐसे मन हमारा जो है ना मस्त मगन होकर झूम रहा है और मौसम को इंजॉय कर रहा है।
1: बिल्कुल, हमारे पास रोचक विषय भी हैं और गंभीर विषय भी हैं। हमारे लिसनर्स को हम अब एक ऐसे विषय पर बताने जा रहे हैं जिसके बारे में लोग अक्सर कम जानते हैं, कम बात करते हैं।
0: जी बिल्कुल, और हम बता दें कि आज 13 जून है और संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे आज के दिन को घोषित किया था ताकि एल्बिनिज्म से जुड़े लोगों के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, ये एक संक्रामक बीमारी है, इसके बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं डॉक्टर प्रतिम गोयल। और आपको बता दें कि क्या है ये, बहुत सारी ऐसे मिथक होते हैं इस बीमारी के बारे में, कई बार हमें नहीं पता होता, हम सोचते हैं कि ये कम्युनिकेबल है यानी संक्रामक है, पर ऐसा नहीं होता। तो ज़्यादा जानकारी हमें हमारे साथ साझा कर रही हैं डॉक्टर प्रतिम गोयल, एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं।
2: एल्बिनिज्म हमारी स्किन में यानी चमड़ी में होने वाली एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है। इसमें हमारे स्किन में, हमारे बालों में जो कलर या पिगमेंट होता है वो या तो बिल्कुल एब्सेंट होता है और या ये कलर बहुत ज्यादा कम होता है। और हमारी चमड़ी और बालों के साथ साथ मेलानिन कलर जो है वो हमारी आंखों में भी होता है। तो एल्बिनिज्म बहुत तरह का होता है। जब हमारी स्किन में कलर बनाने वाली मशीन में से एक उसकी जो कड़ी है वो या तो खराब हो जाती है या वो होती ही नहीं है, तो क्या होता है कि जो हमारी स्किन का कलर है वो बनता नहीं है। ये एक जेनेटिक कंडीशन है, तो ये जेनेटिक डिफेक्ट है जो बेसिकली पेरेंट्स से पास होता है। लेकिन इसका असर ये होता है कि जो हमारी स्किन में मेलानिन बनना होता है वो बनता नहीं है, तो हमारी स्किन का कलर बिल्कुल लाइट हो जाता है और ये या तो स्किन या आंखों या बालों पर इफेक्ट करता है। तो जब ये जेनेटिक डिफेक्ट होता है, ये कारण है एल्बिनिज्म के होने का। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि दोनों पेरेंट्स को एल्बिनिज्म नहीं हो लेकिन उनमें एल्बिनिज्म की जीन हो, और उस केस में भी बच्चों को एल्बिनिज्म हो सकता है। लेकिन एल्बिनिज्म की जीन जो है वो हमेशा पेरेंट्स से ट्रैवल होकर के बच्चों में आती है। हमारी स्किन और आंखों में, बालों में जो कलर होता है इसका बहुत ज्यादा रोल है। ये हमें स्किन कैंसर से बचाता है, ये हमारी स्किन को बर्न होने से बचाता है, ये हमारी स्किन को सेंसिटिव होने से बचाता है। तो जब ये कलर हमारी स्किन में एब्सेंट होता है तो ऑफकोर्स स्किन में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप धूप में नहीं जा सकते, स्किन ऑफकोर्स बिल्कुल वाइट हो जाती है, हमारे पलकों के बाल, हमारी आईब्रोज के बाल, हमारी स्किन बिल्कुल वाइट हो जाती है। तो ऑफकोर्स ये एक तो यू नो अपीयरेंस वाइज इफेक्ट करता है, बट इसके अलावा फंक्शनली यू नो लाइट की टॉलरेंस बहुत ज्यादा कम होती है, बर्न्स जल्दी हो जाते हैं, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। इसके साथ साथ क्योंकि हमारी आंखों में जो हमारी रेटिना में जो मेलानिन कलर होता है, बिकॉज वहां पे भी ये मेलानिन नहीं बनता है, तो वहां भी कलर कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें विजन प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है। एल्बिनिज्म का कोई परमानेंट क्योर तो नहीं है, बिकॉज ये जेनेटिक कंडीशन है और हम अपनी जीन्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को एल्बिनिज्म है, अगर वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, यानी आपको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है हम उसका ट्रीटमेंट करें, तो आपकी लाइफ काफी नॉर्मल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सन सेंसिटिविटी है तो सनस्क्रीन और आप फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहनें, आंखों के लिए आप चश्मा यूज करें, तो अगर ऐसे यूज करें तो आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहती है। आपको अपनी स्किन को यूवी लाइट से बचाने के सारे प्रयास करने पड़ेंगे। एल्बिनिज्म छूने से नहीं फैलती है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि अगर किसी को एल्बिनिज्म है या उसकी चमड़ी वाइट है आप उसे टच करेंगे तो आपको एल्बिनिज्म हो जाएगा। एल्बिनिज्म जेनेटिक कंडीशन है, सिर्फ पेरेंट्स से ही बच्चों में जाती है, टच करने से वो फैलती नहीं है।
0: मीनाक्षी कितनी सही बात कही है डॉक्टर ने, और देखा जाए तो ये मीनाक्षी सच में दुनिया में कई

0: ऐसे लोग हैं जिन्होंने एल्बिनिज्म के होने के बावजूद भी हार नहीं मानी है, अपनी प्रतिभा से एक अलग ही पहचान बनाई है।
1: सच में भाई, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एल्बिनिज्म होने के बावजूद भी अपनी प्रतिभा से पहचान बनाई, जैसा कि तुमने कहा, सही बात है। क्योंकि भाई सफलता का कोई रंग तो नहीं होता ना, और त्वचा का रंग ये बिल्कुल तय नहीं करता कि आप सफल नहीं हो सकते।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कहते हैं ना कि असली पहचान मेहनत, आत्मविश्वास और सपनों से बनती है।
1: तो एल्बिनिज्म के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति का सम्मान करें, उनका मजाक ना उड़ाएं। क्योंकि ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अक्सर हमने समाज में देखा है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आसपास के जो लोग होते हैं वो अपने कामों को छोड़कर पलट पलट के, मतलब उनकी ओर देखना, तो इस तरह से वो अंदर से कहीं
0: ना नहीं करना चाहिए उनको,
1: किसी को एकदम टकटकी लगा के नहीं देखना चाहिए। क्योंकि ऐसे वो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो रहा था। और आत्मविश्वास और सपनों से बनती है जिंदगी। तो हम अगर किसी को टकटकी लगा के ऐसे देखते हैं किसी भी तरह की कमी होने पर, तो उनके आत्मविश्वास को हम कहीं ना कहीं घटा रहे होते, तो ये तो अच्छी बात नहीं होती ना।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मैं तो कहूंगी कि जरूरत पड़ने पर उनका आप सहयोग करें, और सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें बराबरी का अवसर दें।
1: बराबरी का अवसर दें। और बातचीत जब हम उनसे करते हैं, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, जब हम उनसे बात करें तो हमारा जो अंदाज हो बात करने का बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ताकि वो उन्हें ये याद ही ना रहे कि ऐसा भी कुछ है क्या।
0: क्योंकि कहते हैं ना कि अलग दिखना कमजोरी नहीं, प्रकृति की एक अनोखी पहचान है।
1: वाह क्या बात कही, अलग दिखना कमजोरी नहीं है। और हमने इतने जरूरी विषय पर बात की है, गंभीर विषय है ये, लेकिन गानों के बिना तो बात आगे नहीं बढ़ती। हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि हम हर तरह की बातचीत भी कर लेते हैं और अच्छे अच्छे गाने भी लिसनर्स के लिए लेकर आते हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छा सा गाना भी हो जाना चाहिए।
0: हो जाना चाहिए, एक बढ़िया सा गाना प्ले कर रही हूँ। और हमारे लोगों तक इसकी जागरूकता भी पहुंच चुकी होगी इस टॉपिक पे। तो चलिए अभी फिलहाल इंजॉय कीजिए हमारा प्रोग्राम में मीनाक्षी और वृंदा के साथ ये गाना।

0: मीनाक्षी, अब आप ही बता दीजिए कि अगला टॉपिक कौन सा है और किस पर हम बात करने जा रहे हैं।
1: वृंदा, हम नवा प्रोग्राम में बिल्कुल एक के बाद एक हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हमारे लिए सेलेक्ट किए जाते हैं और हम उन पर बात करते हैं। हम प्रकृति की बात हमेशा करते हैं, उसको सजाने संवारने की बात करते हैं। हम प्रकृति को माँ कहते हैं क्योंकि प्रकृति हमें सब कुछ देती है, हवा, पानी, धूप, नदी, पहाड़, जंगल और भी बहुत कुछ।
0: बिल्कुल, पर सोचिए, प्रकृति से इतना सब कुछ लेने के बावजूद हम उसे वापस क्या लौटाते हैं, हर तरह का प्रदूषण।
1: बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है और सोचते भी हैं हम लोग और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी सोच रहे हैं अभी तक। ये बात तो है, प्रकृति में बहुत कुछ देती है वृंदा, पर हम अपनी ज़रूरतों से कहीं अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं। जैसे जंगल कट जाते हैं, नदियां सूख जाती हैं, विकास हो रहा है तो पहाड़ के पहाड़ काट दिए जाते हैं। ज़रूरी भी है, हम ये भी नहीं कह सकते कि विकास नहीं होना चाहिए, विकास होता है, चीज़ें जाती रहती हैं, लेकिन हम उनको वापस, धरती माता को वापस करने की जो स्थिति है वो हमारी ओर से कम होती है। और होता क्या, जैसे जब मां रूठ जाती है तो दो चार चाटे लगते ही हैं गाल पे हम सब बच्चों के, उसी तरह से जब प्रकृति मां रूठती हैं तो उग्र हो जाती हैं और फिर हमें बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता।
0: अच्छा मीनाक्षी, अभी हाल ही की मुझे बात ध्यान आ रही है, अभी मैं न्यूज़ में देख रही थी कि इस बार उत्तराखंड में ना पर्यटकों की भीड़ थोड़ी कम हो गई है और लोग हिमाचल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और उसका रीज़न जानती हैं क्या है, कि वहाँ पर जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो ठंड के लिए लोग वहाँ जाते हैं कि थोड़ा सुकून मिले, थोड़ी शांति मिले और वहाँ थोड़ा मौसम अच्छा रहे, प्लेजेंट रहे। लेकिन वहाँ इस टाइम इतनी गर्मी, इतनी धूप है कि लोग मतलब उसकी जगह हिमाचल और कश्मीर साइड जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं।
1: तो जो स्थिति अभी उत्तराखंड की तुमने बताई है जी, अब ये जो भीड़ की भीड़ जा रही है क्योंकि लोगों के पास
0: चारधाम के लिए लोग जा रहे हैं,
1: जाना चाहिए, लेकिन जो नजरिया है कहने का ये है कि अब जाना इतना सरल हो गया है कि सबके पास अपने अपने वाहन है, लोग फैमिली की फैमिली मतलब डेस्टिनेशन तय, कहीं का भी डेस्टिनेशन तय कर लेते हैं और निकल जाते हैं गाड़ियों के द्वारा। होता क्या है कि धुआं निकलता है तो कहीं ना कहीं इस तरह से गर्मी तो बढ़ रही ना, आप अपने साथ सामान लेकर जा रहे हैं, आप अगर अवेयरनेस का नहीं ध्यान रखते हैं कि हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, तो आप जो खाते पीते हैं आप पहाड़ों पर वो सारी चीजें छोड़ कर आ जाते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, रैपर्स हैं। तो इस तरह से जो गर्मी बढ़ने की बात कही तो कहीं ना कहीं ये कारण भी हमारा ही किया हुआ है।
0: हाँ बिल्कुल, ये सही कह रही हैं आप मीनाक्षी की, जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं। अब देखिए, जैसे सुबह हम 8 बजे तक मॉर्निंग वॉक कर सकते थे पहले, और फिर इसके बाद जैसे जैसे धूप बढ़ जाती थी तो हवा गर्म होने लगती थी, लेकिन आजकल जो है 8 बजे से पहले ही देख लीजिए सुबह 6-7 बजे इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि आप निकल ही नहीं सकते हैं बाहर। और शाम का भी यही हाल है,
1: बिल्कुल
0: शाम अगर आप वॉक पर जा रहे हैं और हम देखते हैं लेट इवनिंग भी वॉक करते टाइम अगर हम निकले तो हवा में वही गर्माहट रहती है।
1: मतलब ये क्वेश्चन रहता है मन में कि हम निकले तो भाई निकले कब, हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो मॉर्निंग में निकल रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग में कुछ ही घंटों के बाद सूरज की इतनी तपन आने लगती है कि हम पसीने से नहा धोकर पार्क से लौटते हैं, तो ये भी। और शाम वाला हाल जो तुमने कहा वो भी है कि हम कब निकले, कि भाई सूर्यास्त के समय अक्सर लोग पहले होता था कि 5-4 बजे तक लोग निकलते थे, लेकिन अब तो सोचना भी मुहाल है कि हम इस वक्त निकल सकते हैं। तो हम देर से निकलते हैं, देर से लौटते हैं, होता क्या कि फिर पॉल्यूशन का भी हम सामना करते हैं, तो समझ नहीं पाते कि हम अपने लिए कुछ प्लस करके आ रहे हैं या माइनस हो रहा है सब कुछ।
0: एक्चुअली बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और अच्छा,

0: हैं और भीड़ बढ़ाते जा रहे हैं अपने आसपास।
1: ऑनलाइन शॉपिंग में तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग में एक दूसरे की देखा था कि हम क्या करते हैं कि ये भी ले लें ये भी ले लें करके काफी हमारा बजट भी बिगड़ जाता है और चीजें अननेसेसरी हमारे पास कलेक्ट होने लगती
0: है। ऑनलाइन पेमेंट हमारे लिए अच्छी बात है लेकिन होता क्या कि हम उसको चटपट में बदल देते हैं कि चट से पसंद किया और पट से हमने उसे ऑर्डर किया, आ भी जाता है तुरंत और फिर हम उसे यूज़ करते हैं। और जब चीज़ें हमें लगातार मिल रही होती तो हमारा चीज़ों से जी भरने सा लगता है
1: जी।
0: तो वही जो जिसको लेने के लिए हम ललायित रहते हैं और चट से अगर हमने ले लिया तो हम दूसरा कुछ देखने लगते हैं कि अरे अब ये ले लिया अब हमें ये लेना है। तो मतलब कि अगर हम इस पर बात करें तो कभी हमारी बातें खत्म नहीं होने वाली
1: बिल्कुल नहीं होंगी। और लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है पीने का पानी वो खत्म ज़रूर हो जाएगा अगर हम उसकी बचत नहीं करेंगे।
0: बिल्कुल, धरती माँ भी हाँ तक देंगी भाई, एक उनके आंचल में भी सीमित चीजें हैं और सबके लिए हैं।
1: हाँ।
0: एक तो ये भावना कि नदियों में अगर पानी है तो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, टैप में हमारे जो पानी आ रहा है तो सारे पानी पे हमारा अधिकार नहीं, हम जितना यूज करना हो तो नहीं करें। अनावश्यक पानी बहाने की जो लोगों की आदत है, लोग अपनी गाड़ियां धुल रहे होते हैं है ना, बेवजह आप घर के मतलब यूज किए हुए वाटर से आप अपने घर का द्वार भी धो सकते हैं और गाड़ियां भी धुल सकते हैं, रोज धुल सकते हैं, लेकिन वो एक सुविधा मिल गई जो पहले था कि कुएं से पानी खींचना है या हैंडपाइप से पानी खींचना है तो भाई कांधों में दर्द, हमारी बाजुओं में दर्द होता था तो हमें पानी खर्च करने में भी एक कलक सी लगती थी, अब क्या एक स्विच केवल हम दबाते
1: अच्छा,
0: हैं।
1: ये हाँ। भी कहीं ना कहीं जो अभी आपने बात कही है ये भी एक तरह की एक्सरसाइज
0: भी थी, वाकई में एक्सरसाइज थी। अब क्या एक स्विच आप ऑन करते हैं भाई, आपकी मोटर आप बोरिंग है घर का तो मोटर चल गई, अब पानी की एक मोटी सी धार निकल रही है और लगातार बह रही है, कहना भी कुछ लोग तो खैर जागरूक भी हो रहे हैं कि लोग इन चीज़ों को सोचने लगे हैं, लेकिन तब जब तक आप किसी नए व्यक्ति को जागरूक करें करें तब तक कितने लीटर पानी आप बहा देते हैं, इसका मतलब जो खामियाजा है ये भरा नहीं जा सकता है। तो छोटे शब्दों में अगर कम शब्दों में कहें तो पानी बिजली इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें हमेशा रहेगी, तो ज़रूरत भरी इन्हें इस्तेमाल करना है। थाली में भोजन में वो तो नहीं लेना जितना कि हम खा लें, आप बार बार ले लें लेकिन अनावश्यक ना कहें। इस तरह का जो माहौल है आप मुस्कुरा रही हैं, शादी ब्याह में मैंने देखा है कि लोग
1: नहीं,
0: खाते
1: नहीं,
0: हैं
1: आप बिल्कुल सही कह रही
0: हैं, पसंद आया तो डस्टबिन में भरी की भरी थाली चली जाती है। तो ये भारत है और अन्नपूर्णा को हम लोग काफी पूजते हैं तो थाली में भोजन माता अन्नपूर्णा का स्वरूप होता है तो उसकी भी हमें कद्र कर दी चाहिए।
1: अच्छा, इन शॉर्ट हम यही कहना चाह रहे हैं कि जरूरतें सीमित होंगी तो खर्चा भी कम होगा और फिर मुस्कुराएगी हमारी धरती हमारी प्रकृति और मुस्कुराएंगे हम भी।
0: और एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि सेलिब्रिटीज़ जो अगर कोई बात कहते हैं तो वो याद रह जाती है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ में देखा कि जो चंद्रकांता सीरियल में जो क्रूर सिंह नहीं बने थे अखिलेंद्र मिश्रा जी, उनको क्रूर सिंह से ही ज़्यादा मुझे याद आते हैं वो, उन्होंने भी जो तपती धूप, वो अपनी शूटिंग में कहीं बिजी हैं और तपती धूप में शूटिंग करें तो उन्होंने भी पेड़ों के महत्व को बताया है बाकायदा एक वीडियो बनाकर। तो जब सेलिब्रिटीज़ भी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि आम आदमी खास आदमी सभी जागरूक हो रहे हैं प्रकृति को बचाने के लिए।
1: ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं अगर हम बात करें, हमारे अमिताभ बच्चन जी से लेकर ये सारे ऐसे अभियानों में जुड़े हैं, हमारे जो जैकी श्रॉफ हमारे जब
0: वो तो लॉकेट ही पहनते हैं
1: तो हमें भी धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन प्रकृति की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए।
0: और एक चीज मैंने की है आज, एक छोटा सा प्लांट है मेरे पास वो मैं आज तुम्हें देकर ही जाने वाली हूँ, छुपा रखा था और मैंने अब बोल दिया तो देना है ही।
1: थैंक यू सो मच। और अभी फिलहाल मुझे लग रहा है हमारे लिसनर्स भी इंजॉय कर रहे होंगे हमारे हमनवा प्रोग्राम को और अभी इंजॉय कीजिए ये ब्यूटीफुल सॉन्ग प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए।

0: सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी भाई मेरा पसंदीदा गाना था ये। और जब भी कहीं घूमने के लिए हम लोग जाते ना तो गाड़ी में सबसे पहले यही वाला गाना प्ले कर दिया जाता है।
1: वाह क्या बात है, और काफ़ी खूबसूरत नगमा है ये और खूबसूरती से गाया भी गया है इसको।
0: भाई अगर सफ़र है और हम जा रहे हैं और मौसम सफ़र के अनुकूल हो जाता है तो बिल्कुल सफ़र का जो मज़ा है दोगुना क्या चौगुना यानी कई गुना बढ़ जाता है। और सिर्फ हम उसके हम मौसम की बात क्यों करें, अगर हमने मौसम के अनुसार कुछ अपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो हैं तो हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो हमारे सफ़र का मज़ा बढ़ जाता है। मौसम जो है हमेशा एक सा नहीं रहता वृंदा, कभी सर्दी कभी गर्मी तो भाई कभी बारिश या कुछ मिला जुला सा मौसम भी हो जाता है। जैसे आज का ये दिन रहा कि मैं सोच रही थी तुम भला आ पाओगी कि अकेले हमनवा मुझे ही करते रहना है। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम मौसम के अनुसार क्या आहार लें, इस पर हम हमेशा बात करते हैं, पर क्या पहने
1: जी
0: पर भी है हम आज मेन जो फोकस है हमारा यही रहेगा कि मौसम के अनुसार हम क्या पहने, हमारा पहनावा कैसा हो, ये क्यों जरूरी है।
1: अच्छा ये जो अभी आपने बात कही है ना कि पहनावे वाली, तो मेरी एक्चुअली ये रोज़ की प्रॉब्लम है, बल्कि बहुत सारे लोगों की भी मुझे लगता है ये प्रॉब्लम होगी कि अलमारी ओपन करो तो सामने खड़े हो जाओ, अब सोचो आज क्या पहनूं, आज क्या मैं पहन कर जाऊं, या घर पे भी पहनना है तो क्या पहना जाए।
0: बिल्कुल अगर घर पे है तो एक क्वेश्चन आता है कि आज खाने में क्या बनेगा, है ना, सबके घर का क्वेश्चन है। और जब हम बाहर कहीं निकल रहे होते हैं काम से तो सबसे पहला क्वेश्चन जिसको हम मुँह से भले ही ना बोले लेकिन दिमाग में चलता रहता कि आज हम क्या पहने।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं
0: भाई, हमारा जो शहर कानपुर भी तो भाई मौसम की अदला बदली से अछूता नहीं है। हम सभी रोज इसी सवाल का सामना करते हैं कि आज क्या पहने, तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी पहने उसमें स्टाइल और फैशन तो हो वो आपकी मर्जी, पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये बात है कि कुछ ऐसे कपड़े पहने जाएं जो ऋतु के अनुकूल हो और रंग भी कुछ वैसे ही चुने जाएं।
1: जी ऋतु जी तो आज हमारे साथ नहीं है लेकिन खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ठंड में हम गहरे रंग के कपड़े चुनते हैं देखा जाए नॉर्मली, और

0: गर्मी की बात करें तो हल्के रंग के होते हैं, और ऐसे फैब्रिक हम चुनते हैं जो त्वचा को सांस लेने दें, यानी कि आरामदायक हों
1: और ढीले ढाले हों। आजकल जैसे आजकल भी किसी को अगर देख लो आपके वो टाइट से कपड़े पहने हैं तो पहने वो बंदा होता है, लेकिन गर्मी का एहसास हम लोगों के पास तक आता है।
0: नहीं, अच्छा, लेकिन मीनाक्षी एक चीज है कि कई बार होता है ना कि सामने वाला आपको कह रहा है कि ये तुम पे अच्छा नहीं लग रहा या ये आपको नहीं पहनना चाहिए। हाँ, उसकी बात को पॉजिटिवली लें, ये नहीं कहते कि ना लें, बट अगर आपके लिए वो कंफर्टेबल है या आपको अच्छा लग रहा है वो पहनकर, तो जरूरी नहीं है कि आप वो कपड़े ना पहने। आप पहन सकते हैं बिल्कुल, बस आपको आरामदायक होने चाहिए।
1: बिल्कुल, ये आपकी स्वचेतना की बात है कि आप ये सोच सकते हैं कि सामने वाले की बात की आप तसल्ली भी रखें कि आपने उनकी बात धैर्य से सुन ली, लेकिन करें वही जो आपको अच्छा लगे और वास्तव में वो अच्छा हो भी। ठंड में हम गहरे रंग के कपड़े चुनते हैं जैसा कि तुमने कहा, तो गर्मियों में हम हल्के रंग चुनते हैं क्योंकि वो गर्मी से हमें बचाते हैं। कपड़ों का जो सही चुनाव होता है ना वृंदा, वो हमारा लुक तो भाई अट्रैक्टिव बनाता ही है, साथ ही कॉन्फिडेंस भी देता है, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं और सही कपड़ों का चुनाव है तो लोगों में आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं और आराम तो हमें मिल ही रहा होता है।
0: ये तो आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आराम मिलता है और साथ ही साथ हमने देखा है कि हमारी स्किन प्रॉब्लम्स भी कम होती हैं।
1: बिल्कुल, जैसे मई जून का जो महीना है तो ये तो अपनी तपन के लिए ही जाने जाते हैं, तो भाई इन दिनों हमें कॉटन है, सबसे पहले तो कॉटन ही मैं तो कॉटन ही पसंद करती हूँ और बाकी सब भी पसंद करते हैं। इसके बाद अगर किसी की बारी आती है तो लिनन फैब्रिक की आती है
0: जी।
1: ये इस फैब्रिक को भी लोग खूब चुनते हैं इन दिनों। इन कपड़ों का चुनाव करना चाहिए आजकल। अगर इन दिनों सिंथेटिक फैब्रिक पहना तो स्किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है जैसा कि वृंदा ने बताया, और तंग कपड़े तो बिल्कुल भी ना पहने जाए। और एक फनी चीज़ मुझे यहाँ याद आ रही है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने अभी पिछले महीने मई में ही देखा, मेरा कहीं जाना हुआ तो मुझे बस लेनी पड़ी।
0: अच्छा।
1: तो मैंने सोचा एसी होता है, एसी वो इलेक्ट्रॉनिक बस थी, तो मैंने कहा चलो इसका भी सफर करके देखते, क्योंकि अगर हम अपने प्रोग्राम में बात करते तो जब तक खुद बैठ के उसका आनंद न ले तो वो लगेगा कि फिर हमने समझा ही क्या जो हम यहाँ बोले। तो मैंने भी सिर्फ बैठ के देखू, तो खैर उसमें क्या था, वो जो आए थे भाई साहब वो किसी शादी से लौटे थे, उन्होंने 3 पीस पहन रखा था और इतना टाइट था कि मतलब उनको मैंने एक बार देखा तो नज़रअंदाज कर दिया। वही जो हमारी लोगों की बात है किसी पे नहीं मुस्कुराना चाहिए, लेकिन मुस्कुराने का पूरा उन्होंने मौका सबको दिया था और पूरी बस में, क्योंकि मई की इतनी तपन वाली गर्मी उन्होंने जो पहन रखा था टाइट टाइट सा पूरे जूते मोजे सब, तो लोग उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो इस तरह के कपड़े ना पहने कि आप हास्यास्पद लगें लोगों के बीच में।
0: हाँ, पर कई बार होता है कि ऐसा भी होता है मीनाक्षी कि कोई ऐसा पर्सन जो किसी जगह से लौट रहा होता है, मान लीजिए किसी जरूरी काम से वो लौट रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि उनको चेंज करने का टाइम ना मिला हो, तो ये भी स्थिति हो सकती है।
1: हाँ, तो मेरा तो कहना यही मतलब है कि हम इस तरह के, जैसे कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हमारा मौसम के अनुकूल पहनावा हो, तो फैब्रिक चुनने वाली जो बात है और जो कपड़ों की टाइटनेस है कि बहुत टाइट कपड़े ना पहने जाए, है ना, कुर्ते हैं, पैजामे हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं।
0: हाँ, अच्छा, पहनावे की हम बात कर रहे हैं तो पहनावे की अगर हम देखें तो हमारे कपड़ों के साथ साथ हमारे पैरों को आरामदायक हो ऐसी स्लीपर्स और ऐसे फुटवियर का भी हमें चुनाव करना चाहिए।
1: बिल्कुल, जिसमें तलवों में पसीना ना आए, तो खुजली और फंगस की शिकायत ना होने पाए हमारी स्किन में।
0: बिल्कुल, ऐसे चीज़ों का अगर आप चुनाव करेंगे तो आप कंफर्टेबल भी रहेंगे। एक बार मुझे याद है कि मैं उत्तराखंड गई थी, तो वहाँ पर चलता है एक तरीके का एक पौधा होता है, उस पौधे से वो बनाए जाते हैं स्लीपर्स, और उसको पहनना कहते हैं बहुत आरामदायक होता है, और बिच्छू घास जिसको कहते हैं।
1: हाँ,
0: तो उसके इतने ज्यादा आरामदायक होते हैं कि कहते हैं कि आपके तलवे जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा आराम पहुंचता है, आपके तलवों में आपको बहुत ज्यादा थकान नहीं होती अगर आप ज्यादा चल लें, तो ये भी सारी कंफर्टेबल की चीजें हैं।
1: हाँ,
0: जो हमारी प्रकृति ने हमें दी है।
1: बिल्कुल, और वृंदा जी ने बिल्कुल अपने स्वभावगत एक अच्छी जानकारी भी हमारे श्रोताओं तक पहुँचा दी है। अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो पहले मौसम की सही जानकारी अपने पास कर लें, कि क्योंकि जहाँ पर हमें वहाँ गर्मी है हो सकती है, लेकिन हम पहाड़ी इलाकों में अगर जाते हैं तो सर्दी होती है वहाँ पे, तो बिल्कुल मौसम अपडेट लेकर जाएं कि कहाँ कौन सा मौसम किस तरह का रहने वाला है, तो पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो यही एक कारण है कि मौसम के अनुसार पहनावा क्यों ज़रूरी है, वो हमारे आराम के लिए ही ज़रूरी है।
0: और अभी फिलहाल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग और टॉपिक के अकॉर्डिंग गाना भी बहुत ज़रूरी है मीनाक्षी।
1: बिल्कुल ज़रूरी है, तो प्ले होना चाहिए ना।
0: जी बिल्कुल, प्ले कर रही हूँ, आप भी इन्जॉय कीजिए हम नवा प्रोग्राम में।

0: जी हाँ, काम तो बताने की बात है कि हमें अगले टॉपिक की ओर बढ़ना है। वृंदा 102.2 एफएम की फ्रिक्वेंसी पर हमारे श्रोता साथी सुन रहे हैं प्रोग्राम हम नवा, और इस प्रोग्राम में आज मीनाक्षी और वृंदा हैं आपके संग।
1: जी बिल्कुल। और मीनाक्षी, अब हम बात करने जा रहे हैं, हम इतनी देर से मौसम की, पहनावे की, ये सारी बातें कर रहे थे, तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कहीं
0: बिल्कुल
1: ना कहीं।
0: जुड़ी हुई है।
1: और जीवन में स्वच्छता का महत्व भी इन सब से रिलेटेड है।
0: भाई अगर जीवन में खुशहाली, सेहत और सफलता चाहिए तो ये आदत जरूर अपनाइए, स्वच्छता की आदत, जैसे कि हमारी वृंदा बता रही हैं। और हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जीवन में स्वच्छता की कितनी महत्व है ना,
1: यानी कि पर्सनल हाइजीन एंड सराउंडिंग्स क्लीनलीनेस कितना ज्यादा जरूरी है, उसको जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हम मीनाक्षी खुद को साफ सुथरा रखते हैं, अपने आस पास के वातावरण को स्वच्छ रखना भी उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: सुनने में लेकिन ये चीजें आसान लगती हैं, लेकिन इसका असर हमारी सेहत, आत्मविश्वास और समाज पर बहुत गहरा पड़ता है।
0: बिल्कुल, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कई बीमारियां केवल साफ सफाई की कमी के कारण फैलती हैं। हाथ धोने जैसी छोटी सी ये आदत है, और लेकिन ये छोटी सी जो आदत है ये भी हमें अनेक संक्रमणों से बचा सकती है। यानी स्वच्छता केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ रहने के लिए भी बेहद जरूरी है।
1: अच्छा मीनाक्षी, बचपन से हम सुनते आए हैं कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी कि भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता है अगर हम स्वच्छता रखें। और आज के टाइम में इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई है, तो पर्सनल हाइजीन का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, रोज नहाएं, दिन में दो बार दांतों की सफाई करें, हाथों को साबुन से धोएं, साफ सुथरे कपड़े पहने, नाखून साफ रखें, अपने बालों की सफाई रखें, और ध्यान रखें कि एक छोटी सी भी लापरवाही अगर अपनी पर्सनल स्वच्छता के लिए आपने की तो किसी बड़ी बीमारी की शुरुआत हो सकती है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और अगर गंदगी रहेगी तो मच्छर पनपेंगे, मक्खियां हैं और कई तरह की बीमारियों को हम न्योता दे देंगे।
0: भाई तभी तो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए घर के आसपास पानी ना जमा होने दें, बार बार संदेश हम अपने यहाँ से भी प्रसारित करते हैं, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में ही डालें, और गीले और सूखे कचरे वाली बात भी हम कहते हैं कि भाई हरा और पीला डस्टबिन जो होता है इन्हीं चीजों के लिए, तो इसका भी ध्यान आप रखें।
1: जी अच्छा मीनाक्षी, स्वच्छता की बात हो और स्वच्छ भारत मिशन का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
0: बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य है भारत देश को साफ और स्वच्छ बनाना। तो ये सफाई हमारी सड़कों में, हमारे जो मतलब सार्वजनिक वाहन है वहां पर भी दिखनी चाहिए। और इस अभियान के तहत खुले में भाई शौच से मुक्ति बहुत हद तक मिल चुकी है भारत को। स्वच्छ शौचालयों का निर्माण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस अभियान ने स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप दे दिया है।
1: अच्छा, आज हम टेक्नोलॉजी की तरफ जैसे मीनाक्षी आगे बढ़ रही है, तो स्वच्छता को भी इससे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। जैसे अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो नगर निगम के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल या मोबाइल ऐप पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कूड़ा उठाने या सफाई से जुड़ी कोई भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो ऐसे कई पोर्टल्स हैं जहां पर आप जाकर शिकायत दर्ज कीजिए, तो कुछ ही घंटों में आपकी शिकायत जो है वो सुनी जाएगी।
0: बिल्कुल, स्वच्छता कोई एक दिन का अभियान नहीं है बल्कि जीवन भर की आदत है। साफ सुथरा वातावरण शरीर ही नहीं मन को भी स्वस्थ रखता है। और एक चीज और, जैसे आपने कहा कि नगर निगम के पोर्टल पर हमें शिकायत करनी चाहिए, साथ ही साथ हम शिकायत तो करें लेकिन अपने कर्तव्य को भी ध्यान रखें कि अगर जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन आते हैं, सफाई कर जाते हैं, तो उसके बाद हमें कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। और याद रखें, स्वच्छ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वच्छ समाज, यही है बेहतर भविष्य की पहचान।
0: और अब मुझे लगता है कि अगले गाने की ओर हमें बढ़ना चाहिए वृंदा, क्योंकि घड़ी भी इशारा कर रही है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है प्रोग्राम में।
1: बिल्कुल, तो एक बेहतर गाने की तरफ, बेहतर भविष्य की तरफ हम बढ़ रहे थे, तो एक बेहतर गाने की तरफ भी बढ़ ही लेते हैं।
0: लेते हैं
1: जी।

0: वृंदा, कुछ लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर सामने आते हैं और जब बात हो नारी शक्ति की तो वे अपने परिवार, अपने अस्तित्व के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। आज हम एक ऐसी महिला की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं मीनाक्षी आप। और अब हम अपने इस नेक्स्ट टॉपिक पर पहुँच चुके हैं जो है स्वयं सहायता समूह। और कौशाम्बी के पूरब सरनावा गाँव की किरण शुक्ला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आज आत्मनिर्भर बनी है और इसका कहीं ना कहीं श्रेय उसी स्वयं सहायता समूह को जाता है।
0: ये किरण खाद्य उत्पाद व्यवसाय से हर महीने 15,000 रुपए से ज्यादा कमा लेती हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
1: किरण बेसन के लड्डू, नमकीन, अचार और अन्य घरेलू उत्पाद बनाती हैं। और जानती है मीनाक्षी, ये उत्पाद स्थानीय बाजार में काफी लोकप्रिय है।
0: भाई 2018 में स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद किरण का जो जीवन है वो बिल्कुल ही बदल गया। समूह से मिली मदद और प्रशिक्षण ने उनमें आत्मविश्वास जगाया। मतलब जो हुनर उनके अंदर था वो पहले से पहचानती नहीं थी, और जैसे ही वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तो उन्हें लगा कि उनमें भी कुछ बात है।
1: जी, और धीरे धीरे करके उनके प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी और आज उन्होंने अपने गाँव सहित पूरे क्षेत्र में पहचान बनाई है।
0: इसके अलावा सरसवा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में समूह द्वारा एक कैंटीन भी चलाई जा रही है, जिससे बाकी महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।
1: किरण शुक्ला की सफलता अन्य महिलाओं के लिए देखा जाए तो एक इंस्पिरेशन है।
0: बिल्कुल,
1: और मुझे लग रहा है यहाँ पर हम किरण की बात कर रहे थे और ऐसी महिलाएं हम सब के लिए इंस्पिरेशन होती हैं और कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो अभी फिलहाल मैं भी कुछ सीखने के लिए बैठी हुई हूँ।
0: बिल्कुल, तुम बात पेट पूजा की कर रही हो, यानी कि हम रेसिपी वाले सेगमेंट में आ चुके हैं, क्योंकि घड़ी भी हमें यही इशारा कर रही है। तो भाई आज रेसिपी में लीची का जूस की रेसिपी लेकर आए हैं। इसके लिए 500 ग्राम लीची चाहिए होंगी, ठंडा पानी 2 कप, चीनी स्वाद के अनुसार, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, बर्फ के कुछ टुकड़े लगभग 5 या 7, पुदीने की कुछ पत्तियां गार्निश करने के लिए। और अब इसकी विधि भी बता देती हूँ। लीचियों को छीलकर गूदा निकाल लेना है और मिक्सर में इसे डालना है। अब इसमें थोड़ा पानी, चीनी और नींबू का रस मिलाएं, 1 या 2 मिनट तक अच्छी तरह से ब्लेंड करें। यदि जूस गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा और पानी मिला सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इसे सर्व करें। और लीची जो है ना विटामिन सी से भरपूर होती है, जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, गर्मी से बचाती है व शरीर को हाइड्रेट भी रखती है। इससे इसमें जो है ना वसा की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, और बल्कि ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। और तुरंत ऊर्जा देने में लीची बहुत सहायक होती है।
1: आपने अभी कहा ना कि हाइड्रेशन का काम करती है, ये ताजगी देती है। तो जो आजकल ये लू चल रही है, बट आज मौसम सही है, पर अदरवाइज देखा जाए तो बहुत ज्यादा लू वाला मौसम है, तो उससे बचाने का काम भी लीची करती है।
0: बिल्कुल,
1: और ये हम देखें तो 80

0: से इसमें 82% प्राकृतिक पानी होता है जो शरीर को वैसे ही पानी की कमी डिहाइड्रेशन से बचाता है, होने नहीं देता है, और त्वचा के लिए तो वरदान है ही लीची।
1: तो बिल्कुल, ये कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी जो लीची है इसे आप अपनाएं, और जो चीजें वृंदा ने बताई हैं ये सारी चीजें जब आप लीची को शामिल करेंगे अपने आहार में तो समझ में आने लगेंगे।
0: हाँ, और हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है लीची। और साथ ही साथ अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि लीची त्वचा के लिए अच्छी है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी है, तो इसका सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। कहते हैं ना कि मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए,
1: और हमारे श्रोता समझ चुके होंगे वृंदा कि तुम्हें लीची वास्तव में बहुत पसंद है
0: जी। और अब देखो वक्त इजाजत नहीं दे रहा है आगे प्रोग्राम को बढ़ाने की, तो मीनाक्षी, तो अब मीनाक्षी आपके साथ मॉर्निंग से जुड़ी हुई थी
1: और वृंदा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेंगी आपके साथ
0: जी म्यूजिकल प्रोग्राम में। आज एक स्पेशल प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आ रही हूँ, योग दिवस बच कुछ ही दिन दूर है, तो योग दिवस पर एक स्पेशल प्रोग्राम आप एंजॉय करिएगा मेरे साथ। डिजिटल युग में योग, स्क्रीन से सुकून तक, मिलूंगी मैं आपसे 3 बजे से, और उसके बाद आपकी पसंद के नगमे मैं आपको सुनवाऊंगी।
1: बिल्कुल, तो फिलहाल प्रोग्राम हम नमाज़े यहाँ पर, श्रोताओं से हमें इजाज़त लेनी चाहिए और मिलकर क्या कहना चाहिए।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

नमस्कार, 12 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना

प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 39 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री योगी गोरखपुर के बढ़लगंज में 295 करोड़ रुपए से अधिक की 319 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वह एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेंगी। उत्तराखंड में हुई बारिश के कारण पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। अत्यधिक पानी के चलते नदी के धनारा घाट पेंटून पुल पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने पुल से आवागमन न करने की चेतावनी जारी की है। इससे ट्रांस शारदा क्षेत्र की करीब 1.5 लाख की आबादी का संपर्क जिला और तहसील मुख्यालय से कट गया है। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के आजमगढ़ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार सामने चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। राजधानी लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या, सुल्तानपुर समेत आसपास के जनपदों में आज सुबह से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 घंटों में जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर जनपदों में मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान जताया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

बहुत ही प्यारा सा गाना है, लेकिन ये तो कह रही थी कि जा रही पवन, तो मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी प्यारी सी हवाएं चल रही हैं और उसमें एफएम रेनबो पर 100.7 एफएम रेनबो पर प्रोग्राम आ चुका है, जिसके शत्रुपा के तहत आज का जो सेगमेंट होता है वो है फैमिली फन, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और आज फैमिली फन प्रोग्राम करते वक्त बहुत ही खुशी के साथ सुबह से हम इनफैक्ट इस खुशी को मना रहे हैं, वो खुशी ऐसी कि रिमझिम फुहा रहे हैं, पकौड़े हैं, परिवार है, आप हैं, हम हैं, और उसके साथ साथ लजीज फेवरेट सी डिश भी है जिसका मन पूरी तरह से आपने प्रिपेयर कर लिया है कि उस डिश को हम बनाने वाले हैं। और फैमिली में फन को बरकरार करने के लिए कुछ आपने सेलिब्रेट करने के लिए सोच के रखा है, चूँकि मौसम जब बहुत ज़्यादा

साथ देता है ना, तो मौसम में कोई भी मौसम अगर आपका फेवरेबल कुछ चीज हो सकती है तो उस मौसम में आपको उसको करने में एक अलग ही मजा आता है, एक अलग ही अंदाज के साथ उस काम को, या चाहे आपने कुछ ट्रिप प्लान कर रखा, कुछ भी आपको करना है, मौसम अगर फेवरेबल है तो बस बल्ले बल्ले हो जाती और इन सब चीज़ों के लिए आप काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं और कभी कभी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए भी ये दिन आपको उत्साहित करता है। तो हम आपसे क्या कहेंगे कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं कि आप खिड़की खोल के अपनी बालकनी पे, अपने टेरेस पे, अपने आंगन में या घर के बाहर कहीं भी जहाँ पर आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ करिए और आप अपने फैमिली में या अपने पड़ोसियों के जरिए कुछ किस तरह का इन्जॉयमेंट कर, आपके मेल के जरिए आप अपने फैमिली में फन आज के दिन कैसे विशेष तौर पे ला सकते हैं वो आपके मेल का इंतजार हम करेंगे। FM रेनबो आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं हमें। रत्ना शुक्ला है आपके साथ प्रोग्राम फैमिली फन में। आप कहीं मत जाइए, मेल करके बताइए आप किस तरीके से अपनी फैमिली में आज फन को लाने वाले हैं, या आपने कुछ ऐसा कुछ सरप्राइज तो नहीं रखा है जो आप सिर्फ हमसे रेडियो पर शेयर करिए, और अपने घर वालों को बिल्कुल मत बताइएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप घर वालों को बता देंगे तो फिर शाम का या दोपहर का जो सरप्राइज आपने प्लान किया वो कहाँ चल पाएगा, है ना? तो उसको आपको बताने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको हमें मेल करना होगा। तो मेल के करिए, आपके मेल का हम इंतजार कर रहे हैं और प्रोग्राम फैमिली फन में रत्ना आपसे कहती है बस सुनते रहिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

वेल प्रोग्राम चल रहा है फैमिली फंड, 12:19 हो गए हैं और इस प्रोग्राम के साथ साथ हम आपसे क्या कहना चाहते हैं पता है आपको, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप कहाँ भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम फैमिली फंड में जुड़े हैं, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि देखिए आलोक साहू जी का मेल आ गया और लिखते हैं, मैं रायबरेली उचहार धमधमा से हूँ। हेलो मैम सर, आप कैसे हैं? हम लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ 8:30 बजे से मूसलाधार बारिश आंधी आई है और उचहार में वहाँ पर बारिश आंधी आई है और या नहीं, मैं मुझे तो पता नहीं, लखनऊ ऐसा है कि नहीं। और इन्होंने लिखा है कि ये फैमिली में फ़न करने की जो बात है ना, तो हमारे आगे जो पार्क बना है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कीचड़ सा हो गया है और बारिश के साथ साथ कुछ आसपास की नालियाँ भी हमारी भर गई, तो हम मोहल्ले वाले मिलकर एक कुछ ऐसा हम लोग ने प्लान किया फ़ोन से और उसके बाद हम सब लोग, बारिश हल्की सी थमी है तो हम लोग बाहर आकर उस पानी को बाहर निकाल कर, यानी कि उसकी जो निकासी बना सकते हैं उस पानी की निकासी बना करके और पानी इतना उसको उसका फ्लो बना दे रहे हैं जिससे हम लोग सब मिलकर ये मोहल्ले वाले सब काम कर रहे हैं, जिससे किसी भी घर में किसी भी तरह के मच्छर पनपना या किसी तरह की कोई बीमारी ऐसा कुछ भी पनप ना पाए और कोई भी बैक्टीरिया हानिकारक वहां पर पनप ना पाए। ऐसे हम आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारी सभी की फैमिली में सारे मेंबर जो जो आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, सब आए हैं और हम लोग बाहर कुछ अच्छा सा माहौल बना, अच्छे से वेदर में कुछ खाने पीने की भी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग को इस काम को करने के बाद क्या आगे करना है। ये तो बहुत अच्छा सा संदेश आपने, बहुत अच्छी सी प्यारी सी बात आपने कि इस तरीके से आप फैमिली फन कर रहे हैं और सब लोग मोहल्ले वाले मिलकर इस अच्छे से काम को भी कर रहे हैं और एक फन भी आपके बीच में क्रिएट हो रहा है। वैसे यूं भी बरसात का मौसम आते ही कुछ घर का माहौल एकदम से बदल जाता है ना, जैसे पहली बूंद जब गिरती है तो लगता है कि अरे इतनी सुंदी सुंदी खुशबू मिट्टी की जो होती है, चाहे आपके घर में आपके बालकनी में प्लांट्स लगे हों या आपके छत पे प्लांट्स लगे हों या आपके आंगन में प्लांट्स लगे हों या फिर बाकायदा बाग बगीचा हो, कहीं भी हो, तो वो जो सोंधी खुशबू है वो कुछ आपके दिल में ऐसे जज्बात उठाती है कि कुछ हमें अलग सा करना है और कुछ आज के दिन या इस मौसम को हमें किस तरीके से सजाना और सेलिब्रेट करना है ना। बस आप मम्मी को कहते हैं और थोड़ी आपको हेल्प भी करनी चाहिए अगर फैमिली में फन चाहिए ना, कि मम्मी से आप कहते हैं कि वो बेसन का डिब्बा उठाइए मम्मी और बेसन को पेस्ट बनाकर एक अच्छा सा एक बढ़िया वाली जो टेस्टी वाली पकौड़ी होती है उसकी तरफ बढ़ी मम्मी प्लीज़, आज खाने वाने के चक्कर में नहीं पड़े, थोड़ी सी पकौड़ी, थोड़ी सी चाय, थोड़ी सी कॉफ़ी या फिर कुछ आपका शरबत वगैरह, कुछ जो आप पसंद करते हो, इस तरीके का फन भी आप क्रिएट कर सकती हैं। आप कुछ बस फैमिली में खुशी की मुस्कान और वो दौर जब एक बार शुरू हो जाता है तो सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करने लगते हैं और कहीं ना कहीं हम बस इंजॉय करते हैं और फैमिली में फन अगर है, मुस्कुराहट है, एंजॉयमेंट है, तो बस क्या ही कहने, एफएम रेनबो है ना साथ आपके।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
3: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
4: RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और देखिए फैमिली फन का सफर यहाँ तक आ गया है, यानी कि 12:29 हो गए। प्रोग्राम फैमिली फन 100.7 एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं रत्ना शुक्ला के साथ, और हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि बच्चों के नन्हे मुन्ने बच्चे जो होते हैं ना, उनके क्या ही कहने का, उनके माइंड में क्या चलता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ छुट्टियों में जब समर वेकेशन होती है तो उनको लगता है कि बस खेल, ये वाला खेल, वो वाला खेल, उसके घर जाना, उसको बुलाना है। और ऐसे में पेरेंट्स कहने की मम्मी पापा की ड्यूटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि उनका भी मन करता है कि पानी के गड्ढे हो, हम उसमें छई छप छई छपा कि छई ऐसा कुछ करें। और उसके साथ साथ लेकिन बरसात जब होती है तो हमें उसी के दूसरी तरफ बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना पड़ता है, उनको कहीं ना कहीं बारिश के पानी से या बारिश से होने वाले नुकसान से बचाना पड़ता है। लेकिन हाँ, उनके साथ बैठ कर आप बच्चों का फेवरेट डिश जो है ना, उसको आप ज़रूर प्रेफर करिए, क्योंकि आप जो अपने मन का कुछ पकौड़े बना रहे हैं, तहरी या जो भी आप डिश बना रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चों की जो फेवरेट डिश है आपके घर में, उसको आप ज़रूर बनाने की कोशिश करिए। उनका भी इंट्रैक्शन आपके साथ बढ़ेगा, साथ में उसको आप भी इंजॉय कर पाएंगे। अगर वो आप वाली सेम डिश को नहीं पसंद करते हैं तो उनकी प्रेफरेंस को आप सामने रखिए, और कुछ अच्छी सी प्यारी सी जो बच्चों की फेवरेट डिश हो, अब मैं नाम तो नहीं लूंगी, जो उनको पसंद हो आपके घर के बच्चों को, उन बच्चों उस डिश को बनाना और उनको पैक करके अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसको भी साथ में लेकर जाना। और साथ में अगर बच्चे थोड़े से छाते के साथ शरारत करते हैं ना, कि छाता बारिश में लेके घूमते हैं या छाता लेकर के थोड़ी शरारत करते हैं, थोड़ा सा छाता लगाया फिर थोड़ा सा हटाया और उसके बाद आगे पीछे दौड़ रहे हैं, तो वो उनको करने दीजिए, क्योंकि बहुत नुकसान नहीं होना चाहिए, बारिश से बहुत ज़्यादा भीगे ना ये, लेकिन हल्का फुल्का थोड़ी तो जो कहते हैं ना कि एक उनकी जो शरारत होती है, बच्चे तो बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमसे आपसे अलग ही होते हैं, और उनको कुछ ना कुछ उनके मन का थोड़ा बहुत ज़रूर करने दीजिए, बस हाँ किसी तरह का हार्मफुल नहीं होना चाहिए।

इन बातों के साथ आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि मोबाइल कनेक्शन से बच्चों का जो नाता है ना, इस मौसम में आप कहीं ना कहीं उनको सेव कर सकते हैं। इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक कई लोगों का फेवरेट सॉन्ग है, उसको आप तक पहुंचाते हैं।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
1: श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
3: कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: और देखिए आप लोग भला एफएम रेनबो से दूर कैसे रह सकते हैं, प्रोग्राम चल रहा है फैमिली फन और 12:40 हो रहे हैं। मैंने कहा था आप लोग मेल कर सकते हैं आप अपने फैमिली में फन को, यानी कि फैमिली में किसी कुछ भी ऐसा करके कि आपकी फैमिली खुश हो जाए, आपके परिवार वालों के लबों पर मुस्कुराहट है, आप किस तरह से ऐसा कुछ आज मौसम को देखते हुए नया कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सब बातों के लिए हमें काफी सारे मेल भी आ रहे हैं। आपको मेल आई डी फिर से बता देती हूँ, fmakashwani@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। तो हमें तालिब अंसारी जी ने भी मेल किया है और राजा कटरा बाराबंकी से इनका मेल आया है और इन्होंने कहा है कि बारिश के मौसम में बहुत कुछ आज हम लोगों ने प्लान किया है और उसके करने के साथ साथ हम एफएम रेनबो को सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तालिब जी, आपने ये मेल किया। और इसी के साथ साथ कई लोगों को और मेल आया है, हम उन शिव प्रकाश जी का भी मेल आया है, उन्होंने भी बहुत लिखा है कि कार्यक्रम बहुत प्यारा लग रहा है और नमस्कार उन्होंने भेजा है। इसके अलावा कई लोगों को और मेल आया, लेकिन मेल के साथ हम अपनी बात को कंप्लीट करते हैं कि बच्चों को हम जहां तक बात कहते हैं कि छुट्टियों में बच्चे थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत कुछ पढ़ाई से के थोड़ा सा लोड कम रहता है, तो वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें, बहुत कुछ करें, लेकिन हाँ कुछ उनको अपना रूटीन भी फॉलो करना होता है। मैंने बात की थी घर में अगर वाईफाई का कनेक्शन है या आप डाटा से अगर बच्चे मोबाइल से बहुत ज्यादा टाइम उस पर स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज्यादा है, तो ये मौसम आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपके बच्चे स्क्रीन से काफी दूर रह सकते हैं। चूंकि अगर आप सब मिलकर कुछ प्लान करते हैं, फैमिली में फन को थोड़ा सा मजेदार बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो आपका दिन आपका कुछ स्पेशल सा हो जाता है और बच्चे अपने आप स्क्रीन से दूर होकर आप जो उनके लिए स्पेशल सा तैयार करते हैं उससे आगे बढ़कर उसमें जुड़ जाते हैं। तो बच्चे आपके सबसे ज्यादा किस चीज की फरमाइश करते हैं ऐसे प्यारे से मौसम में, या कुछ ऐसा फन ऐसा क्या उन तक आप ले जाना चाहते हैं, या आज आज है या आगे की छुट्टियां भी हैं उनमें आप लखनऊ जू उसमें आप उनको ले जाने का जरूर प्लान करिएगा, क्योंकि वो नई नई चीजों को देखेंगे वहां पर, नए नए तरह के एनिमल्स देखेंगे, उनकी एक्टिविटीज देखेंगे, उनके क्या खान पान रहता है वो सब देखेंगे, तो एक उनकी लाइफ में एक नई चीज जुड़ेगी और इस तरह के चीजों को बच्चों से एक आप लर्निंग प्रोसेस भी हो जाएगा और आपके फैमिली में फन और खुशी का भी एक दौर जुड़ जाएगा। तो बहुत देर से सोच रहे थे कि बच्चों के लिए कोई गाना सुना है, लेकिन पहले से ये गाना क्यों करके रखा था, तो पहले तो ये गाना आप तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद फिर कुछ और आपसे बातें लेकर आपके बीच जुड़े रहेंगे। सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो पर प्रोग्राम फैमिली फन।
1: अगर कोई मुझसे ये पूछे
2: क्या
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
2: क्यों

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: देखिए, बारिश के मौसम में बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं और इसके साथ साथ हम प्रोग्राम फैमिली फन में आपसे बात कर रहे हैं कि आपके मेल भी आ रहे हैं। मेल की पहले बात कर लेते हैं। हमें रोशनी रावत जी ने मेल कर दिया है और इनका गुड आफ्टरनून भी हम तक पहुंच गया। हम बहुत अच्छे हैं, जैसा कि पूछा, और आप सुबह से प्रोग्राम सुन रही हैं, जुड़ी, आप हमेशा प्रोग्राम सुनती रहती हैं। फिल्म रेनबो पर आने वाले जितने भी प्रोग्राम हैं, उन्नाव जिला उन्नाव से, गाँव बहमना तहसील सफीपुर से इन्होंने मेल किया है। चंडीगढ़ से इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रही है और लिखा है कि यहाँ बारिश होने वाली है, बस कुछ देर में घर जाकर पकौड़े चाय बनाकर खाएंगे, प्रोग्राम बहुत कास लग रहा है। भाई, हम लोगों की कोशिश रहती है, जितने भी आरजेस आपसे जुड़ते हैं, कि प्रोग्राम में कुछ ऐसी बात रहे कि आप सबको अच्छा लगे। अब हम अच्छा लगने की बात करते हैं। हमने बच्चों की बात अभी की कि आप उनका स्क्रीन टाइम कैसे कम कर सकते हैं, लेकिन अब हमने स्पेशली इनवाइट किया है और बुलाया है, पता है किनको, तो आप केवल हेलो कह के चुप हो जाए।
4: बिल्कुल 49 मिनट
3: जी। तो इनको आप पहचान तो गए होंगे या नहीं पहचान पाए? बस हमने इनसे केवल, आप जब बचपन में बारिश होती थी या पहली बारिश होती थी, उसको किस तरह से एंजॉय करते थे और क्या करने का बहुत ज्यादा मन करता था, ये बताने के लिए हमारे बीच में आ चुके हैं अगले कई घंटे तक रहने वाले आपके साथ शिवम। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम फैमिली फन में।
4: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताते चले कि ये जो अभी आपने पूछा कि बारिश में लोग क्या कर रहे, देखिए हम लोग के टाइम में स्क्रीन होती ही नहीं थी, और जो स्क्रीन होती थी वो सैटरडे संडे को सिर्फ कुछ टाइम के लिए हम लोगों को मिलती थी। घर वालों से बड़ा लड़ झगड़ के, मिन्नतें करने के बाद कुछ प्रोग्राम देखने को मिला करते थे। और बारिश जब होती थी तो बारिश में सिर्फ एक काम कि घर में सभी लोग सो रहे हो, हम लोग छत पे चल के घूमे, और वो भी सर पे पन्नी लगा के। और अभी के लड़के जो, मतलब अभी के बच्चे जो आंधी आती है तो वो होता है ना, घर के लोग बुजुर्ग कहते हैं कि चलो आंधी आ रही है बच्चे घर में चलो। हम लोग आम लूटने के लिए बागीचे में पहले जाते थे, कौन सबसे ज्यादा आम मतलब लूट के ले आएगा, मतलब हम लोग उस टाइप वाले थे। और अभी भी इसीलिए मैं घर में बदनाम हूँ कि जब भी बारिश होता है तो ये घर में दिखता ही नहीं।
3: वाकई में अगर बारिश में घर में कैद होके रहे तो फिर क्या, बारिश का मजा कहाँ आ पाएगा? कुछ नहीं, तो आपके घर में जो भी खुला स्पेस है उसमें आप जरूर जाइए, क्योंकि बारिश का मौसम खुले ही मौसम है। और शिवम ने तो फिलहाल बताया कि मैं खेत खलियान में निकल जाता था या फिर आम बीनने निकल जाता था, छोटी छोटी अमियां हो चाहे फिर वो बड़े पक्के आम हो, ये सब कुछ इनकी शरारत हुआ करती थी। इसके साथ भाई यही कहेंगे कि छोटे बच्चे हैं तो चलो कुछ
4: बिल्कुल
3: अवॉइड कर देते हैं, उनको एंजॉय करने देते हैं। तो शिवम, ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना फैमिली फन
4: जी,
3: तो इसमें कई सारे मेल भी आ रहे हैं।
4: बहुत सारे मेल आए और बड़े इंटरेस्टिंग मेल, अपने जो है निजी विचार जो लोग साझा करते हैं ना, तो वो बिल्कुल लगता है कि एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो रहा है।
3: देखिए, एमा नवाब जी ने तुरंत आपकी आवाज सुनी और नाम बता दिया कि ये शिवम भाई है।
4: ये तो बात है, बिल्कुल सही जवाब,
3: बिल्कुल सही जवाब है भाई। और एमन जी के साथ साथ कई और भी मेल आए, लेकिन शिवम आपसे कहेंगे कि मेरे तो जाने का वक्त आ रहा है। ठीक है,
4: बिल्कुल। हाँ। तो हम अब जो आगे का साथ रहेगा वो भी इसी पे बरकरार रखेंगे। और आपने जो अभी भी जो गाना बजाया ना, हाँ। मतलब उसकी मैं तारीफ जरूर करूंगा कि बेहतरीन गाने। और ये जो बाहर मौसम हुआ है, हाँ। अभी आप सुबह से स्टूडियो में हैं, लेकिन अभी आप जब बाहर जाएंगे तो बिल्कुल एकदम शानदार वाला मौसम आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, खास बात ये भी है कि आज लखनऊ में कई जगह आपको भंडारे भी देखने को मिल जाएंगे,
3: यानी कि जो आप बेहतरीन सी सब्जी और पूरी खा कर आए हैं, जिसकी खुशबू आपने यहाँ पर केवल बताई है, लेकिन उसके जायका तो मिल ही नहीं पाया क्योंकि आप लेकर नहीं आए।
4: क्योंकि जब हम आ रहे थे तो अभी आरती वारती हो रही थी, पूजा हो रहा था, तो अभी 1:30-2 बजे के बाद मिलने का प्रोग्राम था।
3: अच्छा, तो आपने थोड़ा सा वहाँ पर चखा है तो वो हमें अच्छा लगा सुनकर। लेकिन इसके साथ हम आपसे कहेंगे कि भाई 12:52 हो रहे हैं प्रोग्राम फैमिली फंड में, आपने जो कुछ भी आज प्लान करके रखा है आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए या कुछ अच्छा महसूस कराने के लिए अपनों को, तो उसको जरूर करिएगा, बिल्कुल भी टालिएगा मत, बिल्कुल भी आलस मत करिएगा। और 100.7 FM रेनबो अपने कार्यक्रमों के जरिए आप तक कुछ ना कुछ आपको आगे बढ़ाता रहता है कि आप कहीं ना कहीं प्रेरित हों और कुछ अच्छा करने की सोचें। तो आपको एक गाने के साथ छोड़ के जाते हैं, शिवम को तो हमने सौंपी दी है कमान, तो शिवम आपके साथ अगले प्रोग्राम में रहेंगे। इसके साथ जितने भी लोगों का मेल आया उन सबका हम दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं। और प्रोग्राम में शिवम
4: जी,
3: ये बताइए कि आप अगला प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप लोगों के मेल भी शामिल करेंगे।
4: जी हाँ, प्रोग्राम
3: बढ़िया सा टॉपिक भी देंगे।
4: बिल्कुल सही कहा। तो जो
3: जी, टॉपिक भी देंगे।
4: जी हाँ, तो आज का जो मैं टॉपिक देने वाला हूँ वो थोड़ा सरप्राइज है, तो अभी एक बढ़िया सा गाना सुनिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या है। लेकिन हाँ, ये टॉपिक जरूर रहेगा कि आपके जो सीने में कहीं दबी सी वो जो एक शिकन है वो जरूर आज बाहर निकल आएगी।
3: यानी कि कुछ अलग सा करने का अगर मन है तो वो तो हम इतनी देर से बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपके दिल में दबी सी जो चिंगारी है उसको भी आप निकाल सकते हैं, अपने मेल के जरिए प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। बाकी आगे आपको शिवम बताने वाले हैं। तो ये गाना तो मैं प्ले कर देती हूँ, चूंकि मैंने वादा किया था बच्चों के लिए ये गाना जरूर आने वाला है। फिलहाल रत्ना शुक्ला कहती है 100.7 FM रेनबो से आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखिए, मौसम को एंजॉय करते रहिए, और शिवम के साथ अगले कुछ घंटे FM रेनबो पर जुड़े।
4: बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 39 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम से पहले उन्होंने एक जिला एक उत्पाद के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। आजमगढ़ के बाद श्री योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री बड़हलगंज में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ रुपए से अधिक की 319 परियोजनाओं की सौगात देंगे।

करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 39 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम से पहले उन्होंने एक जिला एक उत्पाद के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। आजमगढ़ के बाद श्री योगी गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री बड़हलगंज में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ रुपए से अधिक की 319 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान वह एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं कल वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कल वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। श्री वैष्णव ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को तेज, कुशल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए अधिक टैबलेट आधारित परीक्षाएं शुरू की जानी हैं। वाराणसी में आज से किसान भारत के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और वैदिक विज्ञान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में देश विदेश से लगभग 1200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा उद्घाटन में सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि इस अधिवेशन का उद्देश्य समसामयिक वैज्ञानिक और सामाजिक चुनौतियों पर विमर्श करते हुए वैज्ञानिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य योजना तैयार करना है। और इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
0: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
0: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: मैं हूं मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

जी हाँ, 1:05 हो गया और आपका दोस्त शिवम आज आपके साथ है। प्रोग्राम का नाम होठों पे तेरी बात, और होठों पे तेरी बात में बात आपकी होती है और हमारे जबान से होती है। तो फिलहाल हर बार यही होता है कि हम एक टॉपिक देते हैं, उस पे अपने विचार आप हमसे साझा करते हैं। वैसे आज है सैटरडे और लखनऊ में भाई साहब कई जगह भंडारे लगे हुए हैं। भंडारे मतलब कि बिल्कुल एकदम रिलैक्स वाली जगह, कि आप जाइए, बढ़िया गाड़ी किनारे खड़ा करिए, पूड़ी सब्जी बूंदी रायता रसना और न जाने क्या क्या खाने को वहां पे मिलेगा। और सैटरडे वैसे वीकेंड है, अगर वीकेंड है तो थोड़ी सी लापरवाही लोग खाने पीने में जरूर कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि भाई हम पूरे वीकेंड मतलब इंतजार करते हैं कि भाई सैटरडे आएगा, संडे आएगा तो मुझे स्पेशल खाने को मिलेगा, मैं ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगी। ऐसे तो होता है ना कुछ, कि लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, डाइट कॉन्शियस होते हैं, तो

वो कहते हैं नहीं भाई चावल पूरे हफ्ते नहीं खाना है, सैटरडे को चावल खाना है और संडे को बढ़िया मीठी वाली चाय पीनी है, बूंदी खाना है, खस्ते छोले भटूरे खाने हैं, है ना, बहुत सारी तमाम सारी प्लानिंग हो रही होती है हम लोगों के दिमाग में। तो आज जो होठों पे तेरी बात पे हम बात करने वाले हैं कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली बात। तो अक्सर जब हम अपने जो मील होती है उससे जब चीट कर रहे होते हैं तो आप स्पेशल सैटरडे संडे को ऐसा क्या करते हैं कि खाने को लेकर डाइट में क्या अलग से एड ऑन करते हैं? अक्सर होता है ना कि भाई आज हम जैसे हर हफ्ते जो है हम रूटीन फॉलो करते हैं कि सुबह उठते हैं ओट्स वगैरह खाते हैं या स्प्राउट वगैरह खाते हैं या पराठे सब्जी खाते हैं और खा के हम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, शाम को नॉर्मल वही। अक्सर ऐसा होता है भाई सैटरडे को कुछ स्पेशल बाहर खाने को जाते हैं या घर पे कुछ स्पेशल बना लेते हैं। तो इस पे अगर आप सैटरडे या संडे को कुछ स्पेशल करते हैं तो वो आपकी लाइफ में क्या ऐसा स्पेशल करते हैं जो हमें भी जानना चाहिए और लोगों को भी जानना चाहिए? और ये बातें आप कहां बताएंगे? वहीं बताएंगे FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। आपकी ईमेल का बेसब्री से इंतजार। कौन कर रहा है? जी हाँ हम कर रहे हैं, मेरा नाम शिवम है और ये 90s स्पेशल का तड़कता भड़कता एकदम गाना सुनिए और ये जो बाहर मौसम है ना धूप छांव वाला उसको भी थोड़ा एंजॉय करिए क्योंकि गर्मी के बाद ये वाला मौसम जो है बड़ा स्पेशल होता है।

ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान के नौजवान साइंस और टेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे शोबों में नुमाया कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज दुनिया के सरकर्दा स्टार्टअप हब में शामिल है और उसकी कामयाबी में छोटे शहरों और गांवों के नौजवानों ने कलीदी किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने खेलों में नौजवानों की शानदार कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने बैनुल अक़वामी

0: मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन किया है। उन्होंने नोट किया कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसे इकदामात ने इख्तराई और कारोबारी शख्सियत को फरोग दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों से NDA हुकूमत नौजवानों की क्यादत में तरक्की की हौसला अफजाई कर रही है, जिससे मुल्क के नौजवानों के एतमाद में इजाफा हुआ है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और यात्रा के रास्ते के साथ मल्टी लेयर सिक्योरिटी ग्रिड के क्याम की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अकीदतमंदों के महफूज और हमवार सफर को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह पुरज़्ब है। मीटिंग के दौरान मरकजी वजीर दाखिला ने ड्रोन, CCTV कैमरे और जदीद निगरानी के निजाम जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा से वाबस्ता तमाम मकामी लोगों और जानवरों को रजिस्टर्ड किया जाए और QR कोड के साथ शिनाख्ती कार्ड जारी किया जाए। वाज़ह रहे कि श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 39 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम से कबल उन्होंने एक जिला एक प्रोजेक्ट के तहत लगाई गई नुमाइश का भी जायजा लिया। दरियसना वजीर आला आज और कल गोरखपुर के 2 रोजा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जिले को तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात देंगे। साथ ही बड़हलगंज और वीरभद्र सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में मुनक्किद प्रोग्रामों में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरकजी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर बनारस में मुनक्किद अवामी बहबूदी कैंप और बहबूदी स्कीमों के फैजियाब अफराद को मंजूरी लेटर तकसीम किए। इस दौरान प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि PM स्वनिधि स्कीम में बनारस के 60,000 स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक कर्ज की पहली किस्त, 26,800 वेंडर्स को दूसरी किस्त और 5,000 स्ट्रीट वेंडर्स को तीसरी किस्त अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि तब्दील होते हिन्दुस्तान इसकी में गरीबों, खवातीन, नौजवानों और किसानों को मानवन है। उन्होंने कहा,
1: मोदी जी ने ग्रामीण अभिलेख के माध्यम से घरोनी की योजना प्रारंभ की और घरोनी वितरण का कार्यक्रम हर गरीब के लिए। देश के अंदर 3 करोड़ परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहां का मालिकाना अधिकार मिला और इस सर्वी अधिकार महिलाओं को उपलब्ध। करोड़ महिला स्वयं सेवी समूह के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का कार्य अद्भुत है, चमत्कारिक है, पूरी दुनिया अभिनंदन कर रही है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 सालों में अहम तब्दीलियां देखी हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर कार फरमा है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज गुज़िश्ता 12 सालों में अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों को उजागर करने वाले खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे को मजबूत बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर बात करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही।
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाले NEET UG के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान का दौरानिया 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। नजरे सानी शुदा औकात 2 बजे से शाम 5:15 तक होंगे। नजरे सानी शुदा इम्तिहान की मुद्दत में लाजमी इम्तिहान की रस्मी कार्रवाइयों के लिए दरकार वक्त शामिल है। और जौनपुर, उन्नाव, अयोध्या, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ समेत खरबोजवार के इजला में तेज हवाओं और कल से रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, जिससे अवाम को शदीद गर्मी से राहत मिली है और जायद की फसलों को फायदा हासिल हो रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने का कयास जाहिर किया है। दरियसना, उत्तराखंड में पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से पीलीभीत जिले में शारदा नदी की आबी सतह में काफी इजाफा हो रहा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तानें।

0: चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ, वैसे धड़कन तो है ही, और इसके साथ हम आपको एक खास बात ये बताते चले कि जब धड़कन में ढेर सारे गाने और ढेर सारी बातें घुल जाए तो वाह, पूछिए मत। फिलहाल मोहम्मद आसिफ जी हमें ईमेल कर रहे हैं, हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं, और ये टॉपिक पे लिख के बोले हैं कि भाई हम जो है महीने में एक बार हैदराबादी बिरयानी जरूर खाते हैं दोस्तों के साथ, और केले के पत्ते पर इडली सांभर डोसा का मजा जरूर लेते हैं। हमें भी इनवाइट किया है, भाई आप भी जरूर आइए, जब आइएगा तो हमें जरूर बताइएगा। और कुछ नाम लेने के लिए बोले हैं, सादिया अंसारी, साहिबा अंसारी, समा अंसारी, गुलफसा आपी, एमन आपी, इन दोनों लोगों का सबका नाम लेने के लिए बोला है। राम राज जी ने हमें लिखा है, श्री गणेश आय नमः, होठों पे तेरी बात, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से राम राज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, नीरज, मधु, बजरंगी काका सबसे पहले। और हमारी तरफ से इन्होंने लिखा है कि बहुत बहुत शुक्रिया और बच्चों को प्यार भरा नमस्कार, शुभ आशीर्वाद पहुंचे। और खाने के विषय में बोला है तो आज हमारे यहाँ स्पेशल खाना भंडारे में है, पूड़ी सब्जी बूंदी वगैरह, हमारी समझ में जो आया है वही लिख रहा हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद मतलब भाई साहब, आपको बता दें कि राम राज जी बिल्कुल एकदम भंडारे से लाइव अपने मैसेज कर रहे हैं हमको। तो देखिए कई ऐसी चीजें होती है ना कि खाने पीने को लेके, अगर जैसे सैटरडे को होता है तो कुछ स्पेशल होना आता है, बच्चे भी कहते हैं कि नहीं आज हमें घर में ये बनना है, बड़े भी थोड़ा सा वो लालायित रहते हैं कि भाई मुझे खाने में क्या चाहिए। अच्छा कुछ ना पारंपरिक फूड आइटम होते हैं जैसे अपनी तरफ के होते हैं, जो अपने गांव के होते हैं, जो लोकल फूड होते हैं, खाने को बनते हैं, जैसे स्पेशल कुछ बनाए जाते हैं अक्सर, जैसे छठ में जैसे बिहार में या हमारे पूर्वांचल में ठेकुआ बनता है, हमारे यहाँ पूर्वांचल में स्पेशल शादी ब्याह में बनती है बलिया वाली पूड़ी। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो जो नॉर्मल पूड़ी आप लोग देखे हैं उस पूड़ी से काफी बड़ी पूड़ी होती है, मतलब जो बड़ी वाली प्लेट होती है ना उस पूड़ी, उस प्लेट के साइज से भी बड़ी पूड़ी होती है। तो कुछ ऐसे होते हैं खाने पीने की स्पेशल चीजें होती हैं, कुछ स्पेशल मिठाइयां होती हैं या स्पेशल पकवान होते हैं जो तमाम जिलों में अपने अपने जो उनकी फेमस होती है वो बनती है। तो उसके लिए भी हम बहुत सी चीज़ें बड़ा उसके लिए तमाम तरह की मान्यताएं होती हैं अपनी अपनी। जैसे हमारे यहाँ बलिया में क्या होता है कि अगर शादी ब्याह में बलिया वाली पूड़ी नहीं बनी तो जो गांव के जो लोग बूढ़े पुरनिया लोग हैं, लोग बड़ा नाराज हो जाते हैं कि भाई देखिए फलाना के घर गए थे और बड़ी वाली पूड़ी खाने को नहीं मिली। सब चीज़ रहेगा लेकिन वो सिर्फ बलिया वाली पूड़ी से जो लोग थोड़ा सा रह जाती है कसर। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आप लोगों के पास भी होगी कहने को, बताने को कि भाई हमारे यहाँ कभी ऐसा कुछ हुआ हो, तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर कर रहे हैं इंतजार इस सुहाने से मौसम में, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये बेहतरीन सा गाना आपके रेडियो सेट पर।

दिया और रफ्ता रफ्ता ईमेल भी ढेर सारे आने लगे हैं और कई सारे ऐसे ईमेल हमारे लिए भी ऐसे होते हैं ना जिन्हें देख के लोग बड़े प्रभावित होते हैं, जैसे कि कभी कभी लोग सुन के भी प्रभावित होते हैं। अच्छा, ऐसे ही कुछ मेरे पास ईमेल आया है संजय निगम करके। ये एफएम के सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार, और ये लिखते हैं कि रविवार को मेरा ब्रेकफास्ट रोज से अलग होता है। 65 वर्ष का होने के कारण रोज तो डाइटिशियन के बताए हुए मील को फॉलो करता हूं, परंतु रविवार को ब्रेकफास्ट जो उनका होता है वो लखनऊ की बेहतरीन चाय के साथ होता है, जहां पर ये चाय और बंद मक्खन के साथ सब परिवार लुत्फ उठाते हैं। संजय निगम नाम है इनका और विवेक खंड गोमती नगर लखनऊ से इन्होंने ईमेल किया है। अच्छा देखिए, कई बार लोग जो है सच में प्रभावित हो जाते हैं। अब ये 65 वर्ष के हैं और ये पूरे हफ्ते जो है अपने जो मील है अपने हेल्थ को लेके बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और संडे को विथ फैमिली इंजॉय करते हैं। क्या आप बाहर निकलते हैं लखनऊ में थोड़ा सा बाहर फैमिली के साथ, वो भी जाते हैं घूम के आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम वर्क प्रेशर के चक्कर में या और भी चीजों के चक्कर में हम नहीं निकल पाते। आप चाहे किसी भी शहर में हो, चाहे किसी भी राज्य में हो, कहीं भी हो, तो कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने लिए वक्त निकालिए। ये किसी उम्र के एक लिमिट में नहीं बांधा गया है आपको कि नहीं आप इतने उम्र हो जाएंगे तब करेंगे। बहुत से लोग ये होता है ना कि अरे हमारी ये तो अभी एज ही कहां है, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज की कुछ भी करने की एज नहीं होती। आप अपने लिए टाइम निकालने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं एज होती। अपने लिए समय, अपने आप को खुश रखने के लिए समय निकालने के लिए तो बिल्कुल भी कोई एज लिमिट होती नहीं। ये 65 वर्ष के हैं और बाकायदा ये अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, लेकिन संडे को ये फिर भी अपने फैमिली के साथ

आते हैं, आधा घंटा एक घंटा जो भी ये वक्त चाय पीने में अपना वहां पे लगाते होंगे, लोगों के साथ घूमते होंगे, तमाम तरीके के चेहरे देखते होंगे और एक्सपीरियंस होता होगा, तो ये इनकी पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इसको देख के बहुत सारे लोग वो है जो संडे के दिन भी लोग घर ही में पड़े रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, थोड़ा सा घर में से निकलिए, बाहर निकलिए। अक्सर लोग जो है घर में कैद होने के अलावा दिमाग में भी कैद हो जाते हैं, भाई कैसे निकल लें, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, आपकी घर से निकलने की देरी है, बाकी सब वो सब होता चला जाता है, रास्ता बनता चला जाता है, खुलता चला जाता है और बेहतरीन सा गाना आपके रेडियो सेट पर चलता चला जाता है। 100.7 FM रेनबो पर सुन रहे हैं होटो पे तेरी बात शिवम के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

1:36 और रंग देने का मन तो ये है कि आज जो बारिश हुई है हल्की फुल्की, जो भी जहां कहीं भी हुई है, थोड़ा बहुत तो राहत जरूर मिली है। फिलहाल लखनऊ में जो इतने टाइम से बिल्कुल एकदम चिलचिलाती धूप में झुलस रहे थे लोग, तो अभी जाकर थोड़ा सा मतलब राहत मिली हुई है और आगे भी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत राहत और मिल जाए। राहत से बात यही दाया कि जो ये जो राहत मिल रही है ना, इसका शुक्र मनाइए, वरना जो धूप जो निकल के और जो कड़ाके की जो उमस होती है ना, वो तो क्या ही बताएं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति का महत्व समझिए, पेड़ पौधे थोड़ा सा लगाइए, और ये जो आदत हम सबने बना रखी है भाई तुरंत एसी के चक्कर में जो है कि भाई कुछ भी हो एसी खरीद लेंगे, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब यहां सोचने की जरूरत है कि या पेड़ या एसी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म। 1:37 होटो पे तेरी बात शिवम आज आपके है साथ। ढेर सारी बातें कर चुके हैं और बहुत सारी है पिटारे में बात। फिलहाल रामेश्वर जी का ईमेल आया है, लिखते हैं होठों पे तेरी बात कार्यक्रम की तारीफ की है, नमस्कार बोला है, बहुत बहुत नमस्कार। और इन्होंने लिखा है कि शिवम भाई जी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सबसे पहले मेरा जो इनका ब्रेकफास्ट होता है वो चाय और पराठे से होता है। मेरी उम्र 60 साल की है और मैं ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से हूँ। रामेश्वर कटियारा, उमाकांत कटियारा, कमलेश कटियारा, पुत्रवधु निशा कटियारा, प्रज्ञा कटियारा, प्रतिमा कटियारा, वेद बाबू कटियारा, समस्त कठेरिया परिवार बहुत बहुत धन्यवाद शिवम भाई जी। तो आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं भाई, बिल्कुल एकदम देसी टाइप वाला, एकदम बिल्कुल ये भी नहीं है तो बाहर भी नहीं जाते, अब तो घर में ही बिल्कुल एकदम देसी वाला घी वाले लगे पराठे और चाय खा लेते हैं। तो अच्छा ये बताइए, सैटरडे संडे को अगर आपके घर में खाना बढ़िया मिल जाए, मतलब आपके फेवरेट वाला, तो मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसे कुछ करारे करारे नोट निकाल के ऐसे बहू को या जो खाना बना रहा उसको ऐसे देते हैं कि नहीं, ये जरूरी तो इनाम देने वाले भी, हाँ तुमने खाना अच्छा बनाया भाई साहब, बहुत शानदार, ये लो आज चलो तुमको घुमा के लाते हैं बाहर कुछ खा के आते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम आमतौर पे महिलाओं को जो है थोड़ा सा कम आंक लेते हैं, भाई संडे उनका भी तो होता है, सैटरडे उनका भी तो होता है, हर रोज तो खाना वही बनाती हैं, हर रोज तो सारी चीजें वही करती हैं। तो कभी आप भी ऐसा कुछ करिए कि मतलब सभी लोगों की बात कर रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कभी सैटरडे संडे उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स हो कि मतलब वो सो के उठे हो उनके लिए चाय ब्रेकफास्ट बन मक्खन चाय पराठा बिल्कुल एकदम रेडी टू ईट हो, है ना, तो मतलब लगे कि हाँ कुछ मतलब घर में एकदम टक्कर का कुछ हो रहा है, भाई आज तुमने छोले भटूरे बनाए तो आज हमने तहरी बना दी बढ़िया वाली, है ना। 1:40 को होने को है और ये बेहतरीन सा गाना सुनिए।

0: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
0: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
0: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
3: जी हाँ, 1:48 हो गए हैं और ये भागते हुए सेकंड। तो होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल प्रोग्राम की तारीफ की है और गीतों की भी इन्होंने तारीफ की है। अमन नवाब, इनका भी ईमेल आ गया है। फिलहाल ये हमसे बड़ी नाराज है, कह रही हैं कि शिकायती मेल है, लेकिन चलिए ठीक है, आपको माफ किया तो भाई अच्छी बात है। देखिए, मेरी माफी मांगने से पहले ही लोग मुझे माफ कर दें तो ये शायद मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आगे लिखती है कि दादाजी को डॉक्टर के रिकमेंडेशन डाइट पर एकदम, मतलब ये अपने दादाजी को जो डॉक्टर इन्होंने बोला है कि भाई आपको ये खाना है ये खाना है, तो उस पर ये बिल्कुल बिल्कुल कड़ाई से अमल करती हैं। उनके खाने पीने का हिसाब किताब सब यही रखती हैं। और हाँ, ये भी आगे लिख रही हैं कि वैसे तो आजकल दादाजी की कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी चल रही है, तो मैं रोज कुछ ना कुछ स्पेशल उनके लिए जरूर बनाती हूँ। भाई देखिए, जब स्पेशल लोग होते हैं घर में तो भाई कुछ ना कुछ तो बनना होता ही है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम घर में बड़े बुजुर्गों के लिए उनके ध्यान में रख के कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बनाते हैं भाई, उनके फेवरेट हो, मन पसंद हो बिल्कुल एकदम, कि लगे कि हाँ डिब्बा खुले और एकदम आंखें एकदम ऐसे चौंधिया जाएगा, अरे वाह आज तो खाने में मेरा वाला फेवरेट वाला मिला है मील। तो कुछ ऐसी कुछ बातें अगर आपके पास भी हैं दबी कहीं, तो लिख के भेजिए भाई साहब, हम भी बैठे हैं बेकरार आपके जानने के लिए कि भाई आपकी दिनचर्या में कौन कौन सा खाना, कौन कौन सी स्पेशल डिशेस जो है आप शामिल करते हैं सैटरडे और संडे को स्पेशल। 1:50 हो गए और महेंद्र दीपन का ईमेल वापस आके पढ़ूंगा। फिलहाल टोपी सीधी कर लीजिए अपनी।

जी हाँ, अब 1:55 हो गया है, प्रोग्राम को वाइंड अप करूं, लेकिन उससे पहले जो आपके ईमेल हम तक पहुंचे हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा जरूर। और अब मैं जो मेल पढ़ने वाला हूँ वो अरुण कुमार जी का है। लिखते हैं कि वैसे तो मैं वर्कआउट सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह सुबह और शाम दोनों टाइम करता हूँ, लेकिन रविवार के दिन केवल केवल केवल सुबह का ही वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि संडे के संडे अपने मनपसंद डिश खाता हूँ और कल इनके यहाँ संडे को बाटी और चोखा खाने की पार्टी है। और फिलहाल हमको भी इनविटेशन मिला हुआ है कि भाई ऐसा है कि आप भी चले आइएगा खाने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ईमेल करने के लिए कि भाई आपने हमें इनवाइट किया। और अगला मेल जो मैं पढ़ रहा हूँ सतीश अनेजा जी का है। रविवार का दिन बहुत ही अहम होता है क्योंकि परिवार के साथ बिताया जाता है। रेनबो लखनऊ मनोरंजन करता हुआ साथ है परिवार के साथ। मैं रविवार के पास की पहाड़ियों में चले जाते हैं। वैसे ये जब चंडीगढ़ में रहते हैं तो आसपास जो होंगे जो घूमने के लिए बढ़िया वहां ये चले जाते हैं और थोड़ी मस्ती भी करते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। रेनबो लखनऊ के लिए बेशुमार मोहब्बतें, चंडीगढ़ सिटी, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने यह बेहतरीन सा ईमेल आप तक पहुंचाया है, यानी हम तक पहुंचाया है। जावेद अख्तर भाई का भी ईमेल आया है, कार्यक्रम की बहुत ही तारीफ की है। गुलफ्ता सिद्दीकी ने लिखा है भाई ये हरदोई संडीला के रहने वाली हैं और कह रही हैं कि भाई क्या हमारे लिए संडे और क्या हमारे लिए सैटरडे, हर रोज हमें उठ के खाना बनाना पड़ता है, लेकिन आपका प्रोग्राम के साथ साथ काम जो है बहुत ही हल्का हो जाता है। देखिए ये होती है बिल्कुल दोस्ती। अच्छा, बसंत कुमार सिन्हा ने हमें ईमेल किया है और ये दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हैं और साथ में सिन्हा, बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी हैं, अजय कुमार हैं और बहुत सारे नाम इन्होंने हम तक पहुंचाए हैं। तो सहनवाज अंसारी, सतीश, उत्तम कुमार और बोधराज खोरवाल, बहुत सारे ईमेल आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईमेल करने के लिए। फिलहाल हम आपसे लेते हैं बाय बाय, टाटा करते हैं, अगले फ्रेम में आते हैं। बढ़िया एकदम सुनिए गाना और अगला प्रोग्राम जो आप जानते ही हैं, FM हॉटमेल।

0: रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: There is a core belief there that
3: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
6: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई अर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर, लर्नर्स, कोरेजस, डिसीजन मेकर्स एंड एथिकल लीडर्स।
5: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप

0: खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
1: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
3: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप

प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अब भाई अपनी मोहब्बत में आप जो खो गए हैं वापस आ जाइए, 2:35 हो गया है। जी हाँ, मोहब्बत क्या चीज होती है ये हम और आप के समझ के शायद ये बाहर है। हम इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मोहब्बत की परिभाषा क्या है, मोहब्बत के दायरे कहाँ तक है, या उसकी सीमित जो उसकी लिमिट है वो शुरुआत कहाँ से होती है। ऐसा कुछ भी कहीं भी किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराण में, कहीं भी किसी भी किताब में नहीं लिखा है। मोहब्बत जो चीज है वो बस एक एहसास है। ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेता हूँ ना, जैसे आप लोग अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। आपसे ही देख देख के, आपको ही पढ़ पढ़ के मैंने भी बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। अब आपको एक बार फिर से बताते चले कि 2:36 प्रोग्राम चल रहा है हॉटमेल। मेरा नाम शिवम है और मैंने बहुत से लोगों का ईमेल पढ़ लिया है, बहुत से लोगों के गाने बजा भी चुके हैं। और अब जो मैं मेल पढ़ रहा हूं तो प्लीज उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं कि प्लीज प्लीज एक ही ईमेल भेजिए, तो प्लीज एक ही ईमेल सुनिए, मेरा भी एक थोड़े दिन के लिए मतलब सुन लीजिए। आप लोगों को लगता है कि मतलब मैं 300 मैसेज भेज दूंगा तो वो क्या 300 बार गाने बजाए जाएंगे आपके, एक ही तो बार बजेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज, समझदार हैं आप।

तो अब जो मैं मेल पढ़ने वाला हूँ उनका नाम है समशुल कमर राही जी का है और बहुत सारे मेल इन्होंने भेजा है। आपको बता दें कि आर्य जी आदाब, एनी सॉन्ग गंज डूवारा से है समशुल कमर राही। शाहीन फातिमा अदनाम खान अनु खान साहब ने ये हमें ईमेल भेजा है, किसी भी मेल में शामिल करने के लिए बोला है। दीपेश जी जो हमें ईमेल कर रहे हैं वो ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से है। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांश और गाने की फरमाइश के साथ साथ इन्होंने बड़ी ही शानदार सी ईमेल भेजी है। समशुल जी का ईमेल हमने पढ़ लिया है, आपको एक बार फिर से बता दें कि आपका ईमेल पढ़ दिया गया है। मायोसीन हाशमी जी ने हमें ईमेल किया है, प्यार भरा आदाब, आप अपनी पसंद के किसी भी गीत में शामिल कर लें, मेरा एड्रेस जरूर पढ़ दें। नई बस्ती गुंजुवारा से इन्होंने ईमेल किया है मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसिफ हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी जी ने ये ईमेल हम तक पहुंचाया है। और सैफुद्दीन अंसारी बक्सर बिहार से, शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीता रमेश साहू डुमराव बिहार से, डॉक्टर डब्लू अंसारी और डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी गोला बाजार बक्सर से इन्होंने ईमेल किया है। श्रद्धा नंद आर्या, अभय नंद आर्या और परमानंद आर्या सारिमपुर बक्सर से, राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी जी ने हमें ईमेल किया है और कहा है कि किसी भी गीत में हमें जरूर जरूर शामिल कर लें। डीके साहब का ईमेल आया है कि तुम्हारी यादों के झोंके मुझे सोने नहीं देते, भिगा देते हैं पलकों को मगर रोने नहीं देते। मैं अक्सर भूल जाता हूँ जरूरी काम सब अपना, वो बीते पल मुझे तुमसे जुदा होने नहीं देते। वाह क्या बात है। जैसे आकाशवाणी रेडियो नव दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु ने हमने ये ईमेल किया है और बड़ी ही प्यारी सी फरमाइश हम तक पहुंचाई है। अहमद फूल वाले का क्या मैसेज आया ये भी पढ़ लेते हैं। डियर होस्ट जी आदाब नमस्कार, आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है, हमें निराशा और नजर अंदाज कतई न करिएगा, मेरा मेल जरूर शामिल करिएगा। और गाने की फरमाइश के साथ छोटी बलिया करजत मुंबई से इन्होंने ईमेल किया है। और अहमद भाई फूल वाले, दुखीना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद, काप सहेड़ा बॉर्डर, नई दिल्ली से बिटिया अमन, अमाना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली की तरफ से ये गाना बेहतरीन सा इन्होंने जो भेजा है। शिव प्रकाश जी ने हमें एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जो अभी भी ओपन नहीं हो रहा है, ये ब्लैक हो गया है और इन्होंने लिखा है, हालांकि मैं इसे कन्वर्ट करके पढ़ लेता हूं। श्री प्रकाश त्योजा खाग फतेहपुर, गुड आफ्टरनून सर, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और किसी भी गीत में श्री प्रकाश जी के ईमेल को शामिल करने के लिए कहा गया है। संजय ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से, नमस्कार जी, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, शानदार गीत, लाजवाब प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यस्मीन मानो ने लिखा है, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बिस्वा सीतापुर से हैं, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए और डेडिकेशन अच्छा। सनीला, शबनम, काजल अवस्थी, इन तीनों लोगों को ये गाना सुनवाने के लिए बोला है। तौहीन रियान और लिखा है कि कागज की किस्ती थी, यादों का किनारा था, जो गुजर गया वो कल भी प्यारा था, जो आज है वो भी हमारा था। गुड आफ्टरनून शिवम सर, कैसे हैं आप, मलिहाबाद से हूं और इन्होंने आम भेजा है, मेरा प्रोग्राम बहुत, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और प्लीज प्लीज प्लीज किसी गाने में मुझे शामिल जरूर कर लीजिएगा। अगला मेल जो मैं पढ़ने वाला हूं उनका भी नाम बताते चलूं आपको, इनका नाम है रविंद्र मोहनदास, किसी भी गीत में शामिल कर दें, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और बहुत सारे नाम इन्होंने हम तक पहुंचाए हैं। तो चलिए अब वक्त है एक बेहतरीन सा गाना आप तक पहुंचाने का।

हाँ जी, तो कहाँ कहाँ बारिश हो रही है ये तो आप लोगों ने बताया नहीं कि भाई किनके यहाँ बारिश हो रही है और कितनी बारिश हो रही है। ये अगर पता चल जाए तो हम भी थोड़ा सा तर बतर हो जाए। और एक शिकायत की है जय जी ने हमें कि भाई शिवम जी, आपने तो हमारा मेल शामिल किया ही नहीं, ना ही नाम लिया। तो जय जी, आपका हमने दो बार नाम लिया है और अगर आप फोन रख के या अगर रेडियो छोड़ के अगर कहीं दूर चले गए होंगे तो आपको सुनाई नहीं दिया होगा। फिलहाल मैंने आपका ईमेल पढ़ा था तो इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। और शैलेश कुमार, नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से इन्होंने ईमेल किया है। लिखती हैं, शिवम भैया को मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज मेरी दीदी का की एनिवर्सरी है और मुझे अपनी मुझे गाना सुनाना है दीदी और जीजा जी के लिए, सुनाना चाहती हूँ। फिल्म की फरमाइश, गाने की फरमाइश दी है और दीदी नीलम, जीजा अमित शर्मा, सारा पीहू, रोशनी बबीता संडीला से, गुलबसा दीदी, सबको ढेर सारी मुबारकबाद। भाई साहब, ऐसे ही सुखी सुखी एनिवर्सरी मिल रही है, मतलब बताइए, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें भी केक खाने को मिल जाता। फिलहाल रेडियो लखनऊ, नमस्ते जी, सेव वाटर एनी सॉन्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज बेगम इमरान नाज साहब ने हमें ईमेल किया है। नवाजिश शेख और दानिश शेख साहब हैं, आमन अफरीदी हैं, राधा नामदेव जी ने हमें ईमेल किया है, बहुत ही बेहतरीन। सोमदत्त ने हमें नाभा जिला पटियाला से ईमेल किया है। सोमदत्त कैरव ज्योति रानी कौर मनु और लिखती हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला और बहुत सारे ढेर सारे ईमेल हैं, उनको भी पढ़ते हैं। मोहम्मद सादिक खत्री साहब ने लिखा है, आपको दिल से आदाब, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, शकीर अलकमान खत्री साहब हैं, अल्तमश हैं, रमेश गुण, मोहम्मद शादाब खत्री साहब ने ईमेल हम तक पहुंचाया है। और संदीप मक्कर जी हैं, फिल्म के नाम के साथ, अच्छा देखिए, जो आपने अभी भी जो गाना लिख के भेजा, ये गाना जस्ट अभी बजा हुआ है, तो आपका जो नाम लिखा है वो भी बोल दे रहे हैं। ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर और भरत कमल सैनी और जालंधर पंजाब से ये हमें ईमेल कर रहे हैं। संतोष जी हैं और ये बघेरा दुर्ग से हैं, संतोष नामदेव, सामर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव ये ईमेल किए हैं। अंकित खगरे जी हैं, हमें थैंक यू बोल रही हैं, हरियाणा से, मोना कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम साहिल और ढेर सारे नाम इन्होंने हम तक पहुंचाए। रोजी डिकेस्ट्रो हमेशा की तरह जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विली डिकेस्ट्रो के साथ ये गाना और ये ईमेल हम तक पहुंचाए। राधे कुमार विद्यार्थी जी हैं, हमें ईमेल किए हैं, बड़ी ही प्यारी सी, लिखते हैं कि आशा भोसले जी का गाना अच्छा ठीक है और ओम कुमार विद्यार्थी, राजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी और कुमकुम साक्षी, अच्छे लाल राय, बुलाकी वाले, फलाना झां, वाह क्या बात है। मनोज बंसल हरियाणा से सिर्फ नमस्कार इन्होंने लिख के भेजा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सरीफुद्दीन अंसारी, क्या बात है साहब, मैंने क्या बात है, बहुत ही शानदार लाइन लिखा है और गोरे रंग पे इतना गुरूर, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। आफ्ताब अंसारी साहब लिखते हैं, आज शिवम भाई को मेरा प्यार भरा नमस्कार, शेरवानी स्कूल, आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, आकाशवाणी रेनबो, हमारे दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, हमारे भी बहुत करीब है। तेज बहादुर यादव जी ने लिखे हैं कि भाई शिवम जी, मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, अगर हो सके तो मुझे गीत सुनवा दीजिएगा। गांव मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से ये अभी हमें सुन रहे हैं, तो अब जल्दी से एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद लौट के आते हैं और भी कुछ ईमेल पढ़ लेते हैं।

जी हाँ, ये जन्मों जन्मों का बंधन तो है ही और प्यार का बंधन तो है ही, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और मुनेश कुमार राज ग्राम भानपुर हरोवा से ये हमें ईमेल करते हैं और ये लिख रहे हैं रेनबो हॉटमेल आरजी को, शुभ दोपहर। खाली ईमेल ही पढ़ा जाएगा कि मेरा भेजा हुआ गाना कल बजाया नहीं गया था। अरे भैया, तो गाना तो लिख दिए होते, इतना ढेर सारा ईमेल किए, गाना लिखे नहीं किए उसमें। अब बताइए इसमें हमारा गलती कहाँ है भैया। और ये नाम लिख बोले हैं कि भैया ले लीजिएगा, इनके घर में भी कोई शिवम है, शिवानी है, राधा रानी है, अनुराधा के साथ लक्ष्मी जी भी हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रही हैं। और अब ये जो मेल मैं पढ़ रहा हूँ, ये बहुत सारे ईमेल, सीताराम खगड़े, अहमद फूल वाले, सहारन नूर अंसारी, संदीप मक्कर, शहनाज अंसारी, सीताराम खगड़े और शीलू मौर्य जी ने भी हमें ईमेल किया है। शीलू मौर्य फैजुल्ला गंज लखनऊ से, सर पहले FM पर, घर अखबार में, रेडियो पे सुनती थी। अच्छा, घर पर ये सुनती थी, रेडियो सुनती थी, अब मैं अपने ससुराल में फ़ोन पे सुनती हूँ। और सर आज मौसम बहुत अच्छा है, मुझे आज गाना सुनवा दीजिए, ये मेरे हस्बैंड सोबित मौर्य जी की डेडिकेटेड है, FM के सभी लिस्नर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है, देखिए कितने ढेर सारे ईमेल हैं। रविंद्र जी, आलोक जी, रविंद्र अहमद, रवि कुमार जी का ईमेल आया है और जितेंद्र नामदेव, तुलसी जी का, लाल गिरी जी का भी मेल मैंने पढ़ दिया था, आपको बता दे। और अब चलते चलते एक बेहतरीन सा गाना तो जरूर हम आपको सुनवा के जाएंगे। जावेद अख्तर साहब हैं, लवकुश यादव भाई, मैंने तो एक ही मेल किया था, मुझे भी शामिल कर लेते। लवकुश यादव जी, आपका ईमेल शामिल कर लिया गया, बिल्कुल भी नाराज ना होइएगा। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह कला कालका से, शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, और ये इन्होंने बड़ा ही शानदार सा ईमेल भेजा है। मोहम्मद शादा खान साहब ने विलेज बलिया संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई से, इन्होंने गुड आफ्टरनून बोला है, किसी भी गीत में शामिल होने के लिए ईमेल किया है। तो जितने भी लोगों ने ईमेल किया बहुत बहुत शुक्रिया, और जिनका ईमेल नहीं पढ़ा गया भैया उनसे हम क्षमा चाहेंगे, अगला जब कभी मौका मिलेगा तो आपका ईमेल और आपके गाने जरूर आप तक पहुंचाए जाएंगे। 2:56 हो गए हैं प्रोग्राम।

102.2 की फ्रीक्वेंसी पर आप हैं एफएम रेनबो कानपुर के साथ एंड नाउ इट्स टाइम फॉर प्रोग्राम म्यूजिक आर। नमस्कार अभिनंदन कानपुर। दिन की थकान तो बॉडी बोले कर ले थोड़ा आराम, पर चाय की खुशबू बिखरे और रेडियो पर मधुर धुन तो सारी थकान और स्ट्रेस छूम अंतर हो जाए। आज हम लाइफ में पहले से ज्यादा बिजी हैं और पहले से ज्यादा उलझे हुए भी। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल, काम मोबाइल पर, दोस्ती मोबाइल पर और अल्टीमेटली सारा स्ट्रेस भी मोबाइल पर और दिमाग पर आ जाता है। वैसे दोस्तों, इस डिजिटल दौड़ में कहीं ना कहीं हमारी शांति, हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारी मुस्कान पीछे छूटती जा रही है। तो आज के म्यूजिक आर में बात करेंगे डिजिटल युग में योग, स्क्रीन से सुकून तक। एंड ऑफ कोर्स आज के इस खूबसूरत सफर में वृंदा रहेगी आपके साथ।

दोस्तों, जीने का मतलब तब साकार होता है जब हम हेल्दी रहें, है ना। और इंटरनेशनल योगा डे देखा जाए तो बस कुछ ही दिन दूर है और हर जगह इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पब्लिक प्लेसेस से लेकर प्राइवेट प्लेसेस तक, स्कूलों से लेकर कॉलेजेस तक योग दिवस फिटनेस को प्रमोट कर रहा है। और सिर्फ फिजिकल ही नहीं, मेंटल फिटनेस भी इससे दुरुस्त रहती है। इसलिए आज हम लेकर आए हैं स्पेशल म्यूजिक आर डिजिटल युग में योग, स्क्रीन से सुकून तक। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि कैसे योग सिर्फ शरीर को फिट रखने का नहीं बल्कि दिमाग को शांत और जीवन को संतुलित रखने का भी सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। क्या कभी आपने मोबाइल से कुछ घंटों की दूरी बनाकर अपने सुकून के लिए कभी कुछ थोड़ा सा ही समय निकाला है? और अगर हाँ, तो क्या आप जल्दी से हमें ईमेल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल करेंगे। आपके ईमेल्स का हमें रहेगा इंतज़ार। हमारी ईमेल आईडी आप सुनते चलिए और उसके बाद एंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल ट्रैक, आप सभी के रेडियो सेट तक पहुंचने वाला है। हमारी ईमेल आईडी है AIRKANSOMEDIA। तो जल्दी से हमें ईमेल कीजिए और अभी फ़िलहाल ये खूबसूरत सा ट्रैक एंजॉय कीजिए।

बढ़िया से आपका हमदर्द, आपका प्यार एफएम रेनबो, जिस पर इस टाइम आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिकार। वैसे दोस्तों, मुझे तो कभी कभी लगता है कि हम मोबाइल का यूज नहीं कर रहे, मोबाइल हमारा यूज कर रहा है। एंड यू नो, एक रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति एक दिन में औसतन 80 से 100 बार अपना फोन चेक करता है, और यहीं से शुरू होता है ध्यान भटकना, तनाव बढ़ना और नींद पर इफेक्ट पड़ना। तब आई थिंक एक्चुअली हमें याद आती है कि योग की हमें कितनी ज़रूरत है, जो हमदर्द बनकर हमारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है और माइंड को रिलैक्स।

तो चलिए हम भी 5000 साल पहले योग की दुनिया में जाते हैं, जिसे ऋषि मुनियों ने खोजा था। वैसे आप जानते हैं कि जब MRI, EEG जैसे साइंटिफिक उपकरण आए, तब पता चला कि योग केवल शरीर नहीं, मन और मस्तिष्क पर भी असर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो चलिए आपको साइंटिफिक इनसाइट बताते हैं। योग निद्रा से ब्रेन की अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, जो आपके स्ट्रेस को कम कर देती हैं, और साथ ही अगर आप प्राणायाम करेंगे ना, तो प्राणायाम से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बैलेंस्ड रहता है। तो गाइज, देखा आपने, आज मॉडर्न साइंस भी योग की उपयोगिता को स्वीकार कर रही है और हमारा फोकस बेहतर हो रहा है, तनाव में कमी आ रही है, अच्छी नींद और सकारात्मक सोच डेवलप हो रही है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए एफएम रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: स्पेशल म्यूजिक आर प्रोग्राम डिजिटल युग में योग, स्क्रीन से सुकून तक आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। और योग के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं योगा इंस्ट्रक्टर सुनीता श्रीवास्तव। आइए उनसे बात करते हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम सुनीता श्रीवास्तव है, मैं योग प्रशिक्षिका हूँ। पहले लोग योग को इतना तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को यह समझ में आया कि शारीरिक बल से बहुत बड़ा होता है आत्मिक बल, और आत्मिक बल बढ़ाने के लिए ब्रीदिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए योग प्रशिक्षकों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज रॉन्ग ब्रीदिंग करके आप बीमार हो सकते हैं, और ब्रीदिंग को अपने राइट वे में लेने से आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। यह आपको सिर्फ योग प्रशिक्षक ही बता सकते हैं। यूनिवर्सिटी में एज अ कोर्स योगा आ गया है, जिसको करने के बाद एज अ ट्रेनर किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी ब्रीदिंग के लिए और मेडिटेशन के लिए योग प्रशिक्षकों को रखा जा रहा है, और भारत में तो इसका क्रेज़ बढ़ा है।

यही है, विदेशों में बहुत तेजी में इसका क्रेज बढ़ा है और ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं जो ऑनलाइन ब्रीदिंग करवा के, मेडिटेशन करवा के लोगों को हेल्थ में जो इशू आ रहे थे उसमें हेल्प मिली है, इसीलिए इतना ज़्यादा इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। मैं आकाशवाणी के श्रोताओं को ये कहना चाहूँगी कि आप भी इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लें और कुछ साधारण ब्रीदिंग जो है, जैसे भ्रामरी प्राणायाम जो कि हमारे मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका, कपाल भाती, इतने तो आपको आने ही चाहिए। थोड़ा समय दें अपने आप को, और जैसे नहीं कुछ कर सकते आप, नहीं आपको लगता है कि नहीं मैं ये ना करूं, तो आप डीप ब्रीदिंग में ओम चैंट जरूर करिए प्लीज़। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको इतना ज़्यादा फायदा मिलेगा कि आप सोचेंगे हाँ मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो आप ये ज़रूर करिए, और इससे क्या होगा, आपका जो भी सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता है, जॉब में, इधर उधर, सब जगह, तो कोई भी चीज़ है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, और आप देखेंगे आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद बहुत आता जा रहा है। इतना आपको इससे, सिर्फ ब्रीदिंग से इतना फायदा मिलेगा। और कुछ आसन है जैसे वज्रासन है, वो खाना खाने के बाद करें तो आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, और जैसे शवासन है उसकी प्रैक्टिस लें, मेडिटेशन के लिए अच्छा है, मन को शांत करने के लिए अच्छा है। ये इतना साधारण है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। योग करें, स्वस्थ रहें।

वैसे दोस्तों, सुबह की ताजी हवा आपको जहाँ ले जाए ना, उसी में मदहोश हो जाइए। सुबह की ताजी हवा पूरा दिन दिमाग को शांत और तरोताजा रखती है, और साथ ही सुबह उठने के बाद पहले 20 मिनट आपको मोबाइल नहीं, अपने आप से मुलाकात करनी है। पांच बार गहरी सांसें लीजिए, यानी कि डीप ब्रीदिंग कीजिए। यकीन मानिए, दिन का अंतर आप खुद भी महसूस करने लगेंगे। डिजिटल युग का सुपर हीरो जो है योग। वैसे आज की सबसे बड़ी बीमारियां जैसे कि बीपी, डायबिटीज हो या फिर कोई और, ऑफिस का तनाव, पढ़ाई का दबाव, सोशल मीडिया पर तुलना, जीवन में प्रेशर और टेंशन देखा जाए तो हर जगह है। तब स्ट्रेस से स्माइल तक ले जाता है योग। वर्तमान में जीना सिखाता है योग।

तो दोस्तों, हम भी आपको याद दिला दें कि योग से जुड़े अपने विचार और अपने आचार आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है airkanso@gmail.com।

हमारे स्टूडेंट्स बंधु जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए योग देखा जाए तो रामबाण है। ये आपकी याददाश्त और कंसंट्रेशन बढ़ाने में मदद करता है। एक क्विक योगा फॉर्मूला आपको देती हूँ, आप कोशिश कीजिएगा उसे अपनाने की। 50 मिनट पढ़ाई कीजिए, 5 मिनट वॉक, 2 मिनट डीप ब्रीदिंग, बस छोटा सा रूल है, करके देखिएगा, आपकी पढ़ाई को ये सुपर कूल बना देगा। फिलहाल अभी आपके मूड को सुपर कूल रखने आ रहा है ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक। एंजॉय कीजिए आज के म्यूजिक आर प्रोग्राम में। वृंदा है आप सभी के साथ।

0: निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

वैसे दोस्तों, आपकी बॉडी भी आपकी खैरियत चाहती है, तभी तो योगी क्रियाओं को खुश होकर अपनाती है। तो एक छोटी सी टेक्निक आप भी अपनाइए और अपनी बॉडी को हमेशा खुश रखिए। फोर फोर फोर ब्रीदिंग को अपनाइए, यानी कि 4 सेकंड सांस अंदर लीजिए, 4 सेकंड तक उसको होल्ड करके रखिए और 4 सेकंड बाद उसे छोड़िए। इसे ये जो है ना, ये आपको 2 मिनट तक फॉलो करना है और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका मन पहले से कुछ ज़्यादा ही शांत महसूस करेगा।

0: योग के बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं कानपुर से योगिनी वैशाली अवस्थी। तो आइए उनसे बात करते हैं।
1: नमस्कार, मैं योगिनी वैशाली अवस्थी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव को मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग के लाभ और हजारों तरह के योग के फायदे से लोगों को रूबरू कराना है। योग केवल शरीर की कुछ आसनों या मुद्राओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें अपनी सांसों, विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता है। योग बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। यह बच्चों की एकाग्रता, याददाश्त और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। कुछ आसनों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, जैसे सूर्य व्यायाम, ताड़ासन, कटी चक्रासन, तैरक ताड़ासन, त्रिकोणासन, सेतुबंधासन, भुजंगासन, तितलियासन, वक्रासन आदि। और इस बढ़ते तापमान से निजात पाने के लिए कुछ प्राणायाम का उपयोग करके हम अपने शरीर को भी ठंडा रख सकते हैं, जैसे शीतली, शीतकारी और अनुलोम विलोम आदि। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हुए आइए हम सभी योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में अपनाने का संकल्प करें और एक स्वस्थ खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।

वैसे अपनी लाइफ में अच्छे से जीने के लिए योग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम सभी आज योग दिवस की बातें कर रहे हैं जो जल्द ही आने वाला है, और हम सभी जानते हैं कि योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज ये हमारे जीवन के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। वैसे वर्किंग प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या गैजेट्स जो होते हैं ना, उसके बिना जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हर जगह, हर ऑफिस, हर प्रोफेशन में सब कुछ ऑलमोस्ट देखा जाए तो डिजिटली ही अब हो गया है। सुबह ऑफिस में कंप्यूटर, शाम तक लैपटॉप और फिर मोबाइल, यानी कि शरीर कुर्सी पर और दिमाग स्क्रीन पर। तो जनाब, आपको भी अगर वर्क के बाद होती है पेन्स की प्रॉब्लम हजार, तो योग अपनाइए। गर्दन घुमाइए, कंधे रिलैक्स कीजिए और आंखें 20 सेकंड बंद करके देखिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी बेटर होने लगेगी। अपनी प्रोफेशनल लाइफस्टाइल को 20-20-20 रूल को अपनाने के लिए आप फोर्स कर सकते हैं, यानी कि आपको ये अपनाना ही चाहिए। करना क्या होगा आपको, हर 20 मिनट्स बाद 20 फीट दूर किसी चीज़ को आप देखिए, 20 सेकंड तक उसे देखते रहिए। यकीन मानिए, आंखों को बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। फिलहाल अभी आपको आराम देने के लिए आ रहा है एफएम रेनबो के सुकून भरे गीतों में से एक। अगला सुकून भरा गीत आप सभी के रेडियो सेट तक पहुंच रहा है आज के म्यूजिक आर प्रोग्राम में। वृंदा है आप सभी के साथ।

0: भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में जाने से पहले हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि कुछ ईमेल्स हम तक पहुंचे हैं। तो चलिए, ये पहला ईमेल आया है सोनी भगत जी का। ये लिख के भेज रही हैं कि योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता, जितना भी जलाया जाए उतना बढ़ता ही है। अच्छा, आप अभ्यास करेंगे ना, लौ उतनी ही उज्जवल होगी। योग मन के उतार चढ़ाव की स्थिरता है, लिखकर भेज रही हैं नीलू। और गीता अरोड़ा हमें लिखकर भेज रही हैं कि जब सांसें विचलित होती हैं तो मन अस्थिर हो जाता है, जब सांसें नियंत्रित होती हैं तो मन स्थिर हो जाता है। सांसों को योग प्राणायाम से आप नियंत्रित कर सकते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, एंड आफ्टर ब्रेक वृंदा रहेगी आपके साथ।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

वैसे जनाब, इतना भागना इतना झागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, भागना अच्छा है लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को एक ही दिन में पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे तो बॉडी जो है ना

वो पेन करने लगेगी। तो हर चीज़ का एक सीक्वेंस होता है, हर चीज़ का एक ठहराव होता है, और वैसे ही प्रॉपर नींद ना लेना वो भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। पता है जब लोग कहते हैं कि हमें नींद ही नहीं आती, तो उसकी एक वजह है सोने से पहले रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशन देखना। अब बताइए दिमाग को आराम भला कैसे ही मिलेगा। वेल गाइस, बेटर स्लीप के लिए योगा बेस्ट थेरेपी है। तो सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल बंद और 5 मिनट गहरी सांस लीजिए, एक परफेक्ट नाइट योगा है आप सभी के लिए। वैसे भी कहते हैं कि अच्छी नींद अगले दिन की काम करने की जो क्षमता है ना उसको बढ़ाती है। तो चलिए जाते जाते एक 7 डे डिजिटल योगा चैलेंज आप सबके लिए है, और आई होप आप इसे ज़रूर ट्राई ज़रूर करेंगे। डे वन में आपको क्या करना है कि सुबह उठते ही नो मोबाइल, इसे 20 मिनट बाद ही देखें। डे टू में 5 मिनट आप प्राणायाम कीजिए, आप खुद भी पॉजिटिव फील करेंगे। डे थ्री में आपको 15 मिनट वॉक करनी है, और दिस विल मेक योर डे रॉक। दो लीटर पानी रोज आपको पीना है, टेंशन फ्री जिंदगी जीना है। 1 घंटा सोशल मीडिया फ्री आपको डे 5 में रखना है। डे 6 में सूर्य नमस्कार करिए और पौष्टिक आहार लीजिए। डे 7 परिवार के साथ बिना गैजेट समय बिताइए, जिंदगी को खुशहाल बनाइए। तो दोस्तों, जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो इतनी बुरी भी नहीं है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम कई बार चीज़ों को ना बैलेंस नहीं कर पाते हैं। चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी योग सही संतुलन ही तो हमें सिखाता है, शरीर को शक्ति, मन को शांति और जीवन को दिशा देता है। सो मोबाइल को अपने हाथ में रखिए, दिमाग में नहीं। दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 20 मिनट योग को दीजिए, वाकई आप देखेंगे कि 23 घंटे 40 मिनट आप खुद कितना बेहतर फील कर रहे हैं। वृंदा लेती है इजाजत आज के म्यूजिक आर प्रोग्राम से। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और योग को अपने जीवन में जरूर अपनाइए।

एफएम रेनबो कानपुर 102.2 से वृंदा है आप सभी के साथ और लेकर हाजिर हो चुकी हूं आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम आपकी पसंद। आज आपकी पसंद प्रोग्राम में होने वाले हैं कुछ खास और कुछ सुकून देने वाले नगमे और साथ ही साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com और साथ ही हमें लिखकर भेजिए आपके मन में कोई विचार है या आप कोई फीडबैक हम तक साझा करना चाहते हैं तो आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम का आगाज एक खूबसूरत से नगमे के साथ। बट उससे पहले बता दें कि हमें ईमेल्स आपके लगातार मिल रही हैं तो चलिए पहला नगमा हम आप तक पहुंचाते हैं आपकी फरमाइश पर लोफर फिल्म से।

खूबसूरत मौसम में इस टाइम आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पसंद के नगमे। और ये पहला नगमा कार्यक्रम का जो अभी आपने सभी ने एंजॉय किया मोहम्मद रफी की खूबसूरत आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। ये था लोफर फिल्म से। हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि आपके ईमेल्स लगातार हम तक पहुंच रहे हैं और ये ईमेल आया है, ये है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी सरगैना बरेली उत्तर प्रदेश से। बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति, शिवांश और पृथक। श्री गंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका। खंडवा से जुड़े हैं हमारे किसान श्रोता हैं ये जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका। बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सैयद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान, अरजान, अबान और समस्त अब्बासी परिवार। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम। डुमराव से हैं अस्मा अंसारी, आमना परवीन, टुकटुक अंसारी, लड्डू अंसारी, वली भाई। गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल। छत्तीसगढ़ से मास्टर कबीर डोम और राधिका। सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन और साथ ही ये लिखकर भेज रहे हैं प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हो, दुआ में याद रखना। जी हाँ, हम खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी लिसनर्स भी खैरियत से होंगे। तो चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं अगला खूबसूरत सा गाना। आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट तक पहुँच रहा है जान तेरे नाम फिल्म से। तो चलिए एंजॉय कीजिए वृंदा के साथ आपकी पसंद प्रोग्राम में।

0: मेरी नाम फिल्म से अभी आपने ये खूबसूरत नगमा सुना कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजों में, नदीम श्रवण का संगीत और गीत के बोल लिखे सैयद राही ने।
1: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
2: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
2: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
3: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आए आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: पहला नशा, पहला खुमार।
7: हाय, दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
0: शहर के म्यूजिकल हार्टबीट से इस टाइम आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। आपकी पसंद का अगला खूबसूरत नगमा आप सभी के रेडियो सेट तक पहुंच रहा है और ये है सलामी फिल्म से। आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजें, नदीम श्रवण का संगीत और गीत के बोल लिखे मदन पाल ने।

की धड़कन जो है एफएम रेनबो, उस पर इस टाइम आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। आपकी पसंद का ये खूबसूरत नगमा आप तक पहुंचा था और हम बताना चाहेंगे कि अगला ईमेल किसका हम तक पहुंचा है। ये है पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर यानी जस्सी, सीता और गीता। बक्सर से हैं असलम अंसारी, शमसूल हक और राज एसडी अंसारी। मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना। महाराष्ट्र से हैं रुपेश, महेश, प्रज्ञेश, प्रितेश और समस्त संघई परिवार। मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना, ये हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से। नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से हमें ईमेल इनका हम तक पहुंचा है और ये साथ में लिखकर भेज रही हैं कि आज मेरी दीदी की एनिवर्सरी है जी, बहुत बहुत बधाई आपके दीदी और जीजा जी को। और चलिए हम आपको अगला खूबसूरत नगमा सुनवाते हैं और नीलू जी आपको, आपके पूरे परिवार को ढेर सारी बधाइयों के साथ ये अगला नगमा आप सभी के लिए पेशे खिदमत है।

चांद खिला वो तारे हंसी हैं। जी हाँ, ये रात तो नहीं, ये शाम है, बट मतवाली ज़रूर है, क्योंकि हमारे मतवाले श्रोता जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ईमेल

के जरिए। फिलहाल बता दें आपको कि अनाड़ी फिल्म से अभी आपने ये गाना सुना लता मंगेशकर की दिलकश आवाज में। शंकर जयकिशन का संगीत था और गीत के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये फरमाइशी ईमेल आया है गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से। एम फारूक शेख, शमा परवीन शेख, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान का। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लश्कर हरिद्वार से। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान और राजकुमार बौड़ाना। खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और समस्त परिवार। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी और समस्त खर्चे परिवार। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा। उत्तर प्रदेश से ही हैं मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह।

0: लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में अभी आपने ये नगमा सुना। और बता दें आपको कि संगीत से सजाया था रवि ने और गीत के बोल लिखे साहिर लुधियानवी ने।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
0: कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्टेड हैं आप और इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं अपनी पसंद के गाने। जी हाँ, आपकी पसंद प्रोग्राम में वृंदा है आज आप सभी के साथ। तो चलिए अगला खूबसूरत नगमा आप सभी के रेडियो सेट तक पहुंचाते हैं और ये है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और गीत के बोल लिखे साहिर लुधियानवी ने।

अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये है मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा। महाराष्ट्र नांदेड़ से हैं सुनैना, संतोष, सुकन्या और सविता। सीतामणि से हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत, अकरम, वसीम, रुबीना, आरिस, नदीम, शमी।

मीम, ममता, पूनम और बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निखत परवीन। मध्य प्रदेश से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची और तनु। संदीप मक्कड़, प्रिंस लड्डी, अमन और ये हमें ईमेल भेजा है पिंगावाला चौक जालंधर से। गंज टुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाफिक शेख, दानिश शेख, अमन और राधा। अगला गाना हम आपको सुनवाने वाले हैं बादशाह फिल्म से। जी हाँ, ये अगला सॉन्ग, खूबसूरत सा गाना जिसने गाया है वो है अभिजीत और अलका याग्निक। अन्नू मलिक का संगीत है और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। तो आइए आप सभी को एंजॉय कराते हैं ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

0: मैं हूं अनूप जलोटा, यू आर लिसनिंग 102.2 एफएम रेनबो कानपुर।
1: पानी रे मा पादा पगरे मागरे गरे सनिदारे
2: 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आप है एफएम रेनबो कानपुर के साथ और इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। और आपकी पसंद का अगला नगमा सुनवाने से पहले हम बता दें कि अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल छिप्पा, ईशान छिप्पा और पूजा परिहार। आज के संगीतमय और सुरीले कार्यक्रम आपकी पसंद प्रस्तुतकर्ता वृंदा जी को हमारा सप्रेम नमस्कार, अभिवादन, स्वागतम जी। आपको भी प्यार भरा नमस्कार। ये किन्होंने लिखकर भेजा है, ये हैं मुंगीसापुर से। ये साथ ही लिखकर भेज रहे हैं कि वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं जी, बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ पानी बचाएं, जीवन बचाएं। बहुत ही अच्छी इन्होंने पंक्तियाँ लिखकर भेजी हैं और साथ ही कुछ नाम शामिल करने की इन्होंने गुजारिश की है। तो जी हम बिल्कुल नाम शामिल कर रहे हैं आप सभी के, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमलू निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। छत्तीसगढ़ मुंगेली से मोहम्मद अशफाक, आफरीन, निलोफर, इमरान और रजा। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, ये चंडीगढ़ से हैं। और कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। कानपुर देहात से हैं रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति, कमलेश, वधु हैं इनकी निशा और प्रज्ञा। रायपुर से नरेंद्र जाटव, संदीप जाटव और कशिश जाटव। कमलकांत गुप्ता ने लिखकर भेजा है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसता है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी ये लिखकर भेज रहे हैं, बहुत ही अच्छी लाइंस इन्होंने लिखी हैं। और चलिए चलते चलते आपको सुनवाते हैं बेवफा फिल्म से उदित नारायण की आवाज़ में ये गाना। नदीम श्रवण का संगीत है और गीत के बोल लिखे हैं

समीर ने। गाने के उस पार हम आपको लेकर चलेंगे हमारे लखनऊ केंद्र, और अब आपकी पसंद प्रोग्राम से वृंदा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक की 319 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत सुरक्षा का माहौल देता और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम भी करता है। उन्होंने कहा कि धुरियापार में बंद पड़ी चीनी मिल में सीएनजी प्लांट लगाकर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संकट के बीच देश में नियंत्रण की स्थिति बनाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनका निर्माण का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इससे पहले श्री योगी ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 39 विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री विभिन्न जनपदों में पत्रकार वार्ता कर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में गोरखपुर में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया संवाद करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास को शासन का मूल आधार बनाया है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने वाराणसी में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सोच बदली है और मोदी है तो मुमकिन है का नारा देश दुनिया में चरितार्थ हुआ है। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अमरोहा में मंडलीय समीक्षा बैठक की। महाराजगंज में राज्य मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र दयालु और बदायूं में डॉ अरुण कुमार सक्सेना, वहीं हापुड़ में वन पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमा राम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ मजबूती से खड़ी है। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जांच जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। स्वतंत्रता भवन में आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परम्परा पर विस्तार से अपने विचार रखे। अधिवेशन में देश विदेश से लगभग 1200 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक के अलावा बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। बीते 24 घंटे में राजधानी लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या समेत आसपास के जनपदों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी कई जनपदों में मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान जताया।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सौ दशमलव सात मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम।
3: विशेष कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सरकार ने इस अवधि में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से देश के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में व्यापक बदलाव लाने का कार्य किया है। गरीब, वंचित, ग्रामीण, महिला, युवा और छोटे व्यवसायियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाओं ने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
5: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है।
4: उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल पूरे होने पर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 5 जून को एक पेड़ माँ के नाम और बृहद वृक्षारोपण अभियान के साथ इसकी शुरुआत हो गई है, जबकि अभियान का समापन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बड़े स्तर पर योग कार्यक्रमों के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि ये कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन न होकर जन भागीदारी और जन जागरण का व्यापक अभियान बने। लखनऊ आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया बदले हुए भारत को देख रही है।
6: मैं समझता हूं कि उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचा हुआ है, और यह बात केवल एक उनके मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सच्चाई है। सारी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है कि भारत अब पहले का भारत नहीं रहा, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, बल्कि भारत एक ताकतवर भारत बन गया है।
4: प्रदेश सरकार की कोशिश है कि लोगों तक सरकार के कामकाज और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता हो। इन्हीं योजनाओं और उनके प्रभाव की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ने बड़े पैमाने पर सामाजिक सुरक्षा देने का काम किया है। गाजियाबाद के रहने वाले पवन कौशिक ने बताया कि पहले वो किराए के मकान में रहते थे और हर एक दो साल में उनको मकान बदलना पड़ता था। बापूधाम योजना में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना मकान लेने का सपना देखा, जो पूरा भी हुआ। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों के खुद के घर की आशा को पूरा किया है।
7: गरीब आदमी है जो मकान नहीं ले सकते, इतने साल से किराए पर रह रहे हैं, कम से कम उनके पास अपना मकान होगा और वो इधर उधर नहीं भटकेंगे। जैसे मैं भी बार बार बदलता रहा मकान, कम से कम एक स्थायी होगा मेरा और मैं वहाँ आराम से रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं कहूँगा कि मोदी जी ने भी बहुत अच्छा करा कि भाई इन्होंने ये गरीब आदमी के लिए चलाया।
4: केंद्र सरकार द्वारा 6 वर्ष पूर्व शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर रेहड़ी पटरी ठेला लगाने वाले और छोटे दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने में बेहद मददगार साबित हुई है। इस योजना से अमरोहा में हजारों लोग अपना व्यवसाय शुरू कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। यहाँ के रहने वाले रोहित का कहना है कि योजना में धनराशि बेहद आसान तरीके से बिना गारंटी के मिल जाती है।
8: पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो मुझे स्वयं निधि योजना के तहत जो मुझे लाभ मिला है और जिस तरीके से मुझे लोन दिया गया है कारोबार करने के लिए, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। मैंने सरकार से 10,000 का लोन पहले लिया था, जो मैंने पहले छोटी दुकान करी थी, उसके बाद 20,000 का दिया था, फिर आप 50,000 का लोन दिया है मुझे। सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ और आगे जो जनता है उनसे भी यही कहना चाहता हूँ।

0: सरकार की जो स्कीम योजना चल रही है, आप इसका फायदा उठाएं और ताकि हम गरीब लोग अपने कारोबार में बिजनेस में आगे बढ़ सकें।
1: महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आर्थिक प्रगति में सहभागी बनाने में लखपति दीदी योजना बड़ी प्रभावी साबित हुई है। इस पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश में 31 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर सामाजिक विकास का हिस्सा बन रही हैं। गोरखपुर की रहने वाली संगीता पांडे ने बताया कि वो पैकेजिंग का काम 2013 से कर रही हैं। लखपति दीदी योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को न केवल स्वरोजगार मिल रहा है बल्कि आर्थिक विकास को भी गति मिल रही है।
2: मैं पैकेजिंग का काम करती हूँ जिसकी शुरुआत मैंने 2013 में 1500 रुपए से की थी, लेकिन उन दिनों परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मुझे ऋण लेने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसीलिए मैंने अपनी ज्वेलरी रख के गोल्ड लोन लिया और अपने काम को आगे बढ़ाया। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि इतनी आसानी से ऋण मिल रहा है और महिलाएं अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ा रही हैं। हमारी संस्था को भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 करोड़ का प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के विकास के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए दिया है, जो कि 4 करोड़ के प्रोजेक्ट से हम 13 कोटा की पैकेजिंग करेंगे, जिससे 13 कोटा हमारा ब्रांड एम्बेसडर भी बनेगा और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो हम सभी महिलाएं मिलके अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।
1: लखपति दीदी योजना के बाद बात पर्यटन विकास की करें, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रसाद और हृदय योजनाओं ने प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत नगरियों के विकास को नई दिशा दी है। प्रसाद योजना के तहत वाराणसी, अयोध्या, मथुरा और नैमिषारण्य जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में पर्यटन सुविधाओं, घाटों, मार्गों, प्रकाश व्यवस्था और यात्री सुविधाओं का विकास किया गया है, जबकि हृदय योजना ने वाराणसी सहित ऐतिहासिक शहरों की विरासत संरचनाओं के संरक्षण और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा दिया है। वाराणसी में भारत पर्यटन के उपनिदेशक पावस प्रसून ने बताया कि इन योजनाओं से यहां पर काफी कार्य कराए गए हैं जो यहां आने वाले पर्यटकों को बरवसी आकर्षित करते हैं।
3: वाराणसी में लगभग 100 करोड़ की पर्यटन विकास परियोजनाओं अपनी स्वदेश दर्शन, प्रसाद तथा असिस्टेंस टू सेंट्रल एजेंसी स्कीम्स के तहत स्वीकृत किया है। इन परियोजनाओं का में रिवर क्रूज पर्यटन, घाटों एवं स्मारकों का सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था, वाराणसी बाई नाइट, पंचक्रोशी परिक्रमा मार्ग विकास, साउंड एंड लाइट शो तथा पर्यटक सुविधाओं का विस्तार शामिल है। और यह बताते हुए भी काफी खुशी का अनुभव हो रहा है कि इनमें से अधिकांश परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है, जिसमें वाराणसी और सारनाथ की आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन पहचान को नई मजबूती मिली है।
1: गरीबों को आवास, छोटे व्यापारियों को पूंजी, महिलाओं को आत्मनिर्भरता, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को नई पहचान, पिछले 12 साल में ये वो क्षेत्र हैं जहां सरकार की योजनाओं और प्रयासों से समावेशी विकास की अवधारणा को बल मिला है। इन योजनाओं ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बल्कि सामाजिक न्याय के साथ ही विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लक्ष्य को साकार भी किया है।
4: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
5: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है

0: highly advanced pediatric neurology services, experienced doctors or personalized care.
1: Pine Pediatric Brain and Spine Surgery, PICU, EEG, MRI, Genetic Test, Physio और Speech Therapy जैसी सुविधाएं ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए.
0: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ. कॉल 666-4444.
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.
3: वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स. 5:14:18 हो चुके हैं और फाइनली हमारी आपकी मुलाकात इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हो ही गई है. तो आज टॉप 10 में आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त सलका. आपको बता दे भाई कि 2021 को आज हम शामिल करेंगे अपने इस प्रोग्राम में. 2021 का वो साल एक ऐसा साल था जब हम सब घरों में बंद थे, पर हमारा जो दिल था और हमारी जो प्लेलिस्ट थी वो बिल्कुल आजाद घूम रही थी. तो चलिए रिवाइंड का बटन दबाते हैं और बात करते हैं उन गानों की जिन्होंने हमारे दिल की धड़कनों को कंट्रोल करके रखा हुआ था. और शुरू करते हैं नंबर 10 से, मूवी तड़प का ये खूबसूरत सा गाना जो था उस वक्त नंबर 10 पर.

और दोस्तों काउंटडाउन का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। नंबर 10 आप एंजॉय कर चुके हैं और 2021 में एक ऐसी फिल्म भी आई थी जिसने एक नहीं कई कई पायदानों पर अपनी जगह बनाकर रखी थी। फिलहाल पहुंचना है जल्दी से नंबर 9 पर और ब्यूटीफुल ट्रैक छोड़ देंगे, इसको एंजॉय कीजिए नंबर 9 पर।

सो फ्रेंड्स 5:24 हो चुके हैं और आगे बढ़ना है हमको नंबर 8 की तरफ। तो आपको याद होगा शायद एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आया था बारिश बन जाना। जी हाँ, बारिश बन जाना 2021 में ये ट्रैक सबने खूब इंजॉय किया था और इस ट्रैक को जगह मिली थी जाकर नंबर 8 पर। तो आइए इस ट्रैक को हम नंबर 8 पर इंजॉय करते हैं। 7.7 FM रेनबो पर आप इंजॉय कर रहे हैं टॉप 10 हल्का के साथ।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: घर से लेकर ऑफिस तक, बच्चों से लेकर बॉस तक, फैमिली से लेकर फैंटेसी तक, फैशन से लेकर फन तक, अगर आपको चाहिए इन चीजों की लेटेस्ट अपडेट, सो डोंट बी लेट।
1: सुनिए नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम शत्रुपा, सोमवार से गुरुवार दिन में 12 से 1, 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

और दोस्तों देखिए 5:30 कब हो गए पता ही नहीं चला, है ना। और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं नंबर, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, नंबर 7 पर। तो नंबर 7 पर इस वक्त जो ट्रैक है फिलहाल, तो मोहब्बत, खूबसूरत ट्रैक, इसने अपने पैरों को जमा रखा था नंबर 7 पर। तो चलिए इसे एंजॉय करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे नंबर 6 की तरफ, जिसने 2021 के उस साल में अपने आप को जमा कर रखा था नंबर 6 पर।

हो गया है अब नंबर 6 पर पहुंचने का, और नंबर 6 पर था दिल टूटे लोगों के लिए बादशाह का पानी पानी और भी ब्रैक का वो सॉन्ग जो अभी आपने नंबर 7 पर सुना। तो कुछ ऐसे गाने जिसे अभी आपने नंबर 7 पर एंजॉय किया और अब आप एंजॉय करेंगे नंबर 6 पर। इस तरह के जो ट्रैक्स हैं वो थोड़ा सा दिल टूटे लोगों के लिए ही 2021 में अपने अपने पायदानों पर जगह बना रहे थे।

करता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

और फ्रेंड्स नंबर पांच पर वो गाना था जो फिल्म थोड़ा सा अलग थी और फिल्मों से, और ये फिल्म थी द कार्निवाल, और इसमें एंट्री थी एक अंडरग्राउंड स्टार की जो रातों रात स्टार बन चुका था। जी हाँ, मैं एक अंडरग्राउंड स्टार की बात कर रही हूँ जो रातों रात चमक चुका था, एक चमकता सितारा बन चुका था द कार्निवाल मूवी से। और ये जो ट्रैक था तू आके देख ले, इसने नंबर पांच पर जो है वो अपनी जगह बना रखी थी।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्ताने,
3: वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई।
2: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने।

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
3: तो फ्रेंड्स, जब बातें हो रही हूँ धमाकेदार, तो सैड सॉन्ग के बाद अब कुछ और भी ट्रैक्स ऐसे हैं जिन्हें एंजॉय करना तो बनता है, थोड़ा सा डांस और थोड़ा सा ड्रामा भी हो जाए, क्योंकि श्रेया घोषाल और यार रहमान ने हमें मिलकर दिया परम सुंदरी, और जहां कृति सेनन के चुमकों ने सबको नचाया और ये गाना पहुंच गया कहां, जी नंबर 4 पर।

और अब टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चलिए बढ़ चलते हैं नंबर टू की, नहीं नंबर थ्री की तरफ। भाई आपने नंबर चार का ट्रैक एंजॉय किया है और अब बारी आ गई है नंबर थ्री की, शेरशाह की। जैसा नाम वैसा काम, ये फिल्म ऊपर के जो पायदान थे उनके लिए ही बनी थी एक्चुअल में, और वहीं पर जाकर इसने अपनी जगह बना ली थी। और इसने नंबर तीन से जो शुरुआत की तो कहां पहुंची आपको बताएंगे जरूर। फिलहाल इस ट्रैक को करते हैं एंजॉय।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जी दोस्तों, अब नंबर आ गया है इस वक्त नंबर 2 पर जाने का। 5:51 हो चुके हैं दोस्तों, और नंबर 2 पर जो ट्रैक ट्रेंड कर रहा था उस समय, वो क्यों ना करता, क्योंकि जुबिन नौटियाल का ये लुट गया ट्रैक, इसने ऐसा जादू किया कि ये सॉन्ग सोशल मीडिया पर छा गया, बहुत ट्रेंडी हुआ। होता भी क्यों नहीं, इमरान हाशमी जो थे इसमें।

और 5:55 24 सेकंड हो चुके हैं और वक्त ये कह रहा है कि जल्दी से आपको नंबर वन की तरफ ले चला जाए और बता दें भाई आपको कि वो मूवी जिसने कई पायदानों पर अपनी जगह बनाकर रखी थी वो थी शेरशाह। जुबिन नौटियाल और असीस कौर की आवाज में राता लंबिया। इस ट्रैक को सुनकर ऐसा लगता था उस वक्त कि जैसे कि वक्त थम सा गया हो, वक्त रुक सा गया हो। तो चलिए नंबर वन पर इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं और आज के टॉप 10 को यहीं पर स्टॉप करते हैं। लेकर आएंगे आपके लिए एक और टॉप 10। नेक्स्ट प्रोग्राम होगा आपके लिए शाम अवध और बहुत सारी लखनऊ से जुड़ी अपडेट्स, बहुत सारी और भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत के साथ उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का दर्शन कर रही है। श्री योगी ने कहा कि वैश्विक संकट से दुनिया त्रस्त है, लेकिन नए भारत ने ऊर्जा संकट से देश को बचाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में भी 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है, जो सुरक्षा का माहौल भी देता है और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम भी करता है। उन्होंने क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव धौलाकुआं के पास आज हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक परिवार एक बाइक पर सवार था, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। चारों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जनभागीदारी के साथ सामूहिक योग के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सभी जनपदों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ डंगवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे हैं। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम वीरगति को प्राप्त हुए हैं। वायुसेना ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ मजबूती से खड़ी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: सुनिए,
4: कहिए, कहिए,
3: सुनिए, सुनिए,
4: कहिए, कहिए ना,
3: सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
5: मैं हूँ गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

ऑफ कोर्स बेहतरीन प्रोग्राम बेहतरीन ट्रैक 100.7 FM रेनबो पर आपके साथ आज वेलकम और आप अभी पूरे एक घंटा एंजॉय करने वाले हैं शाम अवध 100.7 FM रेनबो पर, क्योंकि बहुत सारी सिटी अपडेट्स शेयर करूंगी आप सभी के साथ जो आपके काम की जरूर होंगी। फिलहाल ये ट्रैक जो है ये थिरकने के लिए काफी है।

इस तरह से आप इन कार्यक्रमों का आनंद भी उठा सकते हैं अगर आप संगीत नाटक मंचन का शौक रखते हैं। और फिलहाल ये सिलसिला अभी जारी रहेगा 100.7 FM रेनबो पर। शाम में आप इंजॉय कर रहे हैं अलका के साथ।

वेल फ्रेंड्स, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आपको जल्दी से बता देते हैं कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो शाम 6 बजे शुरू हो चुके हैं लखनऊ में। आपको बता दें कि योगेंद्रनाथ द्विवेदी के कविता संग्रह एक दीपक सब जलाए का जो विमोचन है वो कैफी आजमी अकादमी में शाम 6 बजे शुरू हो चुका है। इसके अलावा बायोस्कोप की ओर से संगीत में संध्या 130 जेसी बोस रोड कैसरबाग में शाम 6:30 बजे से आयोजित होगी। ये बायोस्कोप की ओर से है, संगीत में एक संध्या है और एड्रेस आपको बता दें 130 जेसी बोस रोड कैसरबाग, समय है शाम 6:30 बजे। इसके अलावा मदर सेवा संस्थान की ओर से चबूतरा थिएटर फेस्टिवल में सारा जहां हमारा है नाटक एक है, इसका मंचन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में शाम 7 बजे है। तो इस कार्यक्रमों का भी आप आनंद उठा सकते हैं जो कि हमारे शहर में इस वक्त हो चुके हैं, यानी कि शुरुआत भी हो चुकी है बहुत सारे कार्यक्रमों की। कुछ 6:30 बजे शुरू होने वाले हैं, कुछ 7 बजे भी शुरू होंगे। तो

0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: Purani haveliyon ki deewarein sunati hain nawabon ki dastaan. Chikankari ke booton se khilte galiyare, giloriyon ki khushboo se behakte paandan. Yahan har kona ek shayari, har gali ghazal. ये लखनऊ है जनाब,
0: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी,
0: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। लखनऊ की स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।
1: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
4: शाम होने को है।
1: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

0: अपनी बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जो है वो आज आ चुका है। यूपी के नर्सिंग कॉलेजेस में प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज यानी शनिवार को आ गया और इसकी तैयारियां अटल विश्वविद्यालय ने पूरी कर ली है। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट जो है सीनेट जिसे कहते हैं, इसका परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो बीएससी नर्सिंग समेत जो है कई सारी नर्सिंग पाठ्यक्रमों की करीब 14,500 सीटों के लिए लगभग 1.44 लाख अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी और आपको अब इसके लिए जो है पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। ये बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट के बाद जो रिजल्ट आया है उसके बाद जो लोग सिलेक्टेड हैं उनको अपनी जो है वो काउंसलिंग करवानी होगी। फिलहाल वक्त हो गया है एक खूबसूरत से गाने का, इसे एंजॉय करते हैं फिर वापस आते हैं आपके पास।

सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं घूमने घुमाने की। जी हाँ, बात करते हैं IRCTC की। उन पर्यटकों के लिए खुशखबरी है कि IRCTC जो है वो 24 जून से शक्तिपीठ के दर्शन कराएगा। जी हाँ, IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा ये जानकारी दी गई है कि लखनऊ से हवाई जहाज से जम्मू ले जाया जाएगा, वापसी अमृतसर से होगी, होटलों में ठहरने की व्यवस्था होगी। IRCTC की जो कार्यालय है वहां से, जो इसकी वेबसाइट है वहां से आप इसकी पूरी बुकिंग करा सकते हैं और भी जानकारी जो आपको चाहिए वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कुछ नंबर्स हैं उन पर भी आप बुकिंग करा सकते हैं। तो ये नंबर वगैरह आपको सब वेबसाइट पर मिल जाएंगे। IRCTC की वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं, इनके कार्यालय में जाकर पूरी बुकिंग भी प्रोसेस करा सकते हैं। 24 जून से इसकी शुरुआत होगी शक्तिपीठ दर्शन की, और इसमें सभी जो व्यवस्था है हवाई जहाज यानी कि एयर टिकट से लेकर आपको अमृतसर में इसकी वापसी होगी, और भी विस्तृत जानकारी आपको मिल सकती है IRCTC की वेबसाइट पर और कार्यालय पर।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
2: धड़कन लखनऊ की।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: सुनिए,
6: कहिए, कहिए,
5: सुनिए,
7: सुनिए,
6: कहिए, कहिए।

ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

वेल फ्रेंड्स, 6:35 हो चुके हैं और वक्त ये कह रहा है कि आपको अगली अपडेट बता दी जाए। आपको बता दें कि AKTU ने M.Tech, M.Com, M.OK और MURP पाठ्यक्रमों की सत्र 2025-26 की जो मौखिक परीक्षा है इसका कार्यक्रम जारी कर दिया और इन पाठ्यक्रमों की मौखिक परीक्षा 12 से यानी कि शुरू हो चुकी है। 17 जून तक ये आयोजित होगी और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा कार्यक्रम जारी भी कर दिए गए हैं। अभी फिलहाल वक्त हो गया है 6:35:36, 100.7 FM रेनबो पर आप अलका के साथ एंजॉय कर रहे हैं आज का शामी अवध।

फ्रेंड्स, आपको अगली अपडेट भी बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने केंद्रीय प्रवेश प्रणाली के अंतर्गत सहभागिता शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 20 जून तक बढ़ा दी है। संयुक्त महाविद्यालय में संचालित सेल्फ फाइनेंस कोर्स केंद्रीय प्रवेश प्रणाली के तहत प्रवेश लेना चाहते हैं और वे जो कॉलेज पाठ्यक्रम है उसका विवरण सहभागिता शुल्क जो है वो जमा कर सकते हैं, जिसकी डेट बढ़ाकर अब 20 जून कर दी गई है आपकी सुविधा अनुसार।

0: सुनाई
1: पड़ता सुनाई
0: सॉरी सॉरी सॉरी।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब यारी।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM रेनबो।

0: घर से लेकर ऑफिस तक, बच्चों से लेकर बॉस तक, फैमिली से लेकर फैंटेसी तक, फैशन से लेकर फन तक, अगर आपको चाहिए इन चीजों की लेटेस्ट अपडेट, सो डोंट बी लेट।
1: सुनिए नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम शत्रुपा, सोमवार से गुरुवार दिन में 12 से 1, 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या

0: समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: मुंजे जी, ये वाली मुन्नी चलेगी।

सो फ्रेंड्स 6:47 हो चुके हैं और अगली अपडेट आप सभी को बता दें कि कल यानी कि 14 जून 2026 को कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस में आप सुन सकेंगे एक विशेष कार्यक्रम। विषय होगा कल का वर्ल्ड ब्लड डोनर डे और इस खास विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में डॉक्टर अनिल कुमार जी MBBS TCP। और आपको बता दें कि अगर आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमें 0522-223-8845 पर या 223-8852 पर, यानी कि 22-38-845 या 22-38-852 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम आप कल सुन सकेंगे 14 जून 2026 को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच। कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस में, विषय होगा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
3: वो भूली दास्तां जो फिर याद आ गई।
2: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीव।

0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
1: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ।
1: बजकर 55 मिनट 29 सेकेंड और वक्त ये इजाजत नहीं दे रहा है कि अब इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि कुछ ही देर में 7 बज जाएंगे और हो जाएगा नेक्स्ट प्रोग्राम, यानी आपके फेवरेट प्रोग्राम हेलो एफएम का टाइम। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए और वापस जुड़ते हैं आपके साथ हेलो एफएम में। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो विद आरजे एलका।

नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, देश आज नए भारत के रूप में दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहा है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में भी 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के बीएचयू में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई और पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार रखे। अधिवेशन में देश विदेश के 1200 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सीएम योगी ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों की को परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जनभागीदारी के साथ सामूहिक योग के कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव धौलाकुआ के पास आज हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक परिवार एक बाइक पर सवार था, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 15 जून को गोरखपुर हवाई अड्डे पर यात्री सुविधा दिवस का आयोजन करेगा। कार्यक्रम के दौरान यात्रियों से संवाद स्थापित कर उन्हें और बेहतर सुविधाएं देने के प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से संवाद किया। वाराणसी में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सोच बदली है। फिरोजाबाद में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। बस्ती में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सुपोषित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अमरोहा में मंडलीय समीक्षा बैठक की। महाराजगंज में राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु, बदायूं में डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, हापुड़ में वन पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया। नोएडा में राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं कल से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: हेलो एफएम आरजेएल का आपके साथ है। तो देर किस बात की, मिलाइए 2238852 या 2238845 और डायल कीजिए नंबर्स को, सुनिए अपनी पसंद के खूबसूरत पसंदीदा गानों को 100.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow,
3: धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ, धड़कन लखनऊ की और आपके साथ जुड़ गई है आरजे अलका इस वक्त, और प्रोग्राम शुरू हो चुका है हेलो एफएम। और देखिए, इंतजार नहीं करवाएंगे, जो भी लाइन पर है चलिए उनसे सबसे पहले बात करते हैं। हेलो।
5: हाँ हेलो मैम, नमस्ते।
4: नमस्ते जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। क्या शुभ नाम है आपका?
5: मैम मैं राम केवल मौर्या बोल रहा हूँ, ग्राम मंगोली पोस्ट जगदीशपुर डिस्ट्रिक्ट कमेटी से।
4: राम केवल मौर्या जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में। और बताएं, आज क्या सुनना चाहते हैं, क्या पसंद है आपकी?
5: मैम मैं गाना सुनना चाहता हूँ, थानेदार फिल्म का है।
4: हाँ हाँ,
5: जीना है तो हंस के जियो।
4: ओके, और किसको सुनवाना चाहते हैं ये गाना?
5: मैडम सब लोग जिन्हें सुने, सारे लिसनर्स को सुनवाना चाहता हूँ।
4: ओके, थैंक यू सो मच राम जी कॉल करने के लिए, और आपकी पसंद का ये ट्रैक रहा आपके और हमारे सबके रेडियो सेट पर।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: भाई 7:13 हो चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉलर है लाइन पर, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हेलो
4: हेलो, गुड इवनिंग।
3: गुड इवनिंग जी, कौन बोल रहे हैं?
4: मोहम्मद तालिब अंसारी बोल रहे हैं, राजा कटरा बाराबंकी से।
3: तालिब जी बहुत बहुत वेलकम है आपका प्रोग्राम में।
4: थैंक यू,
3: काफी देर बाद आपसे बात हो रही है, मतलब काफी दिन बाद मेरी आपकी बात हो पा रही है।
4: जी, काफी दिन के बाद बात हो रही है।
3: और बताइए क्या है?
4: एग्जाम भी था हमारा, तो उसमें थोड़ा बिजी हो गए।
3: अच्छा ओके, नहीं एग्जाम में बिजी होना चाहिए तभी तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। ओके, तो बताए क्या है मौसम का मिजाज इस वक्त बाराबंकी?
4: मौसम का मिजाज बाराबंकी में तो सुबह से काफी रेनिंग डे रहा है और हाँ अभी भी थोड़ा सा, लेकिन मौसम बहुत अब अच्छा हो गया है। मतलब वो जो गर्मी हो रही थी वो अब नहीं है, थोड़ी सी मतलब
3: राहत हो रही है।
4: जी
3: ओके,
4: और किसानों के लिए भी राहत है क्योंकि अब उनकी धान की रोपाई वगैरह के लिए भी तैयारी सब चीज ओके हो रही है।
3: तो बताएं तालिब आज क्या सुनना चाहेंगे?
4: हम औजार मुंह के गीत सुनेंगे, दिल के 100 टुकड़े की अलग गीत।
3: और किसको सुनवाना चाहते हैं?
4: मोहम्मद आसिफ भाई हैं तेलंगाना हैदराबाद से, और मोहम्मद साबिर भाई हैं कानपुर से, और अकबर भाई हैं चौखंडी से, और सभी सुनने वालों को।
3: ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
4: बाय बाय
3: बाय बाय।

0: और खेल समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा। दुनिया त्रस्त है, लेकिन नए भारत ने वैश्विक संकट में भी ऊर्जा संकट से देश को बचाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का दर्शन कर रही है।
1: आज हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है। हम सब गौरवशाली हैं, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है, जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने एक क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। और प्रगति होगी, नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तार से अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों से नवाचार व अनुसंधान को राष्ट्र निर्माण तथा जन कल्याण से जोड़ने का आह्वान किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 7 मंजिला इस परियोजना के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएचयू प्रशासन के अधिकारियों को भी परियोजना की नियमित निगरानी करने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बुजुर्गों को समर्पित यह अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग देश का तीसरा तथा उत्तर भारत का प्रमुख वृद्धावस्था चिकित्सा केंद्र होगा। केंद्र में बुजुर्गों के लिए मल्टी स्पेशलिटी जेरियाट्रिक वृद्धावस्था चिकित्सा ओपीडी संचालित की जाएगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सभी जनपदों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह

0: असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा सुशासन और जनकल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जनकल्याण के कार्य किए हैं।
1: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी कपड़ा मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है और पक्षपात के तहत नहीं, निष्पक्षता के साथ ही है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
0: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
2: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव धौला कुआं के पास आज हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं कल से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम, प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: वेलकम हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गई, और क्योंकि मुझे पता है कि एक कॉलर हमारे हैं जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा कहीं ना कहीं जल्दी उन्हें लाइन पर लेने की।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: मैम ठीक है,
0: बढ़िया है। तो बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
3: आज मैम भूमिका गिरा रे बरेली पे बजाने
0: पुराना वाला। वैसे एक बात तो है, रीमेक भले ही कितने भी बन जाएं गानों के, लेकिन जो बात तो पुराने गानों में है वो रीमेक में नहीं होती ना। मैंने इसका रीमेक भी सुना है, बट जितना प्यारा ये ट्रैक है आशा जी की आवाज में, मेरा साया मूवी से, बहुत बढ़िया। किसको सुनवाना चाहते हैं?
3: मैम अपने परिवार वालों के लिए।
0: सभी परिवार वालों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच नागेश। और कुछ कहना चाहेंगे?
3: जी मैम एक नाम ले लीजिए।
0: हाँ बिल्कुल बताएं।
3: जी मैम बड़े भाई का नाम ले लीजिए, कपिल कुमार।
0: कपिल कुमार
3: जी मैम।
0: ओके, तो कपिल जी को भी डेडिकेट है ये ट्रैक। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।

0: फिर क्या हुआ?
1: फिर तुमका गिरा दे, मैं क्या बोलूं
2: सो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल ट्रैक्स के साथ आज आप इंजॉय कर रहे हैं हेलो एफएम अलका के साथ, और हमारे साथ है बहुत सारे ऐसे कॉलर्स भी जो अपनी पसंद लेकर हाजिर हो रहे हैं। तो देखते हैं इस वक्त कौन है लाइन पर। हेलो,
3: गुड इवनिंग मैम।
2: गुड इवनिंग जी, कौन बोल रहे हैं?
3: तौहीद मलिहाबाद से।
2: तौहीद
3: जी।
2: ओके तौहीद, बताएं कैसे हैं आप?
3: ठीक हैं, आप बताएं?
2: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बताएं तौहीद, क्या सुनना चाहेंगे आज?
3: सुना दिए, गुम है किसी का प्यार नहीं था।
2: कौन सा ट्रैक?
3: गुम है किसी के प्यार में।
2: गुम है किसी के प्यार में, ये गाना आप नया वाला सुनना चाहते हैं या पुराना वाला?
3: नया वाला।
2: नया वाला, ओके। तो किसको सुनवाना चाहेंगे ये सॉन्ग?
3: सभी को।
2: सभी को सुनवाना चाहते हैं?
3: जी।
2: ओके, वेरी गुड, मुझे भी। और बताइए कहाँ से कॉल किया आपने हमें?
3: मलिहाबाद।
2: मलिहाबाद से, क्या हाल चाल है इस वक्त? तो ढेर सारे आमों की खुशबू से भरा होगा मलिहाबाद।
3: जी
2: है ना?
3: जी
2: बिल्कुल। तो चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। और अब आपका जो ट्रैक है वो आप सभी के लिए, जिसको जिसको आप सुनवाना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: धड़कन लखनऊ की।
1: वेल फ्रेंड्स, 7:45:35 हो चुके हैं और हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो चलिए करते हैं उनसे बात। हेलो
2: हेलो दीदी, नमस्कार।
1: नमस्ते जी। आप लोग इतना प्यार से दीदी बोलते हैं, दिल एकदम गदगद हो जाता है। कौन बोल रहे हैं जरा अपना शुभ नाम बताएं।
2: हीराम, हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
1: ओके भगवान सिंह जी, बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में आपका। बताइए क्या हाल चाल है आपके।
2: अच्छे हाल चाल है दीदी, और आज हमारे इधर आंधी तूफान के साथ बरसात हुई है दीदी, और काफी आंधी तूफान चला है हमारे इधर।
1: ये तो है, अब बारिश थोड़ा शुरू हो चुकी है और ऑलमोस्ट मानसून जो है वो आ ही चुका है, तो गर्मी से काफी राहत बहुत सारे इलाकों में मिल चुकी है।
2: राहत मिल गई दीदी,
1: बहुत ज्यादा। तो बताइए आज क्या सुनना चाहेंगे, गाना कौन सा
2: दीदी। फिल्म का नाम है वापसी साजन की, और गाने के बोले आया सपनों में कोई सहजादा, और सालनी आपके यहाँ से आरजे हैं, सालनी दीदी, चंद्रकला दीदी, मोना दीदी, अलका दीदी आप हो, प्रीति दीदी, तरन्नुम दीदी और शिल्पी दीदी, आप सभी को डेलीकेट रहेगा। और हमारे मित्र हैं प्रेम सिंह सिसोदिया जी, राजन गंगवार जी, मोनू राजवंशी जी और मिंटू तिवारी जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी।
1: दैट्स वेरी गुड, सभी लोगों को डेडिकेट किया आपने ट्रैक, और चलिए खूबसूरत गाना सबके साथ मिलकर आप भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
2: धन्यवाद।

0: वेल वक्त हो गया अगले कॉलर से बात करने का, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी वेलकम है, आपका नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं
1: जी? नमस्ते मैम, मैं मेरा नाम है गुलाब कश्यप।
0: नमस्ते गुलाब जी, खुशबू आने लगी गुलाब की।
1: थैंक यू मैम।
0: एक्चुअली कुछ नाम ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव होते हैं, मतलब कि आप जैसे ही उन नामों को लेंगे उनका जो असर है वो अपने आप शुरू हो जाता है ना।
1: जी मैम
0: बिल्कुल, जिसने भी आपका नाम रखा है बहुत ही प्यारा है, और इनफैक्ट माता पिता ही रखते हैं नाम वैसे तो कभी कभी।
1: ओके थैंक यू मैम।
0: तो बताइए आज गुलाब जी क्या सुनना चाहेंगे?
1: मैम मुझे सॉन्ग सुनना है जीने लगा हूँ।
0: जीने लगा हूँ, ओके किसको सुनवाना चाहते हैं?
1: मैम सुनने वाले सभी श्रोताओं को और मैम खासकर आपको।
0: थैंक यू सो मच गुलाब जी, तो चलिए आपकी बेहतरीन खुशबू के साथ इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम।

0: So, my dear listeners, तो चलिए अपने आज के इस प्रोग्राम के लास्ट कॉलर से करते हैं बात और उनकी पसंद के ट्रैक के साथ इस प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप, क्योंकि सुनील आ चुके हैं अगले कुछ घंटे आपका साथ निभाने के लिए। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: आकाश मानी का जुनून दिल में रहता है हमारे हर पल, गंगा नदी के पास में घर है मेरा, जहाँ बहता है शीतल जल, नाम है मेरा राजेंद्र, गाँव है पोस्ट गोतनी, तहसील कुंडा, जिला है प्रतापगढ़।
0: भाई वाह, शेरो शायरी काफी अच्छी आपने कर रखी है। थैंक यू सो मच, बड़ी प्यारी लाइंस लिखी हैं आपने। और बताइए, नाम तो बता दीजिए, कौन बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र। मैंने तो शायरी नहीं बता दिया था।
0: मैंने शायद मिस कर दिया। और बताइए राजेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: बस मैम, दुआ है आप लोगों की, आप कैसे हैं? हम तो एकदम अच्छे हैं।
0: सब बढ़िया। गाना कौन सा सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है वारिस और गीत के बोल हैं, घटा छा गई है बाहर आ गई।
0: और किसको सुनवाना चाहते हैं?
1: मैम सबसे पहले आपको और जितने भी सुनने वाले श्रोता है सबको डेडिकेट है।
0: गुड, वेरी गुड। तो चलिए इस ट्रैक को करें एंजॉय आपके साथ।
1: जी मैम,
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।

जी जी तो इस ट्रैक के साथ आपको छोड़कर जा रही हूँ और फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पर वापस मुलाकात होगी आपसे। स्टे ट्यून 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत के साथ उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते उन्होंने कहा कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया

0: के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का दर्शन कर रही है। श्री योगी ने कहा कि वैश्विक संकट से दुनिया त्रस्त है, लेकिन नए भारत ने ऊर्जा संकट से देश को बचाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में भी 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है, जो सुरक्षा का माहौल भी देता है और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। उन्होंने क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव धौला कुआं के पास आज हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक परिवार एक बाइक पर सवार था, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। 4 घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगी दिवस के आधार पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसे परीक्षा कर्मयोगी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रिया को सुदृढ़ करना, ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकरण संचालन सुनिश्चित करना है। इसमें नीट स्नातक पूर्व परीक्षा भी शामिल है। इस कार्यक्रम में संपूर्ण परीक्षा को कवर करने वाले 4 मॉड्यूल हैं। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गया। वायुसेना ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम वीरगति को प्राप्त हुए। सीएम योगी ने बहादुर जवानों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
2: शाम होने को है।
1: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास
3: के

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM रेनबो पर।

दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वसल की उस रात को हर्फों में बयां करता संजीदा रेडियो प्रोग्राम आप शाह।

ये जो महबूब की आमद तेज हवा में घुली खुशबू की मानिंद होती है, जब हयात में शरीक होती है ना, तो सारा का सारा होशो हवास अपने साथ ले जाती है। बिल्कुल। और ये होशो हवास जिसमें होना बिल्कुल मुनासिब नहीं जब कोई मोहब्बत में हो, तो सच में सब कुछ बड़ा खूबसूरत लगने लगता है। बिल्कुल वैसे जैसे प्रोग्राम आबशार FM रेनबो लखनऊ पर सुनील के साथ।

वो खबर जो उनकी आमद से जुड़ी होती है, सारे जहां को फिल्में पर्दे की माफिक जरा ज्यादा खूबसूरत बना देती है। और माशाल्लाह तमन्ना वो तो मचलने को बेताब हो जाती है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आबशार सुनील के साथ।

मतलब ही दुनिया हो, वहां जाना नहीं अच्छा, अकेले खुश रहो यारों, दिल लगाना नहीं अच्छा। प्रोग्राम आप शार की आखिरी पेशकश आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस

0: व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अपॉइंटेड

0: function and production grant have also emerged as one of the cultural ministry's key instruments for supporting cultural activities across the country. The Manipur Dramatic Union, the oldest proscenium theatre organization in Manipur, is gearing up to launch a series of new theatrical productions. Talking to Akashwani News, Secretary of Dramatic Union Sorokhaibam Sarat Chandra expressed gratitude to the government for sustaining regional arts through robust financial frameworks.
1: Since the inception of this organization, we have received from the Ministry of Culture so many production grants. Under this cultural production grant, under the new ministry, we have received this year, 125 lakhs. We are very thankful to the government of India, particularly this Ministry of Culture.
0: India has taken big step to protect its culture and share it with the world. Today, India's rich culture is not only shining at home, but also spreading light across the world. Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah today said that Prime Minister Narendra Modi has nurtured a new culture of education, skills, innovation and startups across the country over the past 12 years. In a social media post, Mr. Shah said, India has the world's second largest higher education network due to various policy initiatives undertaken by the Prime Minister. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that tensions arising from the conflict involving Iran, the United States and Israel have increased challenges in the global petroleum sector, leading to a rise in crude oil prices. Speaking to the media at Ludhiana in Punjab, Mr. Puri asserted that the centre has, however, taken measures to ensure that Indian citizens are not adversely affected by the increase in fuel prices. Mr. Puri described the 12-year tenure of Prime Minister Narendra Modi as people-centric and development-oriented. Manipur police notified that certain individuals and groups are creating, sharing and circulating unverified and provocative content on various social media platforms. In a social media post, Manipur police strongly advised the public not to believe, share or forward rumours or unverified content and to exercise caution while engaging with information circulating on social media. In men's cricket, Afghanistan have set a target of 195 runs for India in the rain-affected first one-day international ODI of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. The match has been reduced to 25 overs per side after relentless rains delayed the start. In reply, India were 91 for 1 in 10.3 overs when reports last came in. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. Five Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. Five-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dheeraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of three-match series in Dharamshala. That is all in the news at 9. Good night.
3: हनके रहब बा शुभरात्रि भैया का कहे थे हमका समझ हनके रहब बा शुभरात्रि ऑल स्टाप ऐसा मतलब ऐसी भाषा में लिखो ना तो मैं भोजपुरी है ना तो मैं हिंदी है पुनीत द्विवेदी इलेक्ट्रिकल इंफ्राटेक लिमिटेड हल्द्वानी अच्छा री भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप कंपनी अपनी पूरा मोबाइल नंबर सहित आप पूरा मतलब अपना विजिटिंग कार्ड दे दियो भैया पुनीत कुमार द्विवेदी वाकई महेंद्र भाई नमस्कार गांव रोड जिला नागौर राजस्थान से आप इतना लेट क्यों आते हैं अरे यार लेट आते हैं तभी तो ज्यादा मतलब इंतजार करते अरे गजब अरे भाई अरे इतना तगड़ा पोस्टर बना दियो महेंद्र दीपन नौसारी गुजरात इतना बढ़िया पोस्टर अरे हमारा फोटो लगा दियो भाई अरे गजब बहुत सही एका तो हम अपने अब जो ना सोशल मीडिया पेज पर जरूर शेयर कर बेकत पहले मेल भेज ली तो बताई समझोगा अच्छा ठीक है भाई गजब पूरा मतलब अरे गजा बहुत भाई, देखा एक काम शेयर करब जाना अपने सोशल मीडिया पर तुम्हारे पोस्टर महेंद्र भाई शेयर करब समझो। वकील अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच माय ब्रदर। सोनू भार्गव भाई कह रहे हैं प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, तुनक तुनक अच्छा ये वाला बहुत यार गाना सुनते हैं। सोएब अंसारी सुनील भैया प्रोग्राम हाँ हाँ हुआ लग, थैंक यू सो मच माई डियर रामराज भाई। राकेश भाई कह रहे हैं कि प्रस्तुति गाने में एनर्जी आ जा रही है, देखो एनर्जी थोड़ा संभाल के रखो। गोपाल गुलाब कश्यप भाई कह रहे हैं मैं रामपुर राय डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से मेल कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। जावेद अख्तर भाई, शिवम शुक्ला जी ग्राम कटार से प्रोग्राम सुन रहे हैं, अरे यार तुम्हारे गाँव का नाम तो बहुत ही तगड़ा है भाई, कटार छुरी तो नहीं ना तलवार तो नहीं ना, कटार गजब नाम है भाई तुम्हारा। गुलाबसा सिद्दीप की कह रहे हैं कि भैया हम संडीला में प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो भैया प्रोग्राम सुनते रहो, प्रोग्राम सुना केवल हाथों चलावत रहो, मतलब मेलो टाइप करत रहो, समझो कि नहीं समझो। कुछ लोग बहुत बढ़िया पोस्टर AI से बनाए हैं और कुछ लोग बढ़िया पोस्टर बना बना के बढ़िया बढ़िया एकदम मन प्रसन्न कर देते हैं भैया, मतलब मजबा है आप हमारे दिल एकदम एकदम बाग बाग भैया समझोगा। अच्छा ठीक है, एक और गाना दे मरद नहीं माथा की दर्द वाला सुन में हुआ, चलो सुनो। अच्छा तेरे फिर मेल करो हमका फटाफट, मेल आईडी जान रहे हो ना FM@lucknow@gmail.com समझ रहे हैं ना, आपके मेल आईडी में खुद ही आपको खुद ही पता है। ले लो गाना सुनो पहले बताएं।

शिवराज भाई नमस्कार। बरौली मालिक जिला बाराबंकी से एक भोजपुरी सॉन्ग सुना रहे। भोजपुरी भोजपुरी सॉन्ग तो सुनवाए रहे भैया। इनके राज लखीमपुर से कह रहे हैं, भानपुर हरौआ से मैं मेल कह रहा हूँ सुनील शुभ रतिया। हा, रेनबो पॉप टाइम, दो लाइन हर कार्यक्रम बेमिसाल, सुनते सुनते हो गए कई साल। आय हाय क्या बात है, क्या बात है, आप पक्का श्रोता है ना, कह रहे हैं हम आपके पक्का श्रोता हैं। अरे भाई पक्का नहीं, आप एकदम एक नंबर के श्रोता। गुलाब सा कह रहे सुने सर सुना दीजिए ना, बहुत दिनों से सॉन्ग नहीं सुना है। अच्छा तो भैया देखो, इसमें केवल एल्बम के भोजपुरी हरियाणवी या पंजाबी ये सब गाने सुनाई दे जाते हैं, समझ रहे हो ना। सनीला कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सुनील सर, कार्यक्रम बिंदास लग रहा है, फ्रॉम कस्बा सेवता जिला सीतापुर से मिल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जावेद अख्तर भाई हम मेल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। विकास भाई मेल कर चुके हैं, ग्राम सलीत सफीपुर जिला उन्नाव से, थैंक यू सो मच विकास। और पुनीत जी कह रहे हैं पूरा मेल नहीं पढ़ा गया, अच्छा भाई ठीक है। ग्राम समदापुर कमलापुर जिला सीतापुर से शिवा सिंह, नीलेश सिंह, अर्णव सिंह, पुनीत पंडित, तम्मू तन्नु मम्मी, अच्छा ठीक है भाई कर दिया। वकील भाई आवाज़ अच्छी लग रही, थैंक यू सो मच। ओके बहुत लंबा दो लाइन आपने लिखा है, ठीक है भाई वकील भाई, थैंक यू सो। सोनू भार्गव जी हम मेल कर रहे हैं, ठीक है मेल मिल गया आपका। आस्था बस्ती राकेश कुमार, आप सब के मेल हमें मिल चुके।

हैं। और अब एक और गाना, मतलब यही भोजपुरी स्टाइल में ही सुनेंगे। और भी अगर कोई गाना सुनना हो तो हमें मेल कर दीजिए, तुरंत ही मेल करिए, मतलब बिना देर किए मेल करिएगा। शिवराज भाई, मिल गया, बाराबंकी से आपका मेल है ना, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com।

0: मतलब मजा आ रहा है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खुरवाल दीपांशु खुरवाल पॉप टाइम और रेनबो कैफे दोनों अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। शुक्ला कह रहे हैं कि मेरा नाम अनुराधा शुक्ला है, मैं गंगापुर गुलहरिया बहराइच से प्रोग्राम सुन रही हूं और मेरी ननद मंदाकिनी भी सुन रही है और देवर जो सनी है वो डांस कर रहे हैं। अरे तो देवर डांस कर रहे हैं तो भाभी क्यों पीछे हैं भाई, भाभी भी डांस करें देवर के साथ। आसिफ भाई हमें कह रहे हैं कि मैं हैदराबाद तेलंगाना से आपको सुन रहा हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम गर्दा उड़ा दिया है। थैंक यू सो मच आसिफ भाई। बाबू अंसारी देवकाली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो फैन हो गया। थैंक यू सो मच डियर। फैन तो सिंगर्स का हो ही है, जितने बढ़िया गाने हैं भोजपुरी में एकदम झुमाने वाले गाने बनाते हैं। आस्था अवस्थी हमें मेल कर रही हैं, साथ में विनित कुमार मेल कर रहे हैं, शिवराज आप सबके मेल हमें मिल रहे हैं। बड़ा बड़ा मेल करते रहिए हमारी मेल आई डी पर जो है fmakashwani@gmail.com। आप सुन रहे हैं सुनील को प्रोग्राम किसमें क्या नाम है रेनबो कैफे। सरसों के साग से कंपेयर कर रहे हैं आप, देखिए मतलब किस किस चीज से कंपेयर किया जा रहा है अपने मतलब बेटर आपको या फिर जिसको भी कह सकते हो, मतलब जो पसंद है उसको सरसों के साग से कोई मतलब कैसे कर सकता है कंपेयर, यही नहीं समझ पा। खैर ये कर रहे हैं तो देखिए भाई इनकी जो भावनाओं की थोड़ी सी कद्र करिए।
1: अरे बोलो

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। राज्य मंत्री महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग एवं जनपद अमेठी प्रभारी श्रीमती प्रतिभा शुक्ला द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के क्रम में आज जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर गौरीगंज अमेठी में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद तथा मीडिया संवाद कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभाव व प्रबुद्धजनों के विचारों को सुना एवं उनके द्वारा दिए जाने वाले सुझाव के लिए उन्हें आश्वस्त किया एवं उनके कार्य की सराहना की। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने आज अमरोहा में प्रेस वार्ता कर सुशासन को समर्पित केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने और प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने पर मीडिया से संवाद किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने 2014 में मोदी जी पर भरोसा किया और भारी बहुमत देकर तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। यह सफलता सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला यह उसका परिणाम था। मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ वास्तविक रूप से कार्य किया और यह नारा न होकर इसे जन आंदोलन बना दिया और जन आंदोलन का यह परिणाम रहा कि योजनाओं का 100% लाभ हर लाभार्थी को मिला। मैनपुरी जनपद में आयोजित थाना समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने भूमि संबंधी विवादों का मौके पर जाकर निस्तारण करने तथा अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। थाना बिछवा में पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के साथ जन शिकायतें सुनते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर अवैध कब्जों से संबंधित शिकायतें बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मथुरा में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने मीडिया संवाद कार्यक्रम में केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा सुशासन और जन कल्याण को प्राथमिकता दी गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

खुली वो जुल्फ तो पहली हसीन रात हुई, उठी वो आंख तो तखलीके कायनात हुई। गिले बहुत थे मगर जब नजर नजर से मिली, ना मुझसे बात हुई ना उनसे बात हुई। ये गुफ्तगू, ये मोहब्बत के तकाजे हर्फों के मोहताज नहीं होते। कई बार निगाहें एक लंबी गुफ्तगू का, एक शीरीन से बड़े खूबसूरत से तकरीर का गवाह बनती है। यूं ही तुम मुझसे बात करते हो या कोई प्यार का इरादा है?

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीकांत सुनील के साथ सौ शेरा साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो लखनऊ पर। बाकलम जॉनेलिया साहब, तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो, मैं दिल किसे लगा लूं अगर इजाजत हो, तुम्हारे बाद भला क्या है वादाए उपैमा, बस अपना वक्त गंवा लूं अगर इजाजत हो, तुम्हारी याद में जीने की आरजू है अभी, कुछ अपना हाल संभालूं अगर इजाजत हो।

न कोई वादा, न कोई यकीन, न कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतजार करना था। गरज की काट दिए जिंदगी ऐसे दोस्त, वो तेरी याद में हो या तुझे भुलाने में, अब तो उनकी याद भी आती नहीं, कितनी तन्हा हो गई हैं तन्हाइयां भी।

रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रोशनी का अंदाज़ सुनील के साथ।